मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन सकते हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का चित्रपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

0: में भेज दिया है। दो फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में चौथा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम सुनते हैं मातृभूमि की वंदना। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे देश की विविधता में छिपी एकता है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग परंपराएं, लेकिन जब बात देश की आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। मंजिल तक पहुंचने का सबसे सुंदर रास्ता है मिलकर चलना। जब पूरा देश एक स्वर में आगे बढ़ता है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती।

समोस्वर में आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत। आइए अब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की वंदना अनूप जलोटा के स्वर में। श्रद्धा जब हृदय में उतरती है तो जीवन का हर मार्ग सहज हो जाता है, और जब उस श्रद्धा का केंद्र हो देवों के देव महादेव, तो स्वतः ही मन हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठता है। शिव का नाम लेते ही मन में अद्भुत शांति और विश्वास

जीवन की यात्रा में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब हमारी बुद्धि और प्रयास भी सीमित पड़ जाते हैं। तब मन किसी ऐसे सहारे की तलाश करता है जो अटूट हो, अडिग हो और सदा साथ निभाए। वो सहारा है ईश्वर की शरण।

0: ओम शरण के गए इस भक्ति रचना के साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: मानव जीवन एक अनमोल वस्तु है। यह जीवन हमें इसलिए नहीं मिला है कि हम सुख और वैभव की प्राप्ति में इस सीमा तक डूब जाएं कि हम अपने कर्तव्य को भी याद न रखें। मनुष्य का मस्तिष्क शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छी बुरी आदतों का रास्ता दिखाती है। शरीर के अंग मस्तिष्क के आदेश पर अच्छे या बुरे काम करने लगते हैं, फिर वे उन कार्यों को करने के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि मस्तिष्क को उन्हें आदेश देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हर व्यक्ति जन्म लेने के पश्चात कुछ न कुछ सीखना शुरू करता है और आजीवन सीखता रहता है। वह जो कुछ करता है वह उसका स्वभाव बन जाता है, वही उसके चरित्र के रूप में दिखाई देता है। यदि किसी आदत को अच्छी तरह सोच समझकर बुद्धिमत्तापूर्ण अपनाया जाए तो वह आदत मनुष्य के स्वभाव में शामिल हो जाती है तथा जीवन भर साथ निभाती है। अच्छी आदतें मनुष्य का मार्गदर्शन करती है तथा उसको सफलता के शिखर तक पहुँचाती है तथा बुरी आदतें मन पर घातक प्रभाव डालती है तथा असफलता और पतन के गर्त में इस प्रकार ढकेल देती है कि वह कभी निकल ना सके। मनुष्य को यदि किसी बुरी आदत ने घेर लिया तो वह जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती तथा वह उसके स्वभाव में समा जाती है। बुरी आदतों से ग्रस्त होने पर आदमी कितना भी संभलने की कोशिश करे फिसलता ही चला जाता है। उस व्यक्ति को बहुत समय निकल जाने पर जानकारी मिलती है कि उसकी असफलता का कारण उसकी अमुक बुरी आदत है। किसी भी बुरे काम को आरंभ करते समय व्यक्ति को हिचक होती है और दुख भी पहुंचता है, लेकिन धीरे धीरे हिचक दूर हो जाती है और दुख सहना आदत बन जाती है। बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलना कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। उसके लिए आवश्यक है परिश्रम, समय और धैर्य की। कभी कभी ऐसा भी अवसर आता है कि हमेशा सत्य बोलने वाला चरित्रवान व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर लेता है जिससे उसकी सारी मान प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, समाज में उसके लिए स्थान नहीं रह जाता। लोगों को हैरानी होती है कि उसने यह घृणित कार्य कैसे किया। वास्तव में उसके मन में अपराधी भावना नहीं होती, लेकिन वह कभी अपने मन में उठने वाले क्षणिक अपराधी विचारों को कोई महत्व न देकर नज़रअंदाज कर देता है और यही दूषित विचार भीषण रूप ले लेता है। यदि हम चाहें तो कुछ अच्छी आदतों को अपने भी जीवन में शामिल कर सकते हैं। पहली अच्छी आदत है समय की। अपने जीवन में समय का महत्व जानने वाले व्यक्ति का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। वह व्यक्ति हर समय किसी न किसी अच्छे कार्य में लगा रहता है। अच्छे कार्य में निरंतर लगे रहने वाले व्यक्ति को किसी के अहित के संबंध में सोचने की फुर्सत नहीं मिलती और वह सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। दूसरी अच्छी आदत है समय को पहचानना। जो काम समय पर न करने के कारण बिगड़ चुका है उसे समय व्यतीत हो जाने पर कितना भी परिश्रम करने पर या धन खर्च करने पर बनाना संभव नहीं होता। तीसरी अच्छी आदत है गतिशीलता, अर्थात काम में निरंतर लगे रहकर उसे तेजी से पूरा करना। अपने जिम्मे जो कार्य मिले या स्वेच्छा से स्वीकार करें उसे जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करना चाहिए। पांचवी अच्छी आदत है कुशलता। हम जो भी कार्य करें पूरी कुशलता के साथ करें, अन्यथा उचित समय पर शीघ्रता से किए जाने वाला कार्य भी निरर्थक सिद्ध होता है। अच्छी आदतें उसी व्यक्ति में पड़ती है जो अहंकार से दूर हों, विनम्र हों। बच्चों पर अपने माता पिता और पूर्वजों की आदतों का तथा उन आदतों के कारण बनने वाले उनके चरित्र पर महत्वपूर्ण और अमिट प्रभाव पड़ता है। किसी बच्चे में आरंभ से ही आदतों पर नज़र रखा जाए, अच्छे कर्मों द्वारा अच्छी आदतों का अभ्यास कराया जाए तो उसका चरित्र दूसरों के लिए आदर्श

0: बन जाता है। उसकी अच्छी आदतों का प्रभाव केवल उस बच्चे पर ही नहीं पड़ता, अपितु उसके साथ खेलने पढ़ने वाले बच्चों पर भी पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों में निश्चलता होती है, कपट, बैर, ईर्ष्या, द्वेष आदि भावनाएं नहीं होती। उनके चेहरे पर भोलापन रहता है, पवित्रता रहती है। उन्हें नहीं मालूम कि झूठ किसे कहते हैं। जिन व्यक्तियों में बुरी आदतें व भावनाएं नहीं रहती, वे भी इसी प्रकार पवित्र होते हैं।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख और स्वर लेखराम साहू का था। हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस का गायन।

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना ये है कि आत्मग्लानी के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया।

अभी कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुकोट कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए लोक धुनों का कार्यक्रम हुलहुली। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं कासनपाड़। कलाकार हैं गणपति कड़ियारी और साथी।

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मोहरी बाजा पर बजाया गया कासन पाड़। वादक कलाकार थे गणपति कड़ियारी और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। इसमें सुनिए हमारे केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे पद्मश्री से हाल ही में सम्मानित दंतेवाड़ा के डॉक्टर बुधरी ताती से विशेष भेंटवार्ता। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। नमस्कार जगदलपुर, हमारा ये दैनिक कार्यक्रम होगा सुबह 7:05 पर। आकर्षण होंगे स्वतंत्र वार्ता के तहत विकिरण प्रदूषण पर विषय पर धनेश्वर पांडे की वार्ता, कविता पाठ, कवित्री होंगी अरुणा और सुरीले गीतों की मधुरी माँ। लोकमंजरी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा सुबह 8:30। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे लोक साहित्य पत्रिका कार्यक्रम मोचो माटी, इसमें हम आपको सुनवाएंगे हल्बी कविता। कवि होंगे डीएस बघेल, मिथुन सूरी की लिखी गोंडी कहानी और आप सुनेंगे भद्री कविता। कवि होंगे मनबोध बघेल और इस कार्यक्रम के संपादक होंगे बलबीर सिंह कच्छ। एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:30 पर फिल्म तीन देवियां के कुछ गाने। सुबह 10 बजे गुलशन कार्यक्रम, माफ कीजिएगा, लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में 10:30 पर आप सुनेंगे किचोराम और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी पर। प्रसारण समय होगा सुबह 11:00। 11:30 पर पाटा केंजा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बुधराम पोटी और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे हल्बी बोली में कार्यक्रम कला और कलाकार। घर

भद्रीनाथ गीत मगनराम और साथियों का गाया हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 पर। बस्तर के स्वर हमारा यह दैनिक कार्यक्रम होगा शाम 7:21 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम आम चौगांव। नानुली कार्यक्रम में रात 8 सुनेगा शुक्ला और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। रात 8:30 पर आप सुनेंगे पीला मन का जयगोट हल्बी बोली में, इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रस्तुति शाहजी नाग की होगी। जीवना चौशोर यह कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर, इसमें सुनेगा शकुंतला ठाकुर से ली गई भेंट वार्ता, भेंट करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात 9:30 पर भेंट घाट कार्यक्रम में गोपाल पोयाम से बातचीत करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। लोकगीतों के कार्यक्रम कोदोमाली में आज रात 10 गोंडी लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे, गायक कलाकार होंगे सैनी राम और साथी। श्रोताओं ये थी हमारे केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्णजयंती समारोहे मुख्य अतिथिरूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास

0: प्रदत्तः। सेशल्स् देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक् हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीनसम्बलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स् देशे ह्यः मारिशस् देशस्य समकक्षेन डॉ नवीनचन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस् वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपरलीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानाम् आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनिमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनिमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां

0: समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स की सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

वक्त की राह में गुजरते पलों का हिसाब क्या रखना, वक्त की राह में गुजरते पलों का हिसाब क्या रखना, जो खुशी दे जाए जिंदगी में बस वही याद रखना। श्रोताओं, इन पंक्तियों के साथ आज के नमस्कार जगदलपुर के कार्यक्रमों के साथ मैं हूं हाजिर आपके अपने रेडियो मित्र गायत्री आचार्य। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार, जगदलपुर में आज स्वतंत्र वार्ता, कविता पाठ और मधुरिमा।

जितने निर्मल और सूर्य जितना प्रकाशमान है संत कबीर का व्यक्तित्व। आज हम याद कर रहे हैं महान संत, कवि, समाज सुधारक और युग दृष्टा को, जिन्होंने अपने निर्भीक वाणी से समाज को नई दिशा दी। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं कबीर जयंती। भारतीय संत परंपरा में कबीर का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। वे ऐसे संत थे जिन्होंने न केवल ईश्वर की भक्ति का मार्ग दिखाया बल्कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का संदेश भी दिया। उन्होंने समाज में फैली जाति पाति, ऊंच नीच, अंधविश्वास, कर्मकांड और धार्मिक कट्टरता पर तीखे प्रहार किए। उनकी वाणी आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी लगभग 600 वर्ष पहले थी। संत कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में काशी में हुआ। उनके पालन पोषण का श्रेय नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति को दिया जाता है। साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने अपने विचारों से असाधारण ऊंचाइयां प्राप्त की। वे पेशे से बुनकर थे लेकिन उनके शब्दों ने पूरे समाज के विचारों को बुनने का काम किया। कबीर किसी एक धर्म या संप्रदाय के नहीं थे, वे संपूर्ण मानवता के संत थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर को मंदिरों और मस्जिदों में नहीं बल्कि अपने अंतर्मन में खोजो। वे कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। उनका ये संदेश आज भी हमें आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर विद्यमान है।

सच्चा परिवर्तन संभव होता है। उनका एक और प्रसिद्ध दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये दोहा धैर्य का अद्भुत संदेश देता है। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति तुरंत सफलता चाहता है, लेकिन कबीर याद दिलाते हैं कि प्रकृति का अपना समय होता है, हर अच्छे कार्य का फल समय आने पर ही मिलता है। श्रोतों, कबीर केवल संत नहीं, वे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति और धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव का भी विरोध किया। वे कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वे कहते हैं कि किसी मनुष्य की पहचान उसकी जाति या बाहरी पहचान नहीं, बल्कि उसका ज्ञान, उसका चरित्र, उसके कर्म है। यह संदेश आज के समाज के लिए उतना ही आवश्यक है। उन्होंने अहंकार के विरोध भी चेताया, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मही। जी हाँ, सदियां बीत गईं, समय बदल गया, समाज बदल गया, लेकिन संत कबीर के विचार आज भी हमारे चेतना को झकझोरते हैं। उनकी वाणी हमें प्रेम करना सिखाती है, सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है और हर इंसान में ईश्वर का स्वरूप देखने की प्रेरणा देती है। कबीर जयंती के इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि हम किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता, सद्भाव, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलेंगे।

0: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 15102।
4: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
5: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
0: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं स्वतंत्र वार्ता के तहत ये वार्ता। विषय है विकिरण प्रदूषण। वार्ताकार हैं धनेश्वर पांडे।
6: राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी अमेरिका के द्वारा एक शोध पत्रिका में कहा गया है कि प्रदूषण जल, वायु या भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैव गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन है जिससे मानवीय प्रक्रियाओं या सांस्कृतिक तत्वों और प्राकृतिक संसाधनों को हानि हो या हानि होने की संभावना हो। आदिकाल से ही मानव और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध रहा है। हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों ने प्रकृति और मानव की सामंजस्यता की उपयोगिता को निकटता से समझा था और यह समझकर ही उन्होंने वनों, पर्वतों की गुफाओं, कंदराओं, उपत्यकाओं में रहकर और प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों को भोजन के रूप में स्वीकार करके अपना जीवन यापन करना उपयुक्त समझा। धीरे धीरे मानव ने प्रकृति के साथ अपनी निकटता तो बढ़ाई, किंतु उसने स्वार्थवश प्रकृति की सहृदयता का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वर्तमान समय में मानव द्वारा प्रकृति के साथ की गई अन्यायपूर्ण क्रियाओं का परिणाम हम सबके समक्ष आने लगा है और आज विश्व के सम्मुख प्रदूषण में विकिरण प्रदूषण एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण वास्तव में सभ्यता तथा तकनीकी विकास का ही दुष्परिणाम है। प्रदूषण की समस्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है, महानगरीय जीवन की सौगात है, विशाल उद्योगों की समृद्धि का बोनस है, मानव को मृत्यु के मुंह में धकेलने की अनचाही चेष्टा है, रोगों को शरीर में प्रवेश करने देने के लिए मौन निमंत्रण है, प्राणी मात्र के अमंगल की अप्रत्यक्ष कामना है। प्रदूषण प्रौद्योगिकी की प्रगति का ही नहीं अपितु उसकी प्रतिगति का प्रतीक है। विकिरण प्रदूषण अन्य पर्यावरणीय प्रदूषण की भांति तुरंत महसूस करने वाली प्रदूषण नहीं है। विकिरण प्रदूषण हमारे लिए विज्ञान की बनाई गई वरदान से ही आहिस्ता आहिस्ता अभिशाप के रूप में उभरती जाती है। वैज्ञानिक भाषा में प्रदूषण को आधार देते विकिरण दो प्रकार के पाए गए हैं, पहला आयनीकृत और दूसरा अनआयनीकृत। इनमें आयनीकृत विकिरण वह है जो पदार्थों से क्रिया कर आयनित जोड़े उत्पन्न नहीं करते हैं। इस प्रकार के विकिरण अनेक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जुड़े उपकरणों से पैदा होते हैं। हैरान करती बात है कि इस प्रकार के विकिरणों का प्रदूषण हमें सहज ही असर कर जाता है।

असल में यह प्रदूषण हम तक कॉस्मिक विकिरणों, खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों, वायु आदि द्वारा पहुंचता है, वह भी इतना दबे पांव कि हमें भनक भी नहीं लगता। यह प्रदूषण अपनी जड़ें शरीर में फैला देती है और कहर की शुरुआत हो जाती है। परीक्षणों से पाया गया है कि यह विषाक्त साइनाइड जैसे विष से भी 100 गुना ज़्यादा है। यह विकिरण न केवल मनुष्यों पर बल्कि सभी जीवों पर बुरा असर डालते हैं और गंभीर दशा में मौत थमा जाते हैं। विकिरण से पैदा प्रदूषण की स्थिति भयावह है, जो जीव जगत के लिए खतरे की घंटी है। दुखद पहलू यह है कि इस प्रकार का प्रदूषण आधुनिकता की ही देन है। रोचक मुद्दा यह भी है कि यह सृजन और संहार दोनों से जुड़ा है। जहां एक ओर विकिरण से जुड़े विभिन्न स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं युद्ध की विभीषिका और प्रदूषण का कहर भी इसका दूसरा पहलू है। विकिरण प्रदूषण की सृजनता पर दृष्टिपात करें तो विकिरण द्वारा गंभीर जानलेवा प्रदूषण असल में एक समस्थानिक आइसोटोप कोबाल्ट 60 है। यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है जो रेडिएशन देने के लिए एक महत्वपूर्ण और कारगर स्रोत है। परीक्षणों में पाया गया है कि यह धातु विकिरण मेटल रेडिएशन के रूप में अबाध गामा किरणों का निकास करता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो वैज्ञानिकों ने विकिरण के सृजनात्मक रूप विशेषकर चिकित्सा में प्रयोग के दावे पहली बार किए। वर्ष 1922 में जे मुलर ने और 1927 में स्टेडलर ने। हालांकि यह खोज स्टेडलर की थी, मगर इसमें से नोबेल पुरस्कार झटका मुलर ने। इसी श्रृंखला में वर्ष 1938 में वैज्ञानिक जॉन लिविंगवुड और ग्लन सीबोर्ग ने कोबाल्ट 60 को खोज निकाला। प्रारंभ से ही इसका प्रयोग खदान में काम आने वाले कोबाल्ट के अयस्क के रूप में किया जाता है। बेहतर चिकित्सा के लिए इन विकिरणों का प्रयोग कई मशीनों के द्वारा किया जाता है। एक्सरे का आविष्कार और चिकित्सा जगत में वरदान इन्हीं विकिरणों की देन है। एक्सरे के आविष्कार के बाद अब अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी से शक्तिमान होकर रेडियोलॉजी आज आयुर्विज्ञान की एक सशक्त शाखा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज के दौर में चिकित्सा के लिए सीटी स्कैन का होना आम बात है। इससे कई बीमारियों को पता लगाकर खत्म भी किया जा सकता है, परंतु इसमें भी सबसे बड़ा खतरा विकिरण का है। जब तक यह साफ न हो कि किस खास चीज़ के लिए सीटी होना है और उससे मिली जानकारी कैसे इलाज में काम आएगी, जांच कराने का कोई मायने नहीं। प्रत्येक सीटी स्कैन सैकड़ों एक्सरे के बराबर का विकिरण देता है। इसका शरीर की कोशिकाओं पर बुरा असर पड़ता है। उनमें आई आनुवंशिक विकृतियां आगे चलकर कैंसर पैदा कर सकती है। अतः जब तक जाँच की उपयोगिता साफ न हो, सीटी स्कैन न कराने में ही समझदारी है। असल में रोग प्रभावी कोशिकाएं जब अपना फैलाव करती हैं तो उनके चारों ओर के दायरे की कुछ कोशिकाओं को विकिरण द्वारा मार दिया जाता है ताकि उनके विस्तार को विराम लगे। मगर खतरा यह है

0: रोकने में विकिरण कारगर सिद्ध हुआ है, मगर इसके खतरे भी कम नहीं हैं। हमारे देश में इस प्रकार की चिकित्सा इसलिए भी खतरा पैदा करती है क्योंकि इसके निर्धारित मापदंडों को सही तौर पर नहीं अपनाया जाता है। चिकित्सकों ने विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रोगों को देखते हुए विकिरण की मात्रा को स्वदेशी तरीके से निर्धारित कर लिया है। कोबाल्ट 60 तथा अन्य रेडिएशन स्रोतों से प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय तक खतरे की घंटी बना रहता है। पाया गया है कि देश में बड़ी मात्रा में जीवधारियों और वनस्पतियों तक के लिए खतरनाक रेडियोधर्मिता पैदा होती है, जो न केवल निर्धारित क्षेत्र को प्रभावित करती है अपितु इसका प्रभाव दूर दूर तक जा पहुँचता है। इससे जुड़े बड़े परीक्षणों में एक प्रकार की धूल पैदा होती है जिसे रेडियो एक्टिव डस्ट या रेडियो एक्टिव कॉल आउट कहा जाता है। अब चूंकि यह हवा से हल्की होती है अतः इसका प्रसार हवा द्वारा सहज ही हो जाता है। जाहिर है कि विकिरण से पैदा प्रदूषण की स्थिति भयावह है जो संपूर्ण जीव जगत के लिए खतरा है। विकिरण से जुड़ी घटनाएं महज इत्तफाक नादानी या भूलवश कही जाए, मगर जब युद्ध इसी पर आधारित हो कहर सृष्टि के विनाश और मानव संस्कृति जीव जगत को तबाह करने में कोई कसर न होगी, तब हिरोशिमा नागासाकी की श्रृंखलाएं बनते देर न लगेगी और पल पल तिल तिल कर मौत पनपेगी। रोचक पहलू यह है कि प्रकृति में लगभग 90% तक विकिरण समाया हुआ है। कभी सूरज से, कभी धरती की गोद से, तो कभी बढ़ती गर्मी के कारण विकिरण जमता है। गरज यह है कि पृथ्वी पर पैदा ऊर्जा से जन्मी एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें विकिरण पनपाती हैं। ओजोन की छीनी होती चदरिया घातक किरणों को धरती में प्रवेश करने से पूरी तरह से नहीं रोक पाती है। इसका प्रभाव यदा कदा नजर आता है और भविष्य के खतरों को जन्म देता है। हालांकि इस प्रकार का प्राकृतिक विकिरण अधिक नुकसानदायक नहीं है, मगर कब, कहाँ, कैसा खतरा पैदा कर दे कहा नहीं जा सकता। मगर वही दूसरी ओर मानव जनित खतरे अपना कहर दिखाने से नहीं चुकते हैं। परमाणु बिजली घरों से रिसाव, चिकित्सीय उपकरणों, मोबाइल टावर आदि से पैदा विकिरण मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। अंत में आज प्रत्येक मनुष्य को इस बात का अनुभव होना चाहिए कि हम सब प्राकृतिक रूप से एक अविभाज्य पृथ्वी के नागरिक हैं, जो अपने नागरिकों के साथ किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं करती। आज वसुधैव कुटुंबकम जैसे अमृत वचनों को मूर्त स्वरूप देने की आवश्यकता है।
1: विकिरण प्रदूषण, अभी आप स्वतंत्र वार्ता के तहत इस विषय पर सुन रहे थे धनेश्वर पांडे की वार्ता। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, चंदन यात्रा पूजा विधान के साथ आज बस्तर में गोंचा पर्व की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान 27 दिनों तक अनोखी रस्में निभाई जाएंगी। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व के बाद दूसरा पर्व मनाया जाता है। 27 दिनों तक चलने वाले इस गोंचा पर्व की शुरुआत बस्तर में 615 साल पहले शुरुआत हुई थी और आज इस पर्व की पहली रस्म चंदन यात्रा पूजा विधान संपन्न किया जाएगा। श्रोतों, रियासत काल में उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी के महाराजा ने बस्तर के राजा को रथपति की उपाधि दी थी, जिसके बाद उड़ीसा के बाद बस्तर में गोंचा पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 27 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में गोंचा के दिन बस्तर में 3 विशाल काय रथों पर सवार भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को बस्तर की पारंपरिक तुपकी यानी बांस की नली से सलामी दी जाती है। श्रोताओं, ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। भगवान का ये स्वरूप हमें बताता है कि परिवार, प्रेम और एकता ही जीवन का

सबसे बड़ा आधार है। कहते हैं भगवान जगन्नाथ किसी एक वर्ग जाति या समुदाय के नहीं बल्कि पूरे विश्व के नाथ हैं। यही कारण है कि उनके नाम में ही जगन्नाथ अर्थात जगत के स्वामी का भाव समाहित है।

0: श्रोताओं, हर वर्ष 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। ये दिवस महान सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नीति निर्माण, विकास और अनुसंधान में सांख्यिकी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस भी। ये दिवस दुनिया के उष्णकटिबंधीय देशों की जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों, चुनौतियों और सतत विकास के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाते हैं एक कविता पाठ और कवित्री हैं अरुणा।
1: पहली गजल। इंसान हंसता है कभी और कभी रोता है, इंसान हंसता है कभी और कभी रोता है, आखिर वही होता है जो वो बोता है। मैं बदल डालूंगी अपने हाथों की लकीरों को, मैं बदल डालूंगी अपने हाथों की लकीरों को, मेरा अपना ही मुकद्दर है पर अभी सोता है। जो कल तक था अपना वो आज किसी और का है, जो कल तक था अपना वो आज किसी और का है, अफसोस कैसा, यह तो दुनिया है, यहाँ रोज यही होता है। काम आ जाऊं मैं किसी के तो जहाँ भी हाजिर है, यूं तो यहाँ हर शख्स अपना ही बोझ ढोता है। मैं टूटूंगी नहीं कभी जुल्म और सितम के आगे, इम्तिहान तो मेरा यहाँ हर वक्त होता है। दुश्मनी करके यहाँ कौन सुकून से जी पाया है, दुश्मनी करके यहाँ कौन सुकून से जी पाया है, फिर भी इंसान न जाने क्यों बीच तबाही के बोता है। यह तो केवल एक एहसास है जो बांधे रखता है, यह तो केवल एक एहसास है जो बांधे रखता है, वरना इस बेगरज दुनिया में कौन किसका होता है। पेश है मेरी अगली गजल। सिर्फ तुझे पाने की तमन्ना ने ऐसा नवाजा है हमें,

सिर्फ तुझे पाने की तमन्ना ने ऐसा नवाजा है हमें कि खुदा से अब और कोई दुआ मांगी नहीं जाती। हथेलियों को खोला तो अपने ही अरमानों का खून पाया, हाथों में अब फिर हिना सजाई नहीं जाती। वो नाज, वो शोक अदाएं, वो दिल फरीब तबस्सुम, वो निगाहें, क्या करूं तुम्हें देख ये नजरें चुराई नहीं जाती। है देखने वालों को समझने का इशारा काफी, है देखने वालों को समझने का इशारा काफी, अब इससे ज्यादा रुख से नकाब हटाई नहीं जाती। कभी लिखे थे जो तेरी याद में खत, लफ्ज मिट चुके हैं पर उन कागजों पे आग लगाई नहीं जाती। जिन दिनों मैं तेरे बारे में सोचती हूं बहुत, उन्हीं दिनों मुझसे ये दुनिया और ये जिंदगी समझी नहीं जाती। हम भी कुछ खुश नहीं ये वफा और मोहब्बत करके, हम भी कुछ खुश नहीं ये वफा और मोहब्बत करके, वे ही खुश नसीब हैं जिन्हें मोहब्बत करनी नहीं आती, वे ही खुश नसीब हैं जिन्हें मोहब्बत करनी नहीं आती। पेश है मेरी अगली गजल। किसी की याद ने दिल को गुदगुदाया है, किसी की याद ने दिल को गुदगुदाया है, दिल में छाए हर दर्द को जगाया है। मेरी आंखों में तेरे आंसू, तेरी आंखों में मेरे आंसू, अब हमारा भी चर्चा बाजार में खुलेआम आया है। चंद कागजों के टुकड़ों पर दिल की कीमत लिख दी हमने, न जाने इन दीमकों को किसने मेरा पता बताया है। अब इन दिनों मेरी गजल में अजब सा दर्द समाया है, अब इन दिनों मेरी गजल में अजब सा दर्द समाया है, हर लफ्ज को हमने बहते आंसुओं के साथ सजाया है। पीरों फकीरों से मिले, मंदिर गए मस्जिद भी गए, पीरों फकीरों से मिले, मंदिर गए मस्जिद भी गए, एक तुझे पाने के लिए क्या क्या किया और क्या पाया है, एक तुझे पाने के लिए क्या क्या किया और क्या पाया है। पेश है मेरी अगली गजल। आज मैं अपने हर ख्वाब को सच बनाना चाहती हूँ, आज मैं अपने हर ख्वाब को सच बनाना चाहती हूँ, दिल में छुपी हर चाहत के पास जाना चाहती हूँ। कर पाऊंगी ना मैं आज अपने आप पे काबू, कर पाऊंगी ना आज मैं अपने आप पे काबू, इश्क के दरिया में डूब जाना चाहती हूँ। अपनी हर गजल में इतना दर्द भरना चाहती हूँ, पढ़ने के बाद हर आशिक की आंखों को अश्कों से भरना चाहती हूँ। मेहरबा होके बुला ले चाहे जो कोई मुझे, मेहरबा होके बुला ले चाहे जो कोई मुझे, मैं हर टूटे दिल की दवा बनना चाहती हूँ, मैं हर टूटे दिल की दवा बनना चाहती हूँ। पेश है मेरी अगली गजल। मुझे अपने दर्द दुनिया के सामने दिखाना नहीं आता, मुझे अपने दर्द दुनिया के सामने दिखाना नहीं आता, दिल में छाई उदासी को चेहरे पर लाना नहीं आता। इतना संगदिल हो गया है ये दिल, इतना संगदिल हो गया है ये दिल, कि जख्म खाकर भी रोना नहीं आता। हर रात अपने ख्यालों से ख्वाबों की एक सेज सजाती हूँ मैं, हर रात अपने ख्यालों से ख्वाबों की एक सेज सजाती हूँ मैं, किसी के जिस्म में समा जाने की चाहत को, किसी के जिस्म में समा जाने की चाहत को दिल से रोका नहीं जाता। एक अजनबी से जिस्म का सौदा किया था कभी, एक अजनबी से जिस्म का सौदा किया था कभी, धड़कन रुक सी गई है पर अरमानों को मारा नहीं जाता। कितना बेचैन बेताब मदहोश और तड़फा हुआ है ये दिल, कितना बेचैन बेताब मदहोश और तड़फा हुआ है ये दिल, बैठकर देर तक अपनी खामोशी को सुना भी नहीं जाता। करता है वो रोज गुफ्तगू मुझसे, करता है वो रोज गुफ्तगू मुझसे, और शेर भी मेरे सुनता है वो रोज, पर मेरे हर शेर में छुपा है वो, ये क्यों नहीं वो समझ पाता। किसी की चाहत जुल्म है और गुनाह है, सजा भी मिलेगी भारी इसकी, किसी और की चाहत जुल्म है गुनाह है, सजा भी मिलेगी भारी इसकी, पर अब तो खुदा के खौफ से भी डरा नहीं जाता, पर अब तो खुदा के खौफ से भी डरा नहीं जाता।

पेश है मेरी अंतिम गजल। कांटे भी होते हैं फूलों में शरीक, कांटे भी होते हैं फूलों में शरीक, सिर्फ गुल से गुलिस्ता होता नहीं। किसने कहा जिंदगी सजा है, किसने कहा जिंदगी सजा है, इंसान को जीने का सलीका आता नहीं। कश्तियां किस तरह आएगी साहिल पे उनकी, कश्तियां किस तरह आएंगी साहिल पे उनकी, जो भौरों और लहरों से लड़ते नहीं। वे लोग ही महकाने जाते हैं, वे लोग ही महकाने जाते हैं, जिन्हें अपने महबूब की आंखों में डूबना आता नहीं, जिन्हें

0: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: और अब पेश है मधुरिमा।

तुम्हारी आंखों से होकर दिल में उतरने को जी चाहता है, तुम्हारी आंखों से होकर दिल में उतरने को जी चाहता है, तुम्हारे लबों ने मेरे अल्फाज गुनगुनाए, उन लबों को चूमने का जी चाहता है। मेरी बेकरारी का आलम न पूछ है इश्क, फिजाओं में महकते तेरे सांसों की मुश्क चुराने को जी चाहता है।

प्यार जिंदगी का सुरीला संगीत है। जीवन में प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। रोम रोम को एक अनोखा सुकून देता है प्यार। सब कुछ भला भला सा लगता है। कहते हैं ना, जिंदगी की किताब का हाशिया भर गया जब से तुमने उस पर एक शब्द प्यार लिख दिया।

अपनी हर सांस में आबाद किया है तुमको, अपनी हर सांस में आबाद किया है तुमको, मेरे सनम बहुत याद किया है तुमको। मेरी जिंदगी में तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, हमने इस कदर प्यार किया है तुमको।

ये थे आज की मधुरिमा। इन्हीं गीतों के साथ आज के नमस्कार जगदलपुर से मुझे यानी गायत्री को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिवस। आज का ये दिन आप सबके लिए मंगलमय हों।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है जो सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
4: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
5: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान

0: यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
1: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंध के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
2: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317107 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है। अलबत्ता दलहन और तिलहन पर

तीनों का असर पड़ेगा। लोक सत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड

96.82 यानी 756 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का चक्तरपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए विभिन्न बोलियों में

अभी आप सुन रहे थे हल्बी लोकगीत, गायक कलाकार थे मोरिस सिंह और साथी। अब हम आपको सुनवाते हैं सीएल मार्कंडे और साथियों का गाया पंथी गीत।

0: हवा सतनाम रसगुल्ला
1: गुरु के बानी महो सबके बानी महो भरे हवा सतनाम।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी।

हीरा सिंह और साथियों के गए भद्रगीत आप सुन रहे थे। लोकमंजरी कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं हलवी लोकगीत। स्वर है शिवराम नाग और साथियों के।

शिवराम नाग और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत। गायक स्वर हैं केदार यादव और साथियों के।

0: केदार यादव और साथियों के गए इस छत्तीसगढ़ी लोकगीत के साथ ही लोक मंजरी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोक साहित्य पत्रिका कार्यक्रम मोचो माटी। इस कार्यक्रम के संपादक हैं बलबीर सिंह कच्छ।
1: मोचो माटी लोक साहित्य पत्रिका सुनतो सप्पाय रेडियो सुनतो भाई बहन मन के खुबे खुबे सेवा जुहार। जसन की हामी बलने लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी ने अपन मन के आमचो बस्तर चो कितले बोली मंचो कहानी कविता और कई असन आमचो संस्कृति चो गोड बात करुन बाती सुनाऊ से जनाऊ से जे चो ले काय की आमचो जुन बस्तर चो बोली भाषा है उन बाचो हुंचो संरक्षण हो यही बोलून बाती आमी ये कार्यक्रम ने आमचे बोली मंचो असन कहानी मन के कथा मन के ठसा मन के कविता मन के सुनाऊ से। तो आजी आमचो ये कार्यक्रम ने सबले पहल सुनाए सोत श्री डी एस बघेल हल्बी ने कविता पाठ एमन पड़तो काजे गाँव चो पीला मन के काय बोल सोत अले सुनो।
2: इया इया इया रे खेल तो पीला इया इया इया रे बोल तो पीला सीलेट का पी धरुन पड़ुकलाई इया इया

पढ़ूक लैया गाँव परानी स्कूल खुली भर्ती हबू कैया छः साल 14 साल तक लेका वाले की हो कोनी रत नुहाए अनपढ़ 6 साल 14 साल तो लेका वाले की हो कोनी रतर नुहाए अनपढ़ पढ़ुन लिखुन सपाई हुआ तुम्हें साक्षर इया।

स्कूल गेले पुस्तक मिरे से, स्कूल गेले कापी मिरे से, और मिरे से ड्रेस।

मन हुजर इया इया इया रे खेल तो पीला इया इया इया रे बुल तो पीला सिलड कापी धरुन स्कूल ने पढ़ुगलाई इया पढ़ले लिखले खुबे मिरुआई ज्ञान पढ़ले लिखले खुबे मिरुआई ज्ञान काम कमाई बूता बनाने जाऊआई ध्यान पढ़ले लिखले खूबे मिरुआई ज्ञान काम कमाई बूता बनाने जाऊआई ध्यान।

0: यान घर परिवार गाम समाई ने मिरली होना के खूबे समान इया इया इया रे खेल तो पीला इया इया रे बुल तो पीला सेलट का पी धरू न पड़ुक लाइया।
1: तो श्री डी एस बघेल जो हल भी कविता पाठ के आमी सुनलू ब्लेनकाय रसिया गाउन गाउन एमन पड़तो पीलामन के सांगते रला कि स्कूल ने इया सपाय बानी स्कूल ने पढ़तो लिखतो काजे मीरे दे। तो इधाएं सुनू गोंडी ने कहानी, कहानी सुनाए सोत मिथुन कुमार सोरी।
2: ईद कहानी वार सोर पाटा कहानी वार नरा ईद रोपाता चालू हिसाब ते अगर रोपा उर सनी के पर कहानी के वहचर वहचर की
3: तुसी जान तपलो यांदा
2: इंगो यार मूल सर मूल तर गोटुल दाइन रा गोटुल ते पर हुंच ते पर कहानी के वह ना की
3: अयो
2: लयंग लयोर मंजूर हत पंती ता
3: गा चुन लेवा तुम जगल हे
2: अंगो अल्ले ते बे वार सुरी रा
3: अल्ले से बे
2: रे रे।

0: ತರೆಯಡದಾದ ತರೆಯಡರ ತರೆಯಡದಾದ ತರೆಯಾಟೆ ಇಂತಲಿರ
1: ಇಂಗೋಲ್ಲಿರ
0: ಈ ಜೀ

0: सब्बाई ले यहाँ ले और तो चिमचा मुझ लेर ले रा
1: इंगोल ले रा
0: ये तो ले यहाँ स्वातल और हर देवार नितित ले रा
1: इंगोल ले रा
0: अचन तो कहते हैं सब्बाई हुंज ले रे चुन हुस्कार वितर चेते मातुर ले रा
1: इंगोल ले रा
0: इंगो नीमा

0: Re re lo yo re re la re re lo yo re re lo intalera
1: ingolera.

0: आद बातो होड़ित झमकाम हर हेरे नित्सित लेरा
1: निगले
0: अतब बने लैया चमके माना पाले भुरका लांद लेरा
1: निगले रा।

0: నాగాయ తనీగా వాలేనా ఎంతలేరా
1: ఇంగోలేరా
0: ఏ మాటి డేలా.

0: ਇਹਨਾਂ ਮਾਟੀ ਡੇਲਾ ਯਾਤਰਾ ਮਾਟੀ ਡੇਲਾ ਯਾਤਾ ਏ ਹਿੰਤਲੇਰਾ
1: ਗੋਲੇਰਾ।

0: इंगो नाक डेराई मोरा नाक डेराई मुए तलेरा
1: इंगोलेरा
0: अचन बाह केवेर कोटवार ये सम्मान नहीं अदेन फेर इंतोर ले
1: इंगोले
0: ए नाया के डे

0: Kerera ilei.
1: हाँ तो दखा मिथुन कुमार सोरी ये बोले कितलो बलने आमचो खेती किसानी चो कहानी के गोंडी ने सांग तरला एदाय सुनो भत्री ने कविता पाठ सुनाय सोत मनबोध बघेल।
2: मोर कविता नाम है मानव अधिकार। मुनुकर रखवार मुनुकर रखवार मानव अधिकार मानव अधिकार। भारत देशर कानून मानला और देशर लोग राजी पड़ले। भारत देशर कानून मानला और देशर लोग राजी पड़ले। राजी पड़ला उतारे जन्म ओला मुनुकर रखवार मुनुकर रखवार। मानव अधिकार मानव अधिकार। मुनुक जीवना के पोसबा काजे खूबे लोग और पंचायत आए। मनुक जीवना के पोसबा काजे खूबे लोग मनर पंचायत आए। भारत देश ने जन्मला कोड़ी गोटक दस बरक पोईले। भारत देश ने जन्मला कोड़ी गोटक दस बरक पोईले। एतार

हुआ है बरक तीन तीन ने समिति बाटले गुहार भारत देश और महामहिम समिति बाटले गुहार भारत देश और महामहिम मुनुकर रखवार मानव अधिकार सबू देशर लोक सभा कर लाए सबू देशर लोक सभा कर लाए गोट सबू देशर मान लाए मानव के पोषबाराय मानव के पोषबाराय मनुकर रीति नीति संगाय बाराय मनुकर रीति नीति संगाय।

0: सरकार आमर सरकार मानवा राय भारत सरकार आमर सरकार दंड नहीं नहीं दंड नहीं नहीं मुनुकर रखबार मानव अधिकार मानव अधिकार आमर पंचायत मुनुकर पंचायत आमर राज माना सरकार माना सरकार आमर पंचायत मनुकर पंचायत आमर राज माना सरकार माना सरकार महामहिम के सांगलू घरे जाई दिल्ली ने महामहिम के सांगलू घरे जाई दिल्ली ने भारत देशर कानून मानला मनुकर रखवार आमर जीवना आमर रबार सोबू मिलो रखिया करा सरकार मानव अधिकार मुनुकर रखवार मानव अधिकार बरक कोड़ी दस अगर कानून पास होयला मानव अधिकार मुनुकर रखवार रखिया हो आमर दुआर आमर घर रखिया हो आमर दुआर आमर घर मानव अधिकार मुनुकर रखवार गोटोक घोषणा होयला संयुक्त राष्ट्र संघ ले गोटोक घोषणा होयला संयुक्त राष्ट्र संघ ले मानव अधिकार मुनुकर रखवार मनुक जीवना समान हो आमर राज समान हो मानव अधिकार मुनुकर रखवार असन गोट जन्मला 1948 सन ने असन गोट जन्मला 1948 सन ने गोटोक आउर मानव अधिकार आमर जीवना आमर राजर अधिकार पोड़ी पोड़ी पड़बार अधिकार आमर सेवा आमर किरियार दुआर आमर सेवा आमर किरियार दुआर आमर पंचायत आमर सांगबार मुनुकर रखवार मानव अधिकार आमर देश आमर घर मानवर अधिकार देशर कानून सबू लोक काजे देशर कानून सबू लोक काजे एकला काजे सबू लोक काजे एकला काजे सबू लोक काजे आमर राज मौलिक अधिकार आमर राज मौलिक अधिकार मुनुकर रखवार मानव अधिकार भारत देशर कानून अर भाग तीन ने जाना काय भारत देशर कानून जाना काय भारत देशर कानून अर भाग तीन ने बारा ले कोड़ी पंद्रह आगर मौलिक अधिकार मुनुकर रखवार मानव अधिकार भारत देशर कानूनर दंड कसन मानव अधिकार बड़े मनुक जीवना और रबर मानव अधिकार समान मुनुकर रखवार होय बार मानव अधिकार गारंटी देशर कानून समान लाड़ दियास मनुकर रखवार मनुक जीवना मनुक काजे मनुक होय बाने मनुक जीवना मनुक काजे मनुक होय बाने संयुक्त राष्ट्र संघ मान लाए मनुकर अधिकार मानव अधिकार मौलिक अधिकार मनुक काजे मनुक होय बाने मौलिक अधिकार मनुक काजे मनुक होय बाने मनुकर रखवार मानव अधिकार
1: हाँ मनबोध बघेल छो ये भत्री ने कविता पाठ आम्ही सुनते रहलू एमन मानव अधिकार छो गोट के सांगते रहला कि मानो आम्ही सपाय बराबराम आम्ही

इमाजपुरने कसन सपाय मिलुन मिसुन जीवना जीवतो राय तो दखा रेडियो सुनतो भाई बहन मन असने आमचो ये कार्यक्रम के सुनते रहा बरन बरन चो किसम किसम चो गोट मन आमके जानुक मिरे दे सुनुक मिरे दे तो सपाय रेडियो सुनतो भाई बहन मन के खूबे खूबे सेवा जुहार।

साहित्य पत्रिका कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के संपादक थे बलबीर सिंह कच्छ। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: और पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

श्रोताओं, आकाश में सितारे जितने खूबसूरत लगते हैं उतने ही रंगीन होती हैं कुछ फिल्में, जो समय बीत जाने के बाद भी दिलों में अपनी चमक बनाए रखती हैं। स्वागत है आपके प्रिय कार्यक्रम एक ही फिल्म से में, जहां हम सुनते हैं एक ही फिल्म के चुनिंदा सदाबहार गीत और जान लेते हैं उस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं वर्ष 1965 की बहुत ही खूबसूरत फिल्म तीन देवियां के गीत। ये फिल्म केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि जीवन भावनाओं और रिश्तों के अलग अलग रंगों को बहुत ही सादगी और खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है। इस फिल्म के नायक हैं हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता देवानंद, जिसकी मुस्कान, अदाकारी और स्टाइल ने सदैव दर्शकों का दिल जीता है।

हिंदी सिनेमा में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें केवल देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। तीन देवियां भी ऐसी ही एक

फिल्म है। ये एक संवेदनशील, रोमांटिक और भावनात्मक कहानी है जिसमें प्रेम के अलग अलग रूप, जीवन के उतार चढ़ाव और इंसानी रिश्तों की बारीकियों

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 1965 की फिल्म तीन देवियां के कुछ गाने। श्रोताओं, इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है इसका संगीत। संगीतकार SD बर्मन ने अपने मधुर और आत्मीय संगीत से हर गीत को अमर बना दिया है। वहीं गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने भी ऐसे शब्द रचे हैं जो सीधे दिल तक पहुंचते हैं, और जब इन गीतों को मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे महान गायकों की आवाज़ मिली तो ये गीत सदाबहार बन गए। सचमुच कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि और अधिक खूबसूरत लगने लगते हैं। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, ऐसा ही गीत है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि जब प्रेम सच्चा हो तो हर पल किसी खूबसूरत सपने जैसा लगता है।

श्रोताओं, फिल्म तीन देवियां के केंद्र में हैं सदाबहार अभिनेता देव आनंद। उनका चिरपरिचित अंदाज, चेहरे पर खिली मुस्कान, संवाद बोलने का अनदेखा अनोखा तरीका और सहज अभिनय इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उनके साथ तीन प्रतिभाशाली अभिनेत्रियां नंदा, कल्पना और सिमी गरेवाल नजर आती हैं। तीनों अपने अपने अलग व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि के कारण कहानी को नया मोड़ देती हैं। तीन अलग अलग स्त्री पात्र इस फिल्म को उसका शीर्षक तीन देवियां प्रदान करते हैं।

ये सिद्ध किया है कि सशक्त कहानी, श्रेष्ठ अभिनय और मधुर संगीत मिल जाएं तो फिल्म पीढ़ियों तक याद रखी जाती हैं। देवानंद का आकर्षक अभिनय, नंदा, कल्पना और सिमी गरेवाल का शानदार साथ, मजरू सुल्तानपुरी की भावपूर्ण लेखनी और सचिन देव बर्मन का कालजयी संगीत, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की अनमोल धरोहर बना दिया।

एक ही फिल्म से। अभी ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म तीन देवियां से कुछ गाने। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित आपातकाल स्मृति दिवस समारोह में लोकतंत्र सेनानियों का किया सम्मान। छत्तीसगढ़ में आज से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली का लाभ मिलेगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित आपातकाल स्मृति दिवस समारोह में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि सेनानियों का त्याग और संघर्ष नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने आपातकाल पर आधारित स्मारिका आपातकाल के योद्धा का विमोचन किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आपातकाल लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग रहने की सीख देता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इंद्रेश कुमार थे। उन्होंने अपने संबोधन में लोकतंत्र, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। समारोह में निबंध प्रतियोगिता के को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे पोलियो की दवा पीने से छूट गए थे, उन्हें आज दूसरे दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर पोलियो की दवा पिला रही हैं। वहीं कल भी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश में 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में आज से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। 6 जुलाई तक चलने वाले सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तय बायबैक दर को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंजूरी मिलने के बाद ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त सोलर बिजली की राशि उपभोक्ताओं के अगले बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में मिलेगी। नेट मीटरिंग व्यवस्था से अतिरिक्त बिजली का हिसाब रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी

0: द्वारा हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित दंतेवाड़ा की समाज सेवी डॉक्टर बुधरी ताती का साक्षात्कार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा अब से कुछ देर बाद 10 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटा गहना में सर्पदंश से नानी और नातिन की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रात में सोते समय 8 वर्षीय बच्ची को जहरीले सांप ने काट लिया। बचाने पहुंची उसकी 56 वर्षीय नानी को भी सांप ने डस लिया। इलाज के लिए ले जाते समय बच्ची और बाद में नानी की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अनुमान है कि आज सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 6 दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। वहीं उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश की संभावना है। सरगुजा जिले के रामगढ़ में आज से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। महोत्सव के पहले दिन छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित आपातकाल स्मृति दिवस समारोह में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। छत्तीसगढ़ में आज से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली का लाभ मिलेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने के लिए, और हम सब छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, बस्तर के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है ये। आपको बहुत सारी बधाइयाँ।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: हमने देखा जब उसमें जब राष्ट्रपति महोदया आपको सम्मानित कर रही थी पद्मश्री से, तो आप आदिवासी वेशभूषा में पहुंची थी। हम लोग को बहुत अच्छा लगा वो देख के। तो वो जानबूझकर आपने चुना था कि नहीं यही वेशभूषा में जाएंगी आप?
1: ये तो हमारा परंपरा है
0: जी,
1: हजारों वर्षों से, क्योंकि हम वन जंगल पहाड़ से जुड़े हुए, हमारे क्षेत्र का ही वेशभूषा का एक प्रकार का सो है यो।
0: जी, जी।
1: तो हम ये सोचे कि हमारा परंपरा है वेशभूषा,
0: जी
1: हम उसी वेशभूषा से क्यों नहीं जाएंगे, हमारा आदिवासियों का।
0: जी, कैसा महसूस हुआ जब राष्ट्रपति ने, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है पद्म सम्मान से सम्मानित होना, कैसा महसूस हुआ आपको जब आपको चुना गया और अब राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आपको सम्मानित किया, कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त?
1: मुझे तो महसूस तो ये हुआ सर, क्योंकि मुझे बचपना से लेकर आज तक काम किए हैं, हमने कभी सोचे नहीं कि इतना बड़ा जगह में मेरा कभी पहुंच होगा।
0: जी,
1: मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा बेटी बहने कितने निसंकोच रहे, जैसा रहे, बहुत खुशी की बात है सर।

0: हमारे समाज का गौरव है सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम सब के लिए गौरव की बात है। बस्तर में लोग आपको बुआ और बड़ी दीदी के नाम से जानते हैं, इसी तरह से पुकारते हैं, हम भी दीदी कहेंगे आपको। तो दीदी ये बताइए कि ये जो 35-36 वर्षों की जो आपकी यात्रा है, ये शुरुआत कहाँ से हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, अपनी शुरुआत से इस यात्रा का हम जानना चाहते हैं।
0: मेरा जन्म हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग दंतेवाड़ा जिला एक छोटा गांव है हीरानार
1: जी,
0: हीरानार गांव में मेरा जन्म हुआ है और मेरा बाल खाल से ही मेरे माता से ही संस्कार मिला
1: जी।
0: सब लोग नशा कोरी करते रहे लेकिन मेरे माता जी कभी नशा नहीं की
1: जी,
0: बिल्कुल साधारण थी
1: जी।
0: और अभी उसी कुल में ताती परिवार में जन्म ली हूँ
1: जी।
0: और 8 साल की छोटे समय से ही मुझे आध्यात्मिक जीवन में बहुत रुचि रहा सर
1: जी।
0: मैं 8 किलोमीटर दूरी में एक दिव्य जीवन संघ है
1: जी,
0: वहाँ जाना आरंभ की और थोड़ा सा बड़े होने से मेरा इतना रुचि था आध्यात्मिक में, जब स्नान भी करती रही बिना तुलसी माँ के जल चढ़ाए बिना मैं खाना पीना सेवन नहीं करती थी।
1: अच्छा,
0: ऐसा बचपना से मेरा गुजरा है सर। हमारे सदा प्रेमानंद गुरु महाराज
1: जी,
0: उनके पास जा करके थोड़ा बहुत शिक्षा वगैरह ध्यान करते थे गुरुकुल में
1: जी,
0: और पूजा पाठ करते थे, उसके बाद उन्हीं के आशीर्वाद से जो है मुझे आज कहीं जाने को मिला है।
1: तो उस समय किस तरह के आपको आश्रम में शिक्षा, आपको ज्ञान मिला जिसने आपको प्रेरित किया?
0: जैसा कि हमारे गुरुदेव पूजा पाठ के बाद हमको बिठाता था
1: जी
0: और शिक्षा के बारे में बोलता था, मानवता के नाते में कैसा होता है ये सब शिक्षा देता था
1: जी।
0: तो हम बचपना से हम भी अध्ययन करते थे।
1: अच्छा,
0: जैसे हमारे गुरुदेव ने इतना अच्छा उपदेश दे रहा है हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं
1: जी,
0: तो इस चीज को हमारे समाज के लिए तो मुझे भी करना होगा। बहुत छोटे समय से मुझे ये बातें अंदर से बाहर आना चालू किया।
1: अच्छा,
0: ऐसा है।
1: फिर अगला पड़ाव क्या था, आप नागपुर भी गईं, फिर वहाँ पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति में भी आपने प्रशिक्षण लिया, उन सब के बारे में बताएं।
0: तो इसमें क्या है सर, एक दिन अचानक हम तो समय 14-15 साल के थे
1: जी,
0: तो अचानक ही मेरे घर में हम बैठे थे
1: जी,
0: तो अचानक एक ही सज्जन आया आंध्रा के, वो अचानक आया दोपहर को
1: जी।
0: आने के बाद ही वो बोला कि बेटी मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या
1: जी,
0: तो मैं 4 दिन से भूखा हूँ
1: जी।
0: वो आया आराम को बोला, फिर खाना खाने के बाद 5 मिनट लेटा, उसके बाद हाथ जोड़ा, बेटी मैं एक ही काम के लाया हूँ कि मुझे आपके जैसा बहने का जरूरत है।
1: अच्छा,
0: अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम में महिलाओं का काम भी करना चाहते हैं
1: जी,
0: लेकिन उनके लिए ऐसी समाज के कोई महिला चाहिए तो आप आएंगे, इतना ही मुझे बोला है
1: जी।
0: ये बोलने के बाद ही मुझे तो पहले से ही प्रेरणा था
1: जी,
0: कि कौन बोलेगा, कहाँ जाएंगे, घर के लोग क्या बोलेंगे
1: जी।
0: तो बोलने के बाद मैंने तुरंत बोले कि हाँ मैं जरूर आ सकती हूँ लेकिन घर का अनुमति बिना नहीं होगा
1: जी।
0: तो जैसे वो बोल के चला गया
1: जी,
0: फिर माँ और भैया के सामने ये बात रखी हूँ, ऐसा ऐसी बात है मुझे यहाँ से जाने दो
1: जी।
0: मैं बोली कि भैया ऐसा ऐसा एक जन आया है बता के गए है मुझे यहाँ से आप छोड़ो
1: जी।
0: नहीं नहीं हम नहीं छोड़ सकते, हमारे समाज से सतत मना है कि कोई भी बहन बाहर नहीं जा सकती है। तो इतना बोलने के बाद भी मैंने उनको अटकी है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरा जिम्मेदारी अपने आप को बचाने का
1: जी,
0: और आपको भी कभी धोखा नहीं देने का है
1: जी,
0: आप 1 साल के लिए मुझे यहाँ से निकाल दीजिए
1: जी।
0: तो जहाँ भैया नहीं बोलने वाला स्वयं छोड़ने के लिए नागपुर राष्ट्र सेवक समिति में वो महिलाओं का काम था सर
1: जी,
0: वहाँ ले जाके छोड़ दिया
1: जी।
0: मैं भी एक बहन को साथ में ली तो चलो मेरे साथ आप भी चलो
1: जी,
0: तो मेरे परिवार के
1: जी।
0: आने के बाद ही हमको ऐसा लग रहा था हम कहाँ जंगल पहाड़ में रहने वाले लोगों के जंगल में आ गए
1: जी,
0: बड़ा कष्ट हो रहा है
1: जी।
0: 2 दिन तक रोना गाना तो चला है सर।
1: जी,
0: उसके बाद ही हमने जो निष्ठा रखे कि मैंने 1 साल का वादा करके आई कि मैं समाज में काम करना चाहती हूँ
1: जी
0: और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे जैसा हजारों बहने पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए कौन करेगा, मुझे करना होगा
1: जी।
0: ऐसा मैं भी एकदम ठान ली था। उसके बाद फिर ज्यादा नहीं तो 3-4 महीना व्यवहारिकता सीखी हूँ
1: जी,
0: मैं रिटर्न वापस आई हूँ 84 में ही मैं बस्तर गई। आज हमारे मंत्री केदार जी है वो छोटे छोटे थे
1: जी,
0: खेलते रहे हमारे सामने
1: जी,
0: उस समय
1: जी।
0: तो मैं उनके गांव में गई वहाँ किराए में रह करके फिर वहाँ एक छात्रावास का निर्माण किए, निर्माण करने के बाद एक कि पानी के लिए साधन नहीं था तो कुआं खोदे
1: जी,
0: उसके बाद जो है 12 बहनों को वह स्थापित की।
1: अच्छा,
0: स्थापित करने के बाद ही वो बड़े हो गए धीरे धीरे वहाँ के बहने
1: जी,
0: वहाँ के बहने को जैसे स्कूल खाना उना स्वयं बनाते रहे
1: जी,
0: खाना बना के उनको खिलाते रहे, उसके बाद जो है उनको स्कूल भेज करके
1: जी
0: मैं भी उनके साथ साथ में गांव में जाती था, आसपास के गांव में।
1: जी
0: छोटे छोटे बच्चों समय तो स्कूल नहीं जाते थे
1: जी,
0: उन बच्चों के लिए कुछ कर करके एक बाल संस्कार केंद्र चालू करते थे, 70-80 बच्चे आते थे।
1: अच्छा।
0: फिर गांव से कुछ इकट्ठा करके उनको खाने के लिए सब करने के लिए व्यवस्था करती थी, जैसे 10 बजे से लेके 4 बजे तक मैं उनका सब करती थी
1: जी।
0: वहां का जो स्थापित करके वातावरण बना के मैं फिर वहां से मैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला
1: जी
0: पारसूरक करके केंद्र है
1: जी,
0: वो अबूझमाड़ का काम करने के लिए मैं वहाँ चले गए।
1: अच्छा।
0: वहाँ जाने के बाद ही मुझे और एक चिंतन होना चालू हो गए कि जैसा कि

0: जी,
1: हमारे जैसे बड़े बहनों को कैसे चुनती है
0: जी,
1: और उनको कैसा बात करने से वो बहन आने को तैयार होती है।
0: अच्छा।
1: उसी में ट्रेनिंग होता था मेरे साथ में जो रहते थे।
0: वाह।
1: तो 555 गांव को घूमने के बाद पता चला कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है तो फिर यहाँ के लोकल बहनों का जरूरत है
0: जी,
1: और लोकल बहनों का जरूरत है तो उनको संस्कार भी चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी चाहिए और उनको जो प्रेरणा देना चाहिए कि ताकि वो भी यहाँ का काम कर सके
0: जी।
1: ऐसा करके उसी समय से फिर 87 से बहनों का जो बड़ा टीम है 15 साल से 30-35 साल के
0: जी
1: ऐसा बहनों को ला करके 20-30 बहनों को ला के ट्रेनिंग देना चालू किए, सिलाई बुनाई पढ़ाई
0: जी
1: संस्कार
0: जी
1: ऐसा देना चालू किया। उसी समय से फिर बहनों का गति बढ़ गया
0: जी।
1: फिर एक एक टीम से मुझे 10 लोग 12 लोग पूर्णकालीन कार्यकर्ता मिलने लगे
0: जी।
1: वैसा जो शिक्षा के संबंधित में एक ही वातावरण बनाए है
0: जी।
1: फिर छोटे बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते तो ऐसी बच्चों को भी साथ साथ में हम लोग आगे बढ़ाए हैं सर
0: जी। दीदी आपने चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, पर्यावरण संरक्षण का, या फिर सामाजिक कुरीतियों की बात हो, सब क्षेत्रों में काम किया है। नशा मुक्ति में भी आपने कमाल का काम किया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जन्म दंतेवाड़ा के हिरनार गाँव में हुआ, तो वहाँ पे क्योंकि आपकी पैदाइश थी, आपने आसपास देखा, फिर आपने गुरुमगुंडा आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, फिर नागपुर गए, तो इस दौरान में जब आप लौटे और फिर आपने उस क्षेत्र में काम करना शुरू किया, तो आपको क्या लगा कि सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसमें सबसे पहला काम करना है, क्या महसूस हुआ उस वक्त?
1: सबसे बड़ा तो एक काम मुझे ध्यान में आया, जैसे कि हम बचपना से देखते थे
0: जी,
1: एक कुरीति समरसता नहीं था, जैसे उस समय तो हैंडपंप नहीं होता था गांव में, झरना से पानी निकालता रहा, वहां से पानी को निकाल के ले जाना पड़ता, उसके लिए भी जाति प्रथा बहुत था, हम
0: अच्छा।
1: बहुत दूर खड़े रहते रहे,
0: अच्छा,
1: दूसरे जाति के कोई आके पानी ले जाएंगे, फिर हम ले जाने से उस पानी को सफाई करेंगे, वहां से निकाल के साफ करके अपना पानी भर के ले जाते रहे
0: जी।
1: ये हमको देखने को बचपना में मिलता रहा
0: जी।
1: और एक साथ कभी खाना नहीं, एक साथ बैठना नहीं, महिलाओं में बहुत जात पात रहा, छुआछूत रहा
0: जी।
1: तो मैं इसको भी सोची कि जब तक ये हम एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ नहीं होंगे, तो फिर हमारा समाज का अधूरा एक कब सुधरेगा। तो ये सब को एक में करने के लिए क्या करना होगा, फिर इसको हम लोग उनके साथ बैठना उठना चालू किए, एक साथ खाने का कोशिश किए, लेकिन नहीं खाना, छूत मानना, वो अपना अपना चूल्हा जलता रहा
0: अच्छा
1: खाने के लिए
0: जी।
1: ऐसा करते करते फिर आगे जा करके फिर एक साथ आने लगे, एक बार तो 5,000 लोग आए, सब चूल्हा जलने लगा
0: जी,
1: कोई एक साथ खाना खाने को तैयार नहीं, इतना छूत मानते थे।
0: अच्छा।
1: फिर लोगों को अनेक प्रकार का वो सब सिखाने के बाद जो है बताने से लोग साथ में आए, फिर गाने लगे, फिर कई प्रकार का जो है समस्या समाधान में आया, समरसता आया, आज एक साथ खाना, एक साथ उठना, हजारों बहनें एक साथ मिलजुल के, उसमें कोई जात पात नहीं, इसको संघर्ष करना पड़ा, बहुत मेहनत करना,
0: बहुत बड़ी बात है। मतलब देखिए, सबसे पहले आपने सामाजिक एकता लाने का, भेदभाव दूर करने का काम किया, क्योंकि बाकी सब चीजें तो बाद में है, पहले तो एकता जरूरी है जी जी। और फिर शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आपने महिलाओं को, वहाँ बहनों को जागरूक किया, इसके बारे में बताएं, क्योंकि अशिक्षा भी नहीं, पढ़े लिखेगा नहीं तो उसको पता ही नहीं होगा उसका अधिकारों के बारे में, इसके बारे में कैसे आपने लोगों को जागरूक किया
1: इसके बारे में? क्योंकि जैसे समरसता तो एक साथ हो गया है
0: जी,
1: लेकिन पढ़ाई लिखाई होना भी महत्वपूर्ण है सर
0: जी, बिल्कुल।
1: सबसे पहले तो हम खुद भी बहुत पढ़ाई लिखे नहीं थे
0: जी,
1: हम गुरु के पास जाकर थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख रहे थे, स्वयं पहले हम लोग 5वीं 8वीं 10वीं किए
0: जी,
1: तब हमको भी समझ में आया कि दूसरे को भी हम ऐसा कर सकते, फिर बेटी बहनों को पढ़ने के लिए आगे लाए, लोग चाहते थे कि बेटी है तो दूसरे के घर जाने वाली है, इसको पढ़ाई लिखाई करना क्या मिलेगा, हम लोगों को खर्च क्यों करेंगे, ऐसा लोगों की सोच भी था
0: जी।
1: लेकिन बाद में सब उनके सामने जाना, उनके साथ बात करना, ये सब करके जो है पढ़ाई लिखाई का भी, बेटी बहनों का हम पढ़ाई के बारे में आगे सोचे हैं, आगे बढ़ाए हैं, बड़े बड़े बहनों को भी साक्षरता बनाए, उसमें से 545 ऐसा कुछ बहनें हैं
0: जी,
1: पूरा एकदम अनपढ़, कभी स्कूल नहीं गए हैं,
0: अच्छा,
1: कभी स्कूल नहीं गए, ऐसी बहनों को ला करके हमने साक्षरता बनाए, पेपर दिलाए, किसी की सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से ऐसा उनको शिक्षा देना और वहाँ ले जाके पास कराना
0: जी।
1: आज जो है ऐसी बहनें हर पोस्ट में गए, अपने आप को समझ में आया कि हर पोस्ट में गए हैं, नर्स में गए हैं, कोई पुलिस विभाग में है, कोई टीचर बना है, कभी स्कूल नहीं गए, आज वर्तमान में TI भी बना है,
0: अच्छा,
1: और एक ही बाल विकास अधिकारी बनी।

0: जी,
1: ये कब स्कूल नहीं गई।
0: कितनी बड़ी बात है, देखिए शिक्षा के माध्यम से आपने उनको सशक्त बनाया,
1: सशक्त बन
0: गया, आत्मनिर्भर बन गई वो बहन।
1: जी जी, फिर उसमें से साथ साथ में सिलाई है
0: जी,
1: बुनाई है, ये सारे जो है उनको सशक्त कारण उसको बनाए हैं। बड़े बड़े कलेक्टर बने
0: जी,
1: बड़े बड़े अफसर बने
0: जी।
1: अब उनको समझ में आया शिक्षक होने के नाते
0: जी,
1: सब जगह पहुंच गए, सब जगह अपने आप को समझ गए, बड़े से बड़े जगह में बैठ रहे हैं।
0: बहुत बड़ा काम किया आपने, बहुत बड़ा काम किया। इसमें एक बात और भी है, क्योंकि आपने वहाँ पे ये भी पाया कि वहाँ समाज में, गांव में नशा भी एक बहुत बड़ी बुराई है और वो भी लोगों के विकास में एक बड़ा रोड़ा होता है, तो नशा मुक्ति के लिए भी आपने बड़ा अभियान चलाया, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: नशा पुराने लोगों का है, लोग कहते थे कि नशा तो अनिवार्य है कि हमको पीना ही है
0: जी,
1: लेकिन हमने 1984 से लेकर 86 आज तक भी हम गांव में जाने लगे
0: जी,
1: कभी भी हम नशा के बारे में नहीं पीना ऐसा हमने ज्यादा दबाव नहीं किए
0: जी,
1: लेकिन हम उनके साथ ही जाना बैठना खाना उनके साथ रहना अपना व्यक्ति समझ गए कि दीदी जी ने जितने भी इनके ग्रुप है आज ही 1984 में भी देखे आज भी देख रहे कि इन लोग कैसे स्वच्छता है
0: जी,
1: अगर नशा नहीं करने से व्यक्ति स्वाभिमान कैसा बढ़ता है,
0: बिल्कुल
1: अपने आप व्यक्ति संस्कारित होता है
0: जी।
1: तो ये जो है नशा मुक्ति में लोगों के साथ मिलते जुलते आज हजारों बहने नशे से मुक्त हो गए, हजारों पुरुष मुक्त हो गए
0: जी। आपने वो भी किया, लोगों को शिक्षा की अलख जगाई आपने वहाँ पर, आपने स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों को जागरूक किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अस्वच्छता से, है ना, स्वच्छ नहीं रहने से और तमाम अंधविश्वास से भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। आपने इस बारे में भी वहाँ पे लोगों को जागरूक किया और हमें तो पता चला है कि आपने जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसके माध्यम से भी उपचार करके कई लोगों का इलाज किया, इसके बारे में बताएं।
1: हम लोग जैसे हमारा टीम है, मेरे साथ बहुत सारे बहने हैं अभी भी
0: जी,
1: हम गांव में महिला जागृति शिविर करके हम लोग रखते थे
0: जी,
1: 10 बजे से 3 बजे तक
0: जी।
1: उसमें ये जो स्वास्थ्य के संबंधित
0: जी
1: छोटे छोटे चीज है
0: जी,
1: वो सभी हम लोग प्रथम जो है गर्म पानी करके पीना, गड्ढा से पानी लाते है तो छान के लाना
0: जी,
1: ढक के रखना
0: जी,
1: हाथ पैर ठीक से धोना
0: जी,
1: बच्चों को भी धुलाना और हम सफाई कैसा रखना
0: जी,
1: ये छोटे छोटे बात होती है उसको हमने शुरू किए
0: जी।
1: और जो गांव में मिलता है जो भी मिलता है हमारे पास
0: जी,
1: उसको अंकुरित करके खाना
0: जी,
1: और जैसे पपीता मिलता है तो लोग बेचने ले जाते लेकिन खाते नहीं है
0: जी।
1: पपीता खाने से हमने सुने थे कि एक टुकड़ा खाने से 4 टुकड़ा मांस खाते उसके बराबर का ताकत मिलता है। पपीता खाइए, हांक का तेज रहेगा, फिर हमारे पेट में पित्त होता है, पपीता खाने से पित्त अपने आप दूर होता है
0: जी।
1: ऐसा कई छोटे छोटे जानकारी देते देते ये स्वास्थ्य के बारे में बहुत लोग परिवर्तन हो गए, अच्छे हो गए। और एक समय में एकदम बीमार होकर के पूरे झुक के चलते थे, पतला दुबला होते थे, उसको एल्ले दक्की बोलते हैं वहाँ लोकल भाषा, ओठी भी बीमार जिसको होता है उसको एल्ले दक्की बोलते हैं। ऐसी लोगों को स्वास्थ्य के संबंधित में एक साथ में 80 लोग ठीक हो गए। दूसरा है कि कभी कभी जो गांव में सिर दर्द होता है
0: जी,
1: पूरा किसी को बाल भी झड़ गया था
0: जी,
1: ऐसी व्यक्ति दवा खाने आता है, फिर वो जड़ी बूटी का दवा देने से वो आदमी ठीक हो गए।
0: मतलब प्रकृति हमको सब कुछ देती है,
1: जानकारी लेना पड़ता है,
0: जरूरी है।
1: हमारे बहने लोग पहले से ही दादा परदादा से सीखे रहते थोड़ा बहुत
0: जी,
1: तो वो अभी कभी कभी समय आने पर उसको देते हैं। और जो हमारे पास में कई प्रकार का अनाज होता है, कमजोरी के लिए हम लोग पैसा खर्च करते हैं, तो कमजोरी के लिए इतना सारे सब होता है कि 9 प्रकार 10 प्रकार का जो सामग्री होता है उसको इकट्ठा करके उसको पिसवा के लड्डू बना के खाना, उसका सूरन बना के स्वयं इन लोग देते हैं बहने लोग
0: जी,
1: तो उससे कितने बहने कितने भाई लोग ठीक हो गए।
0: अरे वाह, बहुआयामी काम है आपका। लेकिन ये भी बताइए कि ये जो पूरा सफर है वो इतना आसान भी नहीं रहा, कई बार आपको विरोध का सामना करना पड़ा और कई बार तो हमले भी हुए हैं, कुछ ऐसी घटना बताइए, क्योंकि हमें पता चला है कि अबूझमाड़ में ही कुछ लोगों ने हमला करने का भी प्रयास किया था, तो बहुत आसान नहीं रहा यह सफर आपका।
1: वैसे तो स्वाभाविक है, जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके काम करना चाहता है उसको तो बिना घटना के कोई सफल नहीं हो सकता है।
0: जी।
1: हम गांव में जाते हैं तो किसी गांव में हमारा कोई पहचान नहीं है
0: जी,
1: उस गांव में जाकर के रात में मुखाम करते हैं
0: जी,
1: इस गांव से आप जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी हम लोग सोचते हैं
0: जी,
1: ऊपर वाले के ऊपर सौंपते हैं कि जो बचाने वाला आप है, नहीं बचाने आप, ईश्वरीय काम है।
0: बिल्कुल,
1: एक दिन हमारे साथ में अभी एक बहन आई, हम बहुत दूर में चले गए, करीबन 80-70 किलोमीटर

0: जी
1: एकदम नया गांव है
0: जी
1: हमारे छत्तीसगढ़ आंध्र ऐसा जुड़ा हुआ
0: जी।
1: उस गांव में गए, सुनसान गांव है। वहाँ जाने के बाद ही अचानक लोग एकदम आ गए,
0: जी
1: महिला पुरुष सब पर्ची उर्ची जितना उनके पास हथियार होता है सब लेकर आए।
0: जी
1: लेकर आने के बाद ही आ गए, हमको समझ में नहीं आ रहे सब क्या कर रहे हैं। कोई सल्फी पीने के लिए नशा वाला लाए, नशा पिलाना है, मार डालना है, ऐसा सोचे
0: जी
1: हम लोग तो कुछ नहीं सोचे हैं। तो मेरे साथ में आज मेरे सामने बगल में बैठी है बहन, जो बहन चिमक रही है पीछे से, और आज तो हमारा निश्चित मौत है। मेरी बड़ी वाली बहन रहती है, उसको बिना देखे मेरा मौत तो आज निश्चित है। इतने सारे लोग मारने के लिए हम यहाँ से कैसे जाएंगे, तो हम 70-80 किलोमीटर में है
0: जी
1: तो हम कैसे जाएंगे, ऐसा सोची थी। मैं मन मन में बोली उसको कि कोई बात नहीं है, हमारे पास कोई चीज नहीं है,
0: जी
1: ऊपर वालों का कृपा है, अगर मौत होता है तो भी हो जाता है, अब क्या कर सकते हैं हम।
0: जी
1: तो इतना बड़ा घटना सामने आने के बावजूद भी ऊपर वाले ने बराबर वो सब ठीक ठाक किए, पता नहीं क्यों शांत हो गए यार, पूरा अपना पर्चा अपना सब हथियार नीचे रखे।
0: अच्छा
1: और नीचे रखने के बाद बोलने के लिए कि आपको पीना है, फिर हमने हाथ जोड़े कि हम तो कभी नशा पीते नहीं है,
0: जी
1: तो आप पी लीजिए, हम आपको देते हैं डालते हैं। फिर हमको अलग से खाना बना दिया, सब नहीं खाएंगे बोलने से, इतना
0: जी
1: मारने खिलाने के बावजूद भी
0: जी
1: फिर खाना बना दिए।
0: जी
1: खाना बनाने से इतनी सी दाल बनाए, उसमें इतना सारे छोटा माड़िया मिर्ची होता है,
0: जी
1: इतने
0: जी
1: तेज होता है,
0: जी
1: जितना दाल उतना मिर्ची डाले,
0: ओ बाबा
1: और हमको खाने के लिए दे रहे।
0: जी
1: हम उनके पास खाना पड़ा, हम
0: वो
1: खाए हैं
0: इतना तीखी दाल आपको खाना
1: तीखे, तो
0: जी
1: खाए हैं।
0: जी
1: खाने के बाद ही
0: जी
1: लोगों को विश्वास हो गया, ये लोग हमारे लिए आए हैं, हम
0: जी
1: इनको मारने के लिए कोशिश किए थे।
0: जी तो उनको
1: जो
0: पश्चाताप हुआ फिर।
1: हाँ,
0: जी
1: जो आदमी अच्छे कार्य करना चाहता है उसको कोई ना कोई बचाने वाला भी होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ऐसे कई प्रकार का समस्या, कई संघर्ष हुआ, कभी नदी नाला से है, कभी कहाँ से है, अच्छा ऐसी तो बहुत है सर।
0: आपका जो समाज के प्रति जो समर्पण है, काम के प्रति जो समर्पण है, तो वहाँ पर लोग आपको बुआ कहते हैं, बड़ी दीदी कहते हैं, कैसा लगता है जब संबोधन से बुलाते हैं आपको?
1: जब मैं पहले जाती रही, हमको देख करके दरवाजा बंद करते थे,
0: जी
1: अरे इन लोग आए हैं तो हमारे बच्चों को ले जाएंगे कि हमको ले जाएंगे, ऐसा दरवाजा बंद होता रहा।
0: जी
1: लेकिन वही घर के वही परिवार कोई समाज के लोग, बड़े दीदी के नाते कभी नाम नहीं लिया आज तक,
0: जी
1: तो मुझे नाम नहीं लिए, बड़े दीदी के नाते बातें करते थे और बुआ के नाते बात करते हैं,
0: जी
1: इतने रिश्ता बना दिए, परिवार बना दिए,
0: जी
1: तो मुझे तो अच्छा लगता है कि आज ये परिवार कितने संस्कारित में आए हैं।
0: जी दीदी, आकाशवाणी के साथ भी आपका संबंध बहुत पुराना रहा है। आपने बताया कि आज से 20-25 साल पहले आकाशवाणी ने जगदलपुर में आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, और ये भी आपने बताया है कि आपका बैंक का सबसे पहली बार खाता भी आकाशवाणी की वजह से खुला।
1: जी
0: इस वाक्य के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: ये तो बहुत सही बोले आपने
0: जी।
1: मैं 1986 में दक्षिण बस्तर में काम करने गई,
0: जी
1: मुझे लगभग 87 में आकाशवाणी में बुलाया गया, मेरे साथ में एक बहन थी,
0: जी
1: हम दोनों बहन आए हैं, और मुझे उस समय मैं भी खुद मेरा आयु भी कम था, हम आकाशवाणी में बुलाए तो हमको तो मालूम नहीं आकाशवाणी क्या होता है।
0: जी
1: इसी प्रकार से हमको अंदर ले गए,
0: जी
1: अंदर ले जाने के बाद पूछा गया कि हमारा बस्तर में जो लोक कथा होता है पुराने लोगों का,
0: जी
1: ऐसा कथा के बारे में 14 मिनट का, एक किसी का 21 मिनट का दिए थे।
0: जी
1: तो हमने एक दूसरे कथा किए बोले, फिर हमको तो मालूम नहीं कि यहाँ से कुछ मिलता है,
0: जी
1: हम तो उसके लिए नहीं आते हम।
0: जी
1: तो हमको एक चेक दिया गया, दोनों
0: अच्छा
1: बहन को,
0: जी
1: और चेक लेके हमने सोचने लगे चेक क्या होता है, इसमें
0: जी
1: क्या पैसा है कि क्या, हमको भी मालूम नहीं।
0: जी
1: फिर किसी को दिखा ये क्या होता है, फिर आकाशवाणी में बोले जगदलपुर में,
0: जी
1: ये जो है आपने 14 मिनट बोले उसके लिए सरकार ने आपको आकाशवाणी तरफ से आपको सहयोग दिया है,
0: जी
1: ये दोनों के लिए दो चेक है, आप इसको लेके जाइए।
0: जी
1: फिर गर्मेड़ी बैंक में लेके गई, ऐसा ऐसा आकाशवाणी से हमको मदद मिला है, तो इसको क्या करना होगा, तुरंत बोला इसको खाता खोलेंगे, आपका पैसा जो यहाँ है यहाँ पर जमा हो जाएगा और आपका एक ही पासबुक बनेगा,
0: अच्छा
1: तो आप जो है इसी के माध्यम से आगे भी आप ही आर्थिक सुधारने के लिए आप पैसा जमा कर सकते हैं, ऐसा बोल के वो खाता खोल दिया।
0: जी
1: मुझे अनुभव विश्वास हो गया कि हमारे गांव में तो कहीं खाता नहीं खोलते हैं,
0: जी
1: मालूम नहीं है,
0: जी
1: पैसा रहता है तो गड्ढा में छुपाते तो दिमाग पकड़ता है,
0: जी
1: नाली कपड़ा में छुपाते हैं तो कपड़ा के अंदर से चूहा खाते हैं।
0: जी
1: तो हमने महिलाओं के बीच में जाने लगे, देखो हमारा आकाशवाणी तरफ से हमको सहयोग मिला है, तो हमने खाता खोले हैं और हमारा सुरक्षित है,
0: जी
1: तो आप भी खाता खोल सकते।

0: हम लोग ग्रुप ग्रुप में महिलाओं को लाने लगे।
1: अच्छा।
0: घर में बैंक में बारसूर में
1: जी।
0: तो लोग बड़े लोग बैठे हैं
1: जी।
0: अगर यहाँ पैसा जमा करेंगे गांव का पैसा ये कब देंगे नहीं देंगे बिल्कुल देंगे ये हमारे लिए बैठते हैं हमको आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बैठे। ऐसा करते करते अब जो है हमने जो संगठन की तरफ से जो लोगों को ला के खोले हैं वो लगभग 15,000 महिलाएं खाता खोले।
1: अच्छा।
0: आज लाखों बहनें खाता खोल के
1: जी
0: अपना अपना विकसित काम कर रहे हैं।
1: क्या बात है। मतलब आकाशवाणी का जो एक चेक था
0: हाँ,
1: वो आज लाखों महिलाओं के खाता खुलवाने का आधार बना।
0: आकाशवाणी ने हमको प्रेरणा किया
1: जी।

0: हैं कि आज हमारे बेटी बहने
1: जी
0: बहुत पिछड़े हुए थे, बेटी बहनों के नाते किसी के ऊपर कोई वो भरोसा नहीं था, आज भरोसामंद हो गया है
1: जी
0: और हम बेटी बहनों के यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक बेटी बहने आगे बढ़े
1: जी
0: बहुत पढ़े लिखे हो और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए और जो नई करने का ऐसा चीजों को भी करे और भविष्य को बनाए रखे, कोई भी शिक्षा हो स्वास्थ्य हो किसी चीज में भी। अब यही चाहते हैं कि और हर बहन पीछे ना जाते आगे बढ़े।
1: जी दीदी, बस्तर में केंद्र सरकार के राज्य सरकार के प्रयासों से एक बड़ी समस्या जो पिछले करीब 6-7 दशकों से थी, माओवाद की समस्या, उससे अब बस्तर मुक्त हुआ है। अब वहाँ पर जो है वो हिंसा की जगह अब विकास हो रहा है बस्तर के इलाके में और एक नया सवेरा हो रहा है बस्तर में। तो ऐसे में जो वहाँ पर लोग हैं अभी भी, बड़े पिछड़े इलाके भी हैं अब तो जानती हैं, उनमें जो लोग हैं जो अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, अपने उन भाइयों बहनों से आप क्या अपील करना चाहेंगी, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: ये तो जैसे कि नक्सलियों का मुक्त तो हुआ है
1: जी,
0: लेकिन इतने सालों से उनके जो मन में रहा
1: जी
0: वो तो तुरंत छूटेगा नहीं।
1: जी
0: दूसरा है कि लोग 20 साल से अपना जगह को छोड़ करके आए हैं,
1: जी
0: जितना कमाया वो छोड़ करके खा लिया आए हैं और उन्होंने कितने उसके मन में रहा होगा कि एक पेड़ भी लगाते हैं तो पेड़ भी अपना घर जैसा होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो अपना घर को छोड़ कर आए तो कैसा 20 साल बिताए होंगे।
1: जी
0: सबके मन में ऐसा हो रहा है कि हमको वापस जाना है। आज सभी जगह के लोग वापस जा रहे हैं
1: जी,
0: और जहाँ पर उनका घर रहा पता नहीं पूरा जंगल हो गया 20 साल में।
1: जी
0: अपना घर को पहचान रहा है कि मेरा घर कहाँ पर रहा।
1: जी
0: हम लोग ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन को हम यही विनती करते हैं कि जितने लोग भी रहे हैं वो वापस जा रहे हैं उनके लिए सबसे प्राथमिकता है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकारें तो कर सकता है।
1: जी
0: हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनके लिए सड़क है, बिजली घर है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और पानी का साधन है, ये 5-6 बिंदु है कि उनके लिए आज के दिन में जरूरत है।
1: जी
0: और उसमें से क्या है, अगर हम आज नहीं करेंगे तो और भी कहीं का बाहरी शक्ति भी आता है
1: जी, उनको बहका सकते
0: बहकाता
1: हैं,
0: है
1: जी
0: बरगलाता है
1: जी,
0: पर इनको ये व्यवस्था होना चाहिए।
1: जी
0: तो ये महत्वपूर्ण 5-6 बिंदु है उनके लिए।
1: जी
0: हमें ये संदेश देना चाहते भाई इसको हमको ठीक करे और उनको पकड़ के साथ में रखे और हमको हिम्मत दे भाई तुम जहाँ भी जाओगे हम आपके साथ में है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने दीदी, बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ चर्चा करके और आपके इस पूरे यात्रा को जान के। आज इतने साधन संपन्न हैं लोग, लेकिन तब भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के बारे में अभी भी जो है वो कई बार सोचता है व्यक्ति। आप उस समय जब कुछ भी साधन नहीं था आपके पास में, उस समय आपने पैदल जो है वो सैकड़ों गांवों की यात्रा की, लाखों महिलाओं को जागरूक किया, वाकई एक महायज्ञ के समान है आपका काम हमारे लिए। तो आपको एक बार पुनः आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत सारी बधाइयाँ पद्मश्री के लिए।
0: मैं भी आपको बधाई देना चाहती हूँ सर, क्योंकि मुझे इतना बड़ा हमारे राज्य का ये स्थान है उसमें इतना बड़ा आकाशवाणी में यहाँ तक लाने के लिए आप लोग ने हमारे लिए बहुत प्रयास किए या लाए और मैं यहाँ आने के बाद ही मेरे से जो त्रुटि हुआ होगा तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। आप यहाँ पर यहाँ तक लाए और हमको याद किए।
1: आपसे कोई त्रुटि नहीं हुआ, आपने क्या है अपनी पूरी बातों को दिल से कहा है और हमारे श्रोताओं ने उसको दिल से ग्रहण भी किया है। तो हम एक बार पुनः आपके बहुत सारे आभारी हैं, हृदय से आपका आभार। तो श्रोताओं, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम, अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री से हाल ही में सम्मानित दंतेवाड़ा की डॉक्टर बुधरी ताती से ली गई विशेष भेंट वार्ता, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की थी। ये आकाश
3: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से भी सुन रहे

रहे हैं। सुबह के 10:30 और 54 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गोंडी लोकगीत। गायक कलाकार हैं कीचोराम और साथी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी, यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान, बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक, तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, अपन मंचो सवाल, अपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
3: गुड़दुम कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आपकी सेवा में प्रसारित किया जा रहा है लोक गीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं किचोराम और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

0: कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप सुन रहे थे क्यूचोराम और साथियों का गाया गोंडी लोकगीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। दिन के 11 बजे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4:00।

पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस आईं जो डेब्यू के समय उतनी खूबसूरत नज़र नहीं आती थी जितनी अब लगती हैं। किसी को अपने सांवले रंग की चिंता होती तो किसी को अपनी कम हाइट के कारण काफ़ी कुछ सुनना पड़ता था, लेकिन उनकी मेहनत, सहनशीलता और लगन के कारण बाद में उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। उन लोगों में अभिनेत्री रानी मुखर्जी का नाम भी शामिल है।

तो श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में हम फिल्म इंडस्ट्री की पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक रानी मुखर्जी की जर्नी के बारे में आपको बताएंगे, जिनकी बहुत सी बातें उनके फैंस को नहीं मालूम है। 21 मार्च 1978 को रानी मुखर्जी का जन्म मुंबई में हुआ। इनके पिता राम मुखर्जी फिल्मालया स्टूडियो के संस्थापक और फिल्म निदेशक थे और उनकी माँ कृष्णा मुखर्जी बंगाली फिल्मों में एक ज़माने में पार्श्व गायिका रह चुकी हैं। यही नहीं, रानी मुखर्जी की कज़िन काजोल एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। रानी के बड़े भाई राजा मुखर्जी फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और इनकी मौसी देवाश्री राय बांग्ला फिल्म

रानी मुखर्जी ने मुंबई के मानकेंजी कपूर हाई स्कूल से पढ़ाई की। ये बात भी कम लोग जानते हैं कि ये एक ओडिसी डांसर हैं। रोशन तनेजा इंस्टीट्यूट में उन्होंने एक्टिंग की तालीम ली। इन्होंने बता दिया कि पहली हार बड़ी नहीं होती, इसके बाद जीतने की आदत बड़ी होती है। रानी की अभिनय क्षमता ने यह बताया कि अगर फिल्में फ्लॉप भी हो जाएं, फिर भी यह लौटकर आएंगी और ब्लैक जैसी संवेदनशील फिल्में ये करेंगी।

0: कब?
1: By the way, तुम्हें क्या करना है?
0: By the way, कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, don't bother me.
0: Really?

अक्सर हमें लगता है कि इतने बड़े फिल्मी बैकग्राउंड होने के कारण फिल्मों में काम आसानी से मिल जाता होगा, लेकिन रानी खुद से काम पाना चाहती थी, इसलिए वो स्टूडियो जाकर फिल्मों में काम के लिए कई

ऑडिशन दिए। रानी मुखर्जी ने सन 1996 में आई एक बंगाली फिल्म बियर फूल से फिल्मों में पदार्पण किया। ये फिल्म रानी के पिता ने बनाई थी, लेकिन अब भी बॉलीवुड में उनके आने का सफर और संघर्ष जारी था। यह सफर कहाँ कहाँ जाकर खत्म हुआ, यह हम आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

रानी मुखर्जी को फिल्मों में पदार्पण करने का अवसर दिया। फिल्म निर्देशक अशोक गायकवाड़ ने अपनी फिल्म राजा की आएगी बारात में ये फिल्म दर्शकों को उतना प्रभावित न कर पाई जितना प्रभावित किया रानी के अभिनय ने, और इसी अभिनय का जादू चला आदित्य चोपड़ा पर।

फिल्म कुछ कुछ होता है जो करण जौहर ने निर्देशित की थी। फिल्म में शाहरुख खान और काजोल का चयन तो हो चुका था, लेकिन अभी भी टीना मल्होत्रा के रोल में एक रोल के लिए एक नई लड़की की तलाश जारी थी। आदित्य चोपड़ा ने करण से रानी मुखर्जी का जिक्र इस रोल के लिए किया और कहा ये इस रोल के लिए ठीक रहेंगी, उसे ट्राई करो, वो एक्टिंग भी अच्छी करती हैं, टैलेंटेड भी हैं। तब रानी की तस्वीर देखकर उसे सांवली और कम हाइट के कारण करण ने इनकार कर दिया और अन्य लोगों के ऑडिशन लिए, पर कोई पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि उस रोल में रानी ही फिट बैठी और आदित्य के कहने पर टीना के रोल के लिए रानी को चुन लिया गया और इस तरह कुछ कुछ होता है फिल्म को मिल गई टीना, या कहें रानी मुखर्जी को मिल गई फिल्म कुछ कुछ होता है।

फिल्म कुछ कुछ होता है की अपार सफलता के बाद तो मानो दर्शकों की और निर्माता निर्देशकों की पसंद बन गई रानी मुखर्जी और रानी मुखर्जी के कदम सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। आमिर खान के साथ गुलाम, शाहरुख खान के साथ चलते चलते वीर ज़ारा, सैफ अली के साथ

खमतुम सलमान के साथ चोरी चोरी चुपके चुपके, अमिताभ बच्चन के साथ ब्लैक और बंटी बबली, ऋतिक के साथ मुझसे दोस्ती करोगी, गोविंदा के साथ जोड़ी बनी हद कर दी आपने, ये सारी फिल्में रानी मुखर्जी को फिल्म इंडस्ट्री की रानी बनाने में अहम रही। रानी मुखर्जी को 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। श्रोताओं, अच्छा और बुरा दौर तो हर किसी के हिस्से में आता है। रानी के फिल्मी करियर को लेकर जब जब सवाल उठे तब तब उन्होंने जोरदार वापसी की। इन्हें तो यह भी कहा जा रहा था कि इनका दौर अब खत्म हुआ, तो रानी ने फिल्म मर्दानी में पुलिस अफसर शिवानी राव के किरदार से सबको चौंका दिया। इसके बाद एक और सुपरहिट फिल्म आई हिचकी, जो दर्शकों को बेहद पसंद आई। रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा को अपना जीवन साथी चुना। उनकी एक बेटी भी है। हम आगे भी रानी मुखर्जी के अभिनय के नए रूपों को देखने की उम्मीद करते हुए ये अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं और इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री रानी मुखर्जी पर। यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: पाटा केंजा में लीजिए सुनिए गोंडी लोकगीत बुधराम पुटाई और साथियों के स्वर में।

0: पाठक इंजा में अभी आप सुन रहे थे गोंडी लोकगीत बुधराम पोटाई और साथियों के स्वर में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 11:55 हुए हैं। आकाशवाणी रायपुर से अगला कार्यक्रम रिले होगा।
1: प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रायपुर के सोनपेर स्थित असंग देव आश्रम में आयोजित महोत्सव में शामिल होंगे और बस्तर का ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज से देव स्नान पूर्णिमा के साथ शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे।

कबीर जयंती पर आज प्रदेश में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के सोनपेरी स्थित असंग देव कबीर आश्रम में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। इसके बाद वे दोपहर को हेलीकॉप्टर से चांपा के लिए रवाना होंगे, जहां वे थाना पारा स्थित देवांगन धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कबीर जयंती पर आज प्रदेश भर में सभी प्रकार के मांस मटन की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में आज से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। 6 जुलाई तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे। कांग्रेस के 10 दिवसीय संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन है। समापन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेशनल मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा शामिल होंगे। गौरतलब है कि 20 जून से शुरू हुए इस शिविर में 41 जिला कांग्रेस अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, अलका लांबा और सचिन राव जैसे कांग्रेस के अन्य नेता शामिल हुए। सरगुजा जिले के रामगढ़ में आज से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। महोत्सव के पहले दिन छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए जाएंगे। बस्तर का ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज से देव स्नान पूर्णिमा के साथ शुरू हो रहा है। इस दौरान श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का वैदिक विधि विधान से महाभिषेक होगा, जिसके बाद आगामी 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। जयस्तंभ चौक स्थित मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय में आज शाम 4 बजे से डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बस्तर पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में नगरनार थाना क्षेत्र के धनपुंजी आरटीओ नाका के पास कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से लगभग 15 लाख रुपए का 31 किलो से अधिक का गांजा बरामद किया गया है। दोनों ही आरोपी हरियाणा के निवासी बताए गए हैं। पूछताछ में उन्होंने गांजा ओडिशा से हरियाणा ले जाने की बात स्वीकार की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे पोलियो की दवा पीने से छूट गए थे, उन्हें आज दूसरे दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर पोलियो की दवा पिला रही हैं। वहीं कल भी

कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सफाई कलाकार दादा दीदी मन के, भाई बहन मन के और संगजौरिया संगवारी मन के, मैं तुम चुतारा करें से जोहार। और सपाए पीला मन के मचो बाटले खूबे खूबे मया और चुमा। तो कलाकार भाई बहन मन, कसन आशास तुम्ही सपाए, आशा करें से नगत नगत आशास बेकाए। असनी नगत नगत रहा कलाकार भाई बहन मन और पीला मन, तुम्ही बोले नगत नगत आशास बेकाए। काय सुंदर हरी कुदिम ने अदाए तो देखा स्कूल मन बोले खुल ली ने। तुम्ही स्कूल जा तो पीला मन स्कूल बोले जाओ मुरिया लास भी ने। तो रोजे दिन स्कूल जा हाँ अच्छा ले पढ़ई लिखाई के करा और खूब मन लगाउन भाती पढ़ा तुम्ही हाँ पीला मन। तो कलाकार भाई बहन मन, मैं काय बोलते रहे देखा एबे बरसा चो समय अमरली ने, बरसा चो समय अमरली और तियार बहार मन बोले मुर हो गए मुरियाली ने। तो असनी देखा कहे के हमचो तियार बहार मन रहे से ने, जेके उत्सव बोले बलू से तियार बहार मन रहे से और कितरो सुंदर आमी है के हरी कुदिम ने मनाऊ से बोले सपाई लोग मिलुन मिसुन भाती बड़े हो कि नानी हो कि पीला जिला सपाई लोग ने। और देखा ये जो नाम चो तियार बहार मनाए ए आमचो ने एकता आंतो काजे बल्ले खूबे बड़े भूमिका निभाए से। कसन बल्ले आमी आमचो तियार बहार मन के गांव पारा चो लोग मिलुन मिसुन भाती बनाऊ से घर परिवार चो लोग कुटुंब चो लोग ने कितरो सुंदर। असनी कलाकार भाई बहन मन कला मन बले आसे ने, कला बल्लो ने फिर हुनर बल तो बीती। और जसन की तियार बहार बीती गोठ मन में बल ले तो असनी लोक उत्सव मन बले हुआ। और एथाने देखा जो नाम चो उत्सव मनाए एथाने आम चो जो पारंपरिक लोकगीत मन रहे से नृत्य बल्लो ने नाचा और हस्तशिल्प मन जेके कलाकार भाई बहन मन बना सो आप लोग हाथ ले उनका ही बल्ले हूक लाई सके कोनी बल्ले कला हूक लाई सके जेके आम चो कलाकार भाई बहन मन बना सोत ने एक एक गोटोक मंच प्रदान करुआ बल्लो ने गोटोक ठान मिरुआ जहाँ कलाकार भाई बहन मन आप लोकगीत मन के आप लोग जो आप लोग बाट चो जो पारंपरिक नाचा मनाए हुन मन के हस्तशिल्प बल्लो ने जो हाथ ले बना तो बीती हुनर मन रहे से नहीं कला मन हुन मन चो प्रदर्शन कर रुक सकसो। प्रदर्शन बल्लो ने फिर उनता ने उन बाती आप लोग जो कला मनाए उन मन के संगउक सकसोत और दखौक लाए बोले सकसोत करुण दखौक सकतो बीती के जे चोले जो नाए लोग मन जाऊन बाती दखुक लाए सकोत ने। और ऐसा निकाय आए ये जो आम चो आगे जुगले पारंपरिक रूप ले जो चलते है तो कला मना से बल्लो ने हुनर मन उन मन के गोटोक पहचान बल मीरे से चीना बल मीरे से ने लोग नाव के जान सोत चीता सोत। और एमन का संरक्षण बल होते जाए से संरक्षण बल्लो ने हुन नगत रहे से आगे काजी बल्ले बाचू रहे से बल्लो ने हो से बाचू रतोर बाचू रहे से। और ये जो न आमचो जो आगे जुग ले चलते है तो जो कला मना से परंपरा मना से उनके लोग असन लोक उत्सव मन ने दग दे चिता दे और मन कर दे जान दे समझ दे बोले। और कई लोग ऐसा ना सोच जे मन के सीख तोर बोले मन होए दे ने सीख तोर बोले मन होए दे और उन मन सीखुक लाए बल चाह दे। तो असन जो लोग सीखुक लाए चाहे सोच बल्लो ने उन मन के सीखा तोर बोले आए आमी सीखा वहाँ गोटोक लोग के तो उनको नहीं दूसर के सिखाए दे। और असनी बोले कलाकार भाई बहन मन

0: गोटो गोटा से कि आमी ज्ञान के जितरो बाटवा हुन हुतरो बाड़े दे। तो अई गोटाए कलाकार भाई बहन मन जो आमचो लोक उत्सव मन रहे से उन ताने आमचो कला मन के जाऊन भांति प्रदर्शन करतो रहे, आम के बिल्कुल पाटकुति नहीं रहतो रहे, आम के लाज बल्ले नहीं होतो रहे, आमी कहीं कला कहीं हुनर के जानू बल्लो ने पर काय का लाज होतो रहता। तो ये तो काय सुंदर नगद गोठ मन रहे अदाय और बले नगद जाला बीती गोठ मना से ए गोठ मन के बले सुनूता ऊंचो पाचे के फेरा में गोठियावा।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
7: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
8: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
7: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
8: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
7: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
8: क्यों?
7: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हाँ कलाकार भाई बहन मन, एबे आमी सुनलु एकाय सुंदर ज्ञान ध्यान देतो बीती झाला मन के अदा समय होय से भेटवार्ता बाटे जातोर, तो असनी आज आमी गोड बात सुनवा दादाश्री शिवराम नागमंचो एमनात लोक गायक और एमन संगे गोड बात कर सोत बलबीर सिंह कच्छ आले एमन काय काय गोट मन के गोठियाय सोत काय काय सांग सोत एमन चो गोड बात मन के सुनो।
4: रेडियो सुन तो भाई बहन मन, कला और कलाकार ने आज आम तने फिर गोटक गाओ कलाकार भाई अमरला से असन तो अपन मन एमन चो गीत के रेडियो ने बोले सुनते रहसास। और एमन चो नाव है श्री शिवराम नाग, तो शिव सब ले आगे। और तुम चो गाँव कौन गाँव है से जाते?
5: हम जो गाँव नानगोर है से भाई।
4: अच्छा हाँ। नानगोर
5: नानगोर
4: हाँ हाँ तो देखा तुम्हें तो गाओ कलाकार आस बोलोगे, ये जोन गाओ तो जोन कला के आए बोलोगे, बोले ने कितलो असन उमर रली आरु सिखलास गाओ तो बीती कला नीलास आरु कसन ने ये जोन बाट ने यो खोली बोलोगे?
5: माए बोले हमी बचपना ले पहले हम खेलुक बुलुक जाते रहो, खेल तो बोल तो थान ले बोलो भी हमी गीत सीखते बीती मौके वाली से।
4: अच्छा।
5: और उन बाद ने मैं असने गीत सीखते सीखते पाचे गोटो गीत रचना गोट लिख ले बोलो भी, पहले गोटो इस पर काम करते हैं छिड़काव मुंशी काम होता लिख ले गोटो गीत असनी और लिखुन भाती लेबर मन के सुना ले।
4: अच्छा।
5: सुना तो क्या अच्छा गीत है ना, उन भाती बल्ला बोल तक पाँच बार मैं हम जो बलबीर साहब कच्छ रहला कि नहीं उदला है बास्ता नार जाऊ रहला और तीन मैं पचार ले पचार तो घूम बोल रहा कि ऐसा हो न है पहले स्वर परीक्षण करा कर बोल रहा है तो उन हिसाब ने मैं थाने को आवेदन दी ले आवेदन दे तो फिर हो ना हो फिर सेलेक्ट होली बोलो। हाँ
4: तो जसन की तुम बोलास मैं पहल हार गोटो गीत जो लिख ले और उनके गाँव ले बोल का उन गीत भी सुरता आस है
5: इया इया दादा दीदी जावा गोपत सर जावा गोपत सर हिड़दे जावा आया पगना सोरे सोर जटाल मन बो सुन दिला भोला गंगा धर।
4: हाँ,
5: मतलब शुरुआत नहीं असनी गोटो गीत बोलू गाउलू बोलू।
4: अच्छा।
5: मतलब लिख ले मैं। हाँ
4: हाँ हाँ तो बल्ले ने उतलन पाछे फिर तुझे गीत गा तो भी थी
5: मोर होली बोलो भी। हाँ। हालांकि भोलेनाथ जो ही भजन में लिख ले।
4: हाँ हाँ तो दख शिवराम असना है बल्ले ने कहीं हो गीत कला बल्ले ने गाओ तो काजे बल्ले ने सिकुक तो पड़े से मेहनत
5: पड़े
4: से लागे से है कि नहीं? हाँ
5: हाँ ना सिख लो पर काय
4: हाँ
5: करी
4: बल्ले ने भी कितलो बोरक कसन होली तुझे गीत गाओ तो
5: गीत गाओ तो बल्ले होनी 95-96 ने हमी स्वर परीक्षण ने पास हो।

0: मुकाबल कर तो लो खत्म हो तो के
1: हाँ
0: मुकाबल खिंडार बस लाग ली उन हिसाब ने खेली
1: बल्ले कम होली बोले
0: काम
1: हो।
0: होली बोलू बे।
1: हाँ हाँ हाँ तो कम होले बोले इतलो अच्छा तो गीत आए बोलू बे, जैसन कि गांव ने कहीं पारंपरिक गीत मन वैसे बिया शादी ये सब
0: हाँ
1: गीत आए, तुम तो गाओ
0: हाँ
1: ची आस
0: ओके हाँ
1: है कि नहीं,
0: हाँ
1: तो आल कोनी असन कहीं बिया गीत नाल कोनी रुसम बीत गीत कर गाऊन सुनाऊ हो।
0: हाँ तो मैं एक गोटो खेल गीत गाऊं दे दे
1: हाँ
0: ठे चारे चा गोटी बेचा बड़े दानो सो तू मिले कि हाँ मिले का भाई ले मनो सो।

0: ବଦଲି ଖ ସା ପାନ ମାଗି ଦେବୁ ଏତେ ରସ ରସ ବଦଲି ଖ ସା ପାନ ମାଗି ଦେବୁ ଅତେ ଗନ୍ଧା ପନ ସ ଗନ୍ଧା ପନ ସ ଏଦେ ବୋଲୁନ ଏଦେ ବୋଲୁନ ଠାକୁନ ଦେଲା ସ
1: हाँ बोले ने ये गोटो
0: ये गोट
1: टोपी।
0: खेल गीत है बोलू बे।
1: हाँ हाँ बोले ने खेल गीत बोले तो कितली किस्म छो ऐसे आई ने
0: खेल गीत बोलने
1: बोले
0: कई
1: ने
0: प्रकार छो ऐसे
1: हाँ हाँ बोले खेलो निकर रू बोले तो उतले किसे किस्म छो गीत मन
0: गीत
1: निकले
0: मन
1: से
0: निकरे से
1: गाओ तो रहे से
0: गाओ
1: लेखा
0: तो
1: लेखी
0: रहे से।
1: मसंगे।
0: हाँ
1: मंतर सीयू दक तुई बोले ने आजकल छो नवा नवा हिसाब ने कई लोग बोले ने गीत मन गाउन कैसेट मन निकरा ला से काय काय निकरा तो
0: हाँ
1: काय तुई छो बोला सन काम होली से
0: निकरा लुस बोलू गोट दुई ठान कैसेट निकरा लुस बोलू
1: असन।
0: गोटक गोट पिक्चर बोल निकरा गोटक नहीं
1: हाँ
0: गोटक चार ठान माँ पिक्चर बनल रोली से
1: अच्छा
0: हम जो
1: हाँ हाँ
0: हाँ
1: बोले न कसन
0: फर्स्ट
1: हल भी नहीं कि भतरी
0: हल भी
1: में।
0: निका हल भी भतरी मिक्स बोलू पे
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: गोट कुकड़ा चोर बनालू
1: हाँ हाँ
0: गोट माई जुआरी बनालू गोट मैया छो पुजारी बनालू से
1: हाँ हाँ
0: और मैंने चार ठान पिक्चर है
1: हाँ हाँ
0: और गुरु गए
1: हाँ हाँ हाँ
0: चार टाइम
1: बोले
0: पिक्चर बना लो
1: बना
0: से
1: लो सब।
0: हाँ
1: हाँ हाँ हाँ
0: आ गोट
1: तो
0: बाहले बोया बना लो से
1: अच्छा बाय ले बोया।
0: बाहो
1: हाँ हाँ
0: हाँ
1: बोले ये बोल हल बिंची है
0: अरे
1: बोले।
0: भी ये भत्रे मतलब मिक्स है हम
1: हाँ हाँ
0: जो
1: दोनों।
0: क्षेत्री बोली हिसाब नो
1: हाँ हाँ हाँ
0: बना लो राज
1: हाँ
0: बोलू
1: हाँ हाँ तो
0: हाँ
1: बोलन का है कि ये तो पिक्चर आए फिल्म आए बोलू बे मानतर ये मजे मजे गत का है कि कहीं गीत बोले आसे होती है कि नहीं।
0: हाँ ये गीत मन बोले उनता ने
1: हाँ
0: गावलो राज बोलो मंज
1: अच्छा
0: मंजगत
1: जसन की चार ठान तुई जोन फिल्म बीती बोल लीस तो आल कोनी ताना बोले गोटो फिल्मी ताना बोले आल गीत के गाउन सुनाऊ दक।
0: तोके देखी बाया हेली रे नोनी तोके देखी बाया हेली राति बेरा स्वप्नी हेली दिन बेरा पासरी गली राति बेरा स्वप्नी हेली दिन बेरा पासरी गली तोके देखी बाया हेली रे नोनी तोके देखी बाया हेली ये
1: हाँ
0: गोटो मतलब फिल्म था ने
1: हाँ
0: बना लो रे बोलू बे गोटो गाना
1: अच्छा
0: बोलू
1: हाँ
0: पे
1: हाँ ये कौन फिल्म जो है ना चार ठान नाव
0: ये
1: धर रही तो।
0: कुकड़ा चोर जो है
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ हाँ
0: हाँ
1: कुकड़ा चोर फिल्म
0: कुकड़ा
1: ने।
0: चोर जो है
1: अच्छा ये कुकड़ा चोर फिल्म ने तुम बना लास
0: हाँ
1: बोले कुकड़ा चोर गोटे शीर्षक असन आए
0: हाँ
1: मानते रहता बोले ने कहीं शिक्षा प्रद बीती रही कहीं कसन बीती रही ना का
0: ये
1: ऐसा शानदार।
0: तो शिक्षा प्रद तो रही रे
1: हाँ
0: बाकी हंसी मजाक बोले थान रे कॉमेडियन
1: अच्छा
0: भरपूर रहे बोलो बे
1: अच्छा
0: हाँ
1: बोले ना काय शिक्षा बीती है तसांगलास तुम ये फिल्म।
0: शिक्षा बोले दक आजकल जमाना कई प्रकार चोर चिराड़ बोल रहे सो
1: हाँ
0: है कि नहीं
1: हाँ
0: काची कुकड़ा बोल चोर तो काची कुकड़ा गार के बोल चोर तो नोल
1: हाँ
0: काची नकी भंडवा के बोल चोर तो
1: हाँ
0: आसान आसान मतवार घतवार मन आदि मन आजी जमाना नहीं हम जो बस्तर ने बोले आसोत
1: हाँ
0: तो काची घर नकी भंडवार रह दे बाटे मने दुआरे
1: हाँ
0: तो मतवार आदमी दक ना दक पैसा नोल मतवार आदमी तो
1: हाँ
0: उनका आया नकी भंडवा के बोल धर देर दूसरा करने उन गहा न मारून अली बन ये मतलब बोलते हुआ बोल भाती नकी
1: हाँ
0: भंडवा के देहूं दे सोत गहा न मार
1: हाँ
0: उसने कुकड़ा चमड़ा के बोल चोर उन भाती नहीं सोत
1: हाँ हाँ
0: और हकीकत बात आए कि
1: हाँ
0: आमचे घरे खूब यहाँ से हाँसो
1: हाँ
0: तू विश्वास नहीं करी एक दिन ने दूध उठाना था खातला से
1: अच्छा चोरन बात नहीं।
0: जोरन बात अब काके बोलू आज झगड़ा करू आज काके काहे करू आज मग समय हालांकि छिपारा चीज चोर आज कोई दूसरा लक्षण हो
1: हाँ
0: आ चोर मन के बल जानू
1: हाँ हाँ
0: मात्र काके रिपोर्ट करू आज का काहे करू आज
1: हाँ हाँ
0: आसान तो ऐसे
1: हाँ
0: आ
1: बोले बोले न असनी ये जोन कुकड़ा चोर फिल्म जोन बना
0: फिल्म
1: लास
0: बोले आए नहीं
1: बोले कहीं कुकड़ा के चोरते रहे होती है।
0: चोरते रहे
1: हाँ
0: हो
1: तो
0: मने चोरला से कही लोग कुकड़ा
1: हाँ
0: कुकड़ा चमड़ा के बोल चोर सो हाथा के
1: हाँ
0: बोल चोर सो
1: हाँ
0: न कि मोड़ा के बोल चोर बहती ने बात बिकुन बहती कहा सो
1: हाँ
0: आज इस जमाना असन लोग बोले आसत मतवार
1: हाँ
0: गतवार लोग
1: हाँ बोले ने ये खिने कहीं शिक्षा प्रद असन होली
0: और
1: बोले
0: शिक्षा
1: बेको।
0: प्रद हिसाब ने आसे बोलू बे हम ही चोर लो मने हम तो गोटो नाटक बना लो बोलू
1: हाँ
0: बे
1: हाँ
0: तो असन नहीं हो तो बोलते हिसाब ने हम ही गोटो संदेश छाड़ू से
1: हाँ हाँ
0: पब्लिक किसी का हिसाब ने
1: हाँ
0: बना
1: हाँ
0: दे बीते होली बोलू
1: हाँ हाँ तो शिवराम दक तुई तु चु कुकड़ा चोर फिल्म चु गोट के सांगले सितला। अच्छा
0: हाँ
1: मानतर तुई तो कहीं चैत पर्व गीत वगैरह बोल जानेस गाओ के लाए।

0: माथा कांदु अच्छी जुगो जुगो दरे भोनी कांदे छो मसो घरारा घराणी कांदे तीनी दिनो पुनी कारे ग्रभो वासो एक ओता कोहिली सतरे कुमार कुकुड़ा के नहीं दत्त जगर महोच काटी खुवाईले तिरी के नहीं लाज
1: तो दक शिवराम ये जो चैत कर गीत आए बोलूबे ये वोट जोड़ भी थी कि आया कि नहीं
0: ये जोड़ लो तोड़ लो भी थी।

0: अति मान लो बायले हार ली तो बायले के धोरम बच जातोर
1: हाँ।
0: मान लो मोनो का हार लो तो मोनो के धोरम बती बायले ने तोर
1: हाँ।
0: असन होली से हम जो बस्तर ने
1: हाँ। हाँ। बोले असन आगे
0: असन मतलब आगे प्रथा रहे बोलू
1: हाँ। हाँ। अच्छा तो तु के भी चैत पर्व गीत ने कोनी बायले संघारा जीता हो रही था गाँव
0: नहीं नहीं मैं तो गिन लोक गीत भी था चैत पर अतनी आमी कलाकार हिसाब ने बना दे उस बोलू
1: अच्छा बोले खिंडी खिंडी गाओ
0: खिंडी खिंडी गाओ
1: तो हारा जीतन के भी
0: हारा जीता नहीं ये काम ने भिड़ लोर नहीं आए
1: हाँ सन हाँ हाँ मंत्र असन है शिवराम धक बोले आजकल बोले आमचो जोन पुरका पार्टी जोन गीत मनाए बोले लोग मन भूलकते जाए सो रीति नीति के बोले ने नहीं समझे
0: नहीं समझे सो
1: तो बोले ने तू ही तो गोटो कलाकार आस
0: आर
1: किनिक पढ़े लिखे बोले आ सारू बोले शिक्षा परत कई फिल्म बोले बना लिस तो ये कि बचत काज बोले तू चो बाट ले काय असन
0: बोले हम चो दक ऐसा नहीं कि हम चो लोकगीत हम चो बस्तर चो कल्चर बोलू हम चो लगे संस्कृति रहो है कि नहीं ये सब रियली आल तो पहले गोटो इतिहास बने दे
1: हाँ।
0: आगे जमाना ने बोले चलते यही थे बोलू
1: हाँ हाँ
0: और लोकगीत के ही हम ही छाड़ून देवा भूलकुन जावा रचना गीत मन गावा बोले हम चो लोकगीत तो लुप्त हो जाए थे और ये तो भविष्य ने उन रहे ने इतिहास खत्म हो जाए थे
1: तो शिवराम दक तु गाँव कलाकार सर तु छो मंडली बोले पार्टी बोले असन आसे तो अब तक तु कहाँ कहाँ असन बोले गीत गाओ लिसी बोले नृत्य कर लिसी कसन कसन जगह
0: नृत्य कर ले बोले बोले ही आकाशवाणी दूरदर्शन यही बाट बाट तो हम यू से बोलू हाक दिले
1: अच्छा
0: ये बाट बोलू से
1: हाँ और कहीं
0: बाहर
1: ही
0: बाहर बोले बाहर उतलो हम गेलो नहीं है हम के मौका कहाँ ले मिले बस्तर चु लोग के ये बाहर मौका पोटा तो रहे था ने
1: अच्छा हाँ नहीं असन है कि नहीं खूनर अच्छा रोली बोलने ने कि नहीं अच्छा गाँव लेने कई लोग बस्तर चु बोले बाहर ही जाऊन बाती
0: जाए सोत कर सोत मानतर हम के एक दो यार से नहीं जयपुर दे उड़ीसा जाऊ रोल बोलू वे
1: हाँ
0: आओ बाकी तो बाहर रायपुर एक हार गेलो रहा से
1: अच्छा हाँ
0: और उनसे बात नहीं गेलोर नहीं है बाहर
1: तो आम चो बस्तर नहीं चाहिए बोलो कहाँ कहाँ बस्तर चो बोलते का अभी तो खूब बड़े होली से सात थान जिला होली से आए कि नहीं तो कौन कौन असन थान ने जरूर आम चो बस्तर संभाग ने
0: बस्तर संभाग ने बोले मैं कला जत्था के माध्यम ने मैं पूरा ब्लॉक बोल ले से
1: अच्छा
0: मैं सिर्फ ओरछा ने आए गए मैं
1: हाँ
0: हर ब्लॉक ने मैं बोल लो रासे मचो
1: अच्छा
0: हाँ ओरछा भरना आए गए
1: अच्छा
0: नारायणपुर वगैरह विश्रामपुरी कोंडा गाँव ये बड़ बड़ पूरा बोल लो रास बकावड़ वगैरह
1: हाँ बोले उतना जाऊन तुम काय करते रहला सुन
0: हाँ भी जाऊँ बोले शिक्षा पूरा ध्वनि स्वास्थ्य जो विषय ने
1: हाँ
0: ज्यादा करूँ भाती
1: हाँ
0: कला जताज माध्यम ने दखा थोड़ू
1: अच्छा
0: हाँ
1: काय गीत गाओ की नाटक करा
0: नाटक
1: अच्छा।
0: नाटक गीत जोन
1: हाँ
0: चलते रहे बोलो
1: अच्छा बोले तो हुन कला जत्था बेरा चो जसन की स्वास्थ्य परत काय काय बोल सी जिना तो आल कहीं गीत सुरता जल किन कसन गाउन बस सुनाऊ दक
0: आसान तो खूबे गीत मन है
1: हाँ नहीं अल कौन अच्छा सुरता आसे उनकी सुनाऊ दस
0: खिड़ी माँ गाँव दे
1: आले आले
0: जच की चो बेरा रा सावधानी जच की चो बेरा रा सावधानी साप सुतरा जगा रहो रहो साप पानी जच की चो बेरा रा सावधानी जच की चो बेरा रा सावधानी मने ये गर्भवती व्यवस्था जो ईसा गीता है बोलू वे
1: हाँ
0: जच की प्रेट ने
1: हाँ बोले कोनी मेहरार पेट हारिन रले काय काय दखा रखा करत रहा खान पान कसन करत रहा साफ सफाई कसन रत रहा है ये गोट के गीत ने बोलते
0: गीत ने बोले हम गाँव बाती लोग के समझाते रहे बोलू
1: अच्छा
0: बहुत से गीत बोले आसे मानते रहो गीत कहाँ ले रटुन रही हुए
1: हाँ तो आए छे बोले ने असन करुन तुम्हें प्रचार प्रसार
0: प्रचार प्रसार बोले करते रहू
1: अच्छा हाँ हाँ तो बोले ने असन की शिवराम तू चलो गए कितलो असन गीत मन तु जुआ करुन संगाल से जानना आसे कहीं गीत
0: गीत मन तो खूब बेहस गीत
1: असन लिखुन बस संगाल
0: मात्र लिखुन संगाल मात्र भूल कुन जाई हुए
1: असन
0: हर गीत गाओ बोले मैं गीत गाओ जब तक दखे नहीं तू मात्र रचना करते पर मैं लिखे दे रचना लिखे मैं हर गीत अब जसन भजन बोले आए माता भजन आए भोलेनाथ चो भजन आए दंतेश्वरी भजन आए और तू चो स्वास्थ्य संदेश चो विषय बोले बहुत गीत लिख ले इसमें
1: अच्छा
0: और ये पारंपरिक लोक गीत बोले खूब लिख ले
1: अच्छा।
0: मांत्र का है मैं भूल कुआ जब तक धके नहीं तो मके
1: गाओ नहीं हो
0: गाई नहीं हुए लिख तो मेरा लिखुन दे हुए रचना
1: अच्छा जसन की ये जो गाना गाओ तो काज बोलू बे जसन की तुम बाजा बोलू ने काय काय बाजा तू चु गीत ने बजा हुआ उसने
0: हम जो बाजा बोले हम लोक गीत ने तो बाजा ढोल बजे से निशान बाजे से

0: बूढ़ी बाजे से,
1: अच्छा
0: मोहरी बाजे से।
1: हाँ
0: हाँ
1: अच्छा
0: ये हम ये मतलब असली पारंपरिक
1: हाँ
0: मतलब वाद्य यंत्र है बोले।
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ बोले इतलो चीज तो चु गाना ने
0: आसे
1: आ से
0: बोले, और
1: बोले।
0: ढोलक तो आसे चे आसे बोले।
1: हाँ उन
0: हाँ
1: तो सब लोग बजाए सोचे।
0: बजाए सोचिए।
1: हाँ तो दक शिवराम कोनी बिया की जानिस ना गाँव के
0: हाँ भी आए बोले जाने।
1: जानिस हालखिन एक सुनाऊ दिले ने नगत रथ।
0: हाँ ठीक है नहीं। आमोनी धरिला सिंदूर भारी, तेल चे गीला बुबारो लाड़ी, तेल चे गीला बुबारो लाड़ी, लाड़े नी लाड़े रे बुआ बोड़ाए रिलीज, हाड़े हरदी लगाए देश, माते महुड़ो चे गाई देश, मानीले गुनीले पेटर बुआ, नो मानीले गोड़ल धूर, मानी जाओ बे मोर तो काटोले।
1: हाँ
0: ये
1: अच्छा बोले कौन
0: बोले
1: सा मियाँ चु गीता है ना।
0: ये तेल जगत बेरा चुआ है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तेल चेगा तो बेरा चु गीता है
0: हाँ
1: बोले उन्हें। हाँ। तो असन भी आ गई तो ओगरा बोल तुझ लोग तो आशीष ही गाते चले
0: आ
1: गए।
0: से हाँ ज्यादा करूँ क्या भी आ गई कि लेके मन गा हुआ।
1: हाँ नहीं उन तो आए थी
0: हाँ
1: मात्र खेले लेखा मन के बल सीख रहे कहाँ है गाँव तो का
0: नहीं
1: जे।
0: उन तो आए क्या बोले, पर अक्सर का है
1: हाँ
0: लेकिन मन बियाज गीत गावत
1: हाँ
0: बीती हुआ है बोले।
1: हाँ उन तो है कोनिस्तान भी अगर।
0: कोटनी हो काय हो।
1: हाँ। तो दक्ष शिवराम तो इतलो अच्छा बोले ने कहा कि कलाकार आस कौन कौन बढ़ जाऊन बोले गाओलिस और शिक्षा प्रद गीत मन बोले गाऊआ सा तुझ लगे आसे बोलो बे। तो
0: हाँ
1: ये बे बोलो बे तुझ काय विचार आसना ये गीत गाओ तो हिसाब ने कहीं एक बचान संगा तो हिसाब ने काय मन ने सोच ली सी जाले।
0: हमी तो हम जो समय रोद था हम तो बचान संगा उन्दे जीबे,
1: हाँ
0: हम जितलो जानू उतलो बोलूबे।
1: हाँ
0: तो ये तो पीढ़ी के बोलूबे हम जो यही प्रार्थना है कि हनुमान भले हम जो लोकगीत के बचावता और संगा होता,
1: हाँ
0: तेबे आगे भले इतिहास बनुन भद रह दे, नहीं
1: हाँ
0: तो फिर हम जो बस्तर जो लोकगीत ही लुप्त हो लिया ले, फिर काय मतलब दिली हिंदी गाना गावा रचना गीत गावा,
1: हाँ
0: कोई मतलब दे नहीं।
1: उन तो आए।
0: इतिहास रहता और हमके जरूरी
1: हाँ
0: है।
1: हाँ बोले नाम चो समाज ने
0: समाज
1: नाम चो
0: ने
1: गांव ने
0: गांव
1: जोन
0: ने
1: बोले पूजा पाठ देव
0: वाट
1: धामी कहीं
0: धामी
1: रसम बनाओ से।
0: नाना
1: हाँ
0: प्रकार चले से,
1: तो ये सब
0: तो
1: चीज के बचा तोर बोले
0: बचान
1: गांव चे ही लोग चुका
0: गांव
1: है।
0: ची लोग जो है,
1: हाँ
0: और नौ युवा पीढ़ी बोलूबे जौन बल
1: हाँ
0: कलाकार बंधु भाई उभरते है देव ना लोग बचान बचा का तो कोशिश कर तो
1: हाँ
0: रहे।
1: तो वाले शिवराम तुझ संग इतलो अच्छा गोड बात होली मंत्र आलना जाते
0: हाँ
1: जाते गोटो काय रसिया गीत सुनाऊ दे सुच मन ने।
0: हाँ ले जा पापा ले जा के वो रा, ले जा के वो रा रे दोंदो, ले जा के वो रा घोटिया मंडी जा दे दोंदो पैसा दे बूरा, ले जा रे वो है पापा पैसा दे बूरा, हम आऊ माले रे रानी बिरी सपाती, बिरी सपाते रे दोंदो बिरी सपाते, साले सुवा मया होते उड़ान नीते, ले जा रे ओ पापा उड़ान नीते।
1: तो
0: ये
1: शिवराम
0: बोलूँ
1: दक तो इतलो अच्छा है बोले तू चो जोन कला बोले गीत बाटे कसने वो के लिए सब गोट के सांग लिस गीत बोल गाउन सुना लिस फिर के भी इसने भेंट घाटों आले जुगार राम
0: जी
1: राम।
0: जोहार महापुर।
2: हाँ तो कलाकार भाई बहन मन एबे आमी सुन लो भेंट वार्ता कार्यक्रम और एथानी गोट बात करते रहो दादा श्री शिवराम नाग और एमन संगे चुन गोठियात रहो थुनमन आत बलबीर सिंह कच्छ एमन संग चो गोट बात मन के तो सुन लू ने कितरो सुंदर गोठ मन के सांग लाए एमन मंतर अदाय और बले सुंदर झाला मना से हनुमन के सुनुता उन चौपाचे के फेरा मी गोठियावा।
3: बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाएं रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे और

0: हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौपहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मन चो सवाल, आपन मन चो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: तो ये नगद झाला मन के तो सुन लो कलाकार भाई बहन मन। तो मैं काय बोलते रहे जैसन कि कार्यक्रम चो मूर बेरा ची मैं गोठिया ले कि आम चो जोन कला मनाए, आम चो जोन हुनर मनाए, उन मन खूब जरूरी रहे से। उन मन के आम के काय बचन भति संगा तो राय कसन बल ले आम के पूरे उकलाय लागे दे। आम चो कला और हुनर मन के बचा तो काजे ने तेबे तो पूरे जाऊन बाती आम चो जोन ए तो पीढ़ियात हुन मन जान दे हुन कला और हुनर के ने एबे हम ही बचाऊ रवा तेबे तो आगे जाऊन बाती उन पाचू रल्लो ने काम है दे और उनके जान दे बले आम चो ए तो पीढ़ी और पीला जिला मन ने और सीख दे बले। तो देखा आम के खुद ये लोग के मूर कर तो रहा ये तीज चो आम के टाकू नहीं रह तो रहा है कि कोनी कर दे कोनी ए दे कोनी बल दे बलून बाती आम के ची एक कोशिश के करुक लाए पड़े थे जो नाम चो परंपरा मन आए आगे जुगले ये जाए से उन मन के आम चो कला मन के हुनर मन के सबके बचन भाती संगा तो रहा है। ये आम चो पहल जिम्मेदारी है कलाकार भाई बहन मन। देखा घड़ी बाटे देख लो ने जा तो समया हो से तो मैं विदा धरे दे असनी फिर के भाई तुम चो संगे भेंट हो लाए दे। कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सपाए कलाकार दादा दीदी मन के भाई बहन मन के और घर जौर संगजौरिया संगवारी मन के जातो पूरे मैं तारा करे से जोहार।

घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सपाए आया मन, दीदी मन, बहिन मन और संगजौरिया संगवारी मन के मैं तारा करें से जुहार। तुम अचो सपाए आया मन, दीदी मन, बहिन मन, तुम्हें सपाए कसन आसास? नंगत नंगत आसास बेकाय, असनी नंगत नंगत रहा अच्छा लेकाय सुंदर। हरी कुदिम ने रहा बहिन मन, और तुम्हें सपाए स्वस्थ रहा अच्छा रहा। तुम्हें सपाए नंगत आसास बल्लो ने मके बल्ले नंगत और हरिक लागे दे। और देखा बहिन मन, तुमचो संगे तो मैं गोड़ बात हो लेने, मांतर पीला मन संगे बल गोड़ बात हो उकलाए लागे दे। कसन बल्लो ने पीला मन फिर रीसा हुआ, और पीलाच मन बल दे फिर तारा दीदी हमके भूल कैसे की कसन। तो मचो सुंदरा सुंदरी मन, तुम्हें सब पाए पीला मन के मचो बाटले खुब्बे खुब्बे मया और चुमा। तुमचो तारा दीदी तुम्हें सब पाए के कसन भूल कुकलाए सके हाय सांगा, तुमके केबे नहीं भूल के हाय। तो तुम्हें सब पाए पीला मन के बले मचो बाटले मया और चुमा तो मैं दी लेने, तुम्हें सब पाए नानी बड़ी पीला मन के। और दका एबे छो समिया ने स्कूल खुल ली ने, और तुम्हें सपाए स्कूल जा तो पीला मन स्कूल बले जाए सा हसबे। रोजे दिन आई स्कूल जा हाँ अच्छा ले मन लगाउन भाती पढ़ई लिखई के करा, और आप लो पाए ने ठिया हुआ, आप लो पाए ने ठिया हुआ बड़े मनुक बना। आप लो नाव के आप लो आया बाबा चुनाव के घर परिवार चुनाव के संगे संगे गाँव पारा चुनाव के बले तुम्हें ऊपरे उठावा हाँ नाव कमावा चीना बनावा। और पीला मन ये गोट के तो मैं तुमके बल ले मानथर और बल गोटो काय सुंदर गोटा से उन गोट ए आए कि तुम्हें पीला मन नहीं आप लो आया बाबा के मुर्रे नहीं बिटावा, आप लो आया बाबा घर परिवार चो लोग के बिटा तो नवाए। उन मन काय बल सोत काय सांग सोत काय समझा सोत उन मन चो बल तो गोट मन के ध्यान दे उन भाती मन दे उन भाती सुन तो रहा है एकदम ध्यान ले। और जोन घर परिवार चो लोग आत गाँव पारा चो लोग आत सियान सजनात नानी बढ़ियात हम सपाए संगे आम के मान दे उन बाती मया ले गोठिया तो राय। पीला मन आम के सपाए संगे मया ने रतो राय मान दे उन भाती मया ने गोठिया तो राय। और हमी सपाए मनुक मन के हमी सपाए लोग मन के नगत मनुक बन भाती रतो राय। देखा ये तो काय सुंदर गोठ मन मैं सांगले पीला मन तुमके, तुम चो तारा दीदी तुमके काय बल्ली सुरता संगौरा हाँ नी भूल का देखा। तो बहिन मन मैं काय बोलते रहें देखा एबे तियार बाहर मन मूर होए देबे ने सपाए तो असन बेरा काय आए आमी आप लोग घर मन ने जो नाम चो आगे जुगले चलते ऐसे खाजा चरबन मन खातो जीनिस मन के बनावाबे ने बोबो लाडू होली और चीला बल्लो ने कितरो सुंदर सुंदर खातो आम चो जीनिस मन आसे ने जो आगे जुगले चलते ऐसे जे कि आमी आप लहान घर मन ने बनाऊ से। और उन मन समय समय आचो बोले गोट आए कि काय बेरा आमी कौन खातो जीनिस के बनाऊ से ने जसन के काई बोले तियार बहार रहो आम चो घर मन ने बोबो तो बने से ची ने दार बोबो बने से ची और दार बोबो नी बना लो बिना फिर तियार बहार महाबले नी लागे ने काई बोले तियार बहार हो आमी दार बोबो बनाऊ ची आओ असनी का एक आम चो जोन खातो जीनिस मना से जेके व्यंजन बोल सोत उन बीती मन के आमी बनाऊ से ने जसन दियारी होली दियारी बेरा खिचड़ी बनाऊ से गाय मन के खुआऊ से गाय बैला खुआऊ से ने और आमी बोले खाऊ से असनी देखा मेला मंडई होली उन ताने पर काय सुंदर चापा लाडू मीरे से और गुरबोबो होली चीला होली बोलो ने सपाए आम चो जोन आगे जुगले चलतो ये तो मिठाई खाजा मिठाई मना से और खातो जीनिस मना से बढ़िया बढ़िया उन बीती मन मीरे से ने। और एबे चो समय ऐसा ना है बहिन मन कि मोबाइल फोन बल तो बीती तीज बले आसे एबे चो समय आने और उन ताने आमी काई बले नी जानतो तीज के जाऊन बाती दखुक लाई सकू तो असनी खातो बीती जीनिस मन बले उन ताने आमी दखुक लाई सकू और बनाउक लाई नी जानू बल्लो ने आमी उन बीती मन के उन ताने ले दखुन बाती आमी सीखुक लाई बले सकू ने सीखुक लाई बले सकू और उनके आमी आप लोग घर ने बनाऊ के लाए बोले सकूँ और दखुन भाती बनाऊ से और आमी नी जानू से बल्लो ने फिर बनाते बनाते उनके आमी जानू दे बोले असनी चाउर भाजा बल तो बीती बले आसे उन बले कितरो नगत लागे से लोग मन खूब मन कर सोत खातो का जे उनके बले आम छो जन गाँव गुड़ा मन ने आए उन आगर ले आगर बने से और एवे चो समय आने शहर सागर ने बोले लोग मन जान ला सोत ने तो आम के आम चो जोन आगे जुगले चलते है तो बीती काई बोले तीज रहो चाहे हुन खातो जीनिस मन हो नहाले फिर कई कला हुनर बीती तीज मन हो नहाले काई बोले हो उनके आम के बचाउन बाती संगौरा तो रहे कसन बल्ले उन आम चो आगे जुगले
पीढ़ी दर पीढ़ी चलते इली से उन बीती मन के आमी बचौन बाती संगउ रवाने तेबे तो उन आगे जाऊन बाती बाचू रहे दे जैसन कि पनाई ची मैं बोलते रहले बाचू रहे दे ने। और देखा ये जो न खातो जीनिस मना से एके सब मन दे उन भाती खाऊ तो आत पीला झीला बोले संगे संगे मन करुआत ने मानतर बहिन मन असन आए कि एबे जो समय ने बीमार बाट मन खूबे होए से जैसन होली चापा लाडू और गुरबोबो सपाय ने मीठा मीठा लागे से शकर लगौकले पड़े से गुड़ लगौकले पड़े से तो आम के खिंडिक ध्यान दे तो रहे कि आमी खिंडिक कम मीठा लगाउन बाती खातो जिनिस मन के बनाऊँ जहाँ जोन मीठाई मनाए मीठा मीठा बने से खातो बीती मन तो आम के उनता ने खिंडिक कम मीठा लगा तो रहे शक्कर होली नहाली गुड़ होली असर ने कहा सपाय लोग खाऊक ले सकूँ और उन हम जो सेहत का जो बोले अच्छा रोक ला सके दे तो ये तो काय सुंदर नगत नगत गोठमर रहे बहिन मन अदाएँ झाला बीती गोठमन।

0: उपरमंचो खेती कमानी ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान, बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: तो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तलाय दरकता, डबल रोटी, आरी और छेना, पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो। इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़, अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता, जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दरकिता, अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता, सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता कोटरू गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता, अद कम मास इंजे 18% अत्ता। इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोरकीता।
4: बहिन मन, एकाय सुंदर झाला बीती गोठमन के तो सुल्लू ने अदाई दखा। मैं तुमचो काजे गोटोक काय सुंदर भत्री कहनी के धरून भाती हिले से। आमी का आमचो जोन कार्यक्रम मन रहे से उनताने आमी कई ज्ञान ध्यान बीती गोड़ बात मन के तो धरून एवं चिहावने के भी भेंटवार्ता होली, कहनी होली, कविता होली। तो असनी आजी मैं तुमचो काजे भत्री कहनी के धरून भाती हिले से एके सांग सोत बहिन सुशीला कौशिक आले ए मने कहनी ने काय काय गोट मन के सांग सोत। पहिल उन मंचो सांग तो कहनी के सुनूता, उनचो पाचे फिर हमें गोठियावा।
5: एक ठन गांव में सान महापारा रला मने, हई थानार लोग भारी सौकार रलाए। एक दिन सपू पारार लोग मनसोर होलाए, ए हो पारा भाई मन, हमार गांव पारा में भगवान और मंदिर नी आए। हमी सबू जन सारी पाड़ी करी गोटक भगवान कृष्ण गोपालर मंदिर बनाऊ। सबू पारा भाई रुपया पैसार सारी पाड़ी करी मंदिर बनाए लाए। मंदिर थाने भगवान कृष्ण मूर्ति के आसन थाने बैठाए लाए। गांवर जी गोटक माने के पुजारी बनाए लाए। पुजारी सांझे सकाले मंदिर के धुआ पोछा करते रहे। भगवान सेवा करते खूबे बरस होयला, पुजारी बले डोकरा होयला। पुजारी मन में विचार करला, मैं अबर एकला मंदिर बुता के ना करके सके, पारार लोग के बल के लाक्सी गोटक संगवारी दियास। मन में वाट करते पुजारी के राती ले सकाल पहला, सकाले उठला औरी मंदिर के धुआ पोछा कर भी बोलते मंदिर लगे गला। दक्षी आछे गोटक 15 पीला पैठी थाने बटला आछे, कांदी कांदी ताके दखला पुजारी औरी बलसी आछे। ए पीला तुई कौन आस? पुजारी गोट के सुनी करी पीला बलसी आछे, मैं खूबे दूरिया ले आए, मोर कोनी नी आत, मके काई बोले काम बुता मिरले मिरला आले कर भी, मके भूख लागसी आछे, काई बोले आछे आले दियास। पुजारी पिलार गोट के सुनला आउरी बल्ला, मोर लगे भात साग तो नी आए, एदे 5 केरा आछे ताके तुई खा, तोर कोने नी आत आले मोर संगे ऐ थाने रा, काम बुता करबिस काई ची बुता न आए। सकरिया सांझे मंदिर के धुआ पोछा करवार आए, दोनों पहाड़ भगवान गोपाल काजे भोग रांधवार आए, तार काजे मोर काजे दार भात आउरी खाई करी गाय मन के रान भितरे चराय के नेबार आए। पीला पुजारी गोट के सुनी करी हौ बल्ला, रातिले बिहान पहाला आउरी बलसी आचे। ए पीला काली ले तुई नहा धुआ हुई करी अबर मंदिर के दोनों पहाड़ धुआ पोछा कर, भगवान के जगाय बकाजे फूल बले आन, पूजा पाठ कर लिसाले पाछे भगवान गोपालर भोग रांध, भगवान के भोग दई करी मैं आउरी तुई खाएबू, आगे ना खाए बारा। पुजारी बाबार गोट के सुनी करी पीला हौ बल्ला, पिलार असलार मासा खोयला, मास पूरी पूरी एकादशी पड़ला। पुजारी पीला के आपन लगे हाक देला और बलसी आचे, काली के एकादशी।

जाए बाबू मोरु पास आए, तुई रान बाटे जा गाय चराए के जा जाऊआस घर ले गहूँ पिसान दुईटा आलू तू मामे पानी धरी जा रान भितरे गोपाल काजे तोर काजे रांध बिस गोपाल के भोग देबिस पाछे तुई खाइबिस घरे ना रांधबे रा पिला पुजारीर गोट के सुनी करी बलसी आछे बाबा गोपाल तो मंदिर में अछत फिर रान भितरे कसन भोग बनाई करी देबी पुजारी पिलार गोट के सुनी करी बल्ला आते तब तार पाछे तुई खा पिला हो बल्ला औरी सबुज जमक के धरी करी गाय मन के चराय बाकाजे रान भितरे गला गाय मन के चराई करी गच खाले सबके बसई करी आपन नहा धुआ हुई करी आगी बारला रोटी आलूर साग रांधला तार पाछे भूई के लिपी करी केरा पत्थर में भगवान कृष्ण गोपालर ताबीज के छमे मंडाइला और हाथ जोड़ी करी बलसी आचे आशा गोपाल भोग लगा पेज बेरा हो तो साँझ होला गोपाल ना आसे पीला धूकर मारे कांदी गला औरी आशा नहीं आसो मैं खाए बीता बलते रही और छमे दक्षी आचे गोटक सुंदर माने तारी लगे आसला माने आसला और हाथ धोई करी बसला पिलार बनाला रोटी साके खाएला पानी पीला और जाते गला माने के जाए के दही करी पीला पाचे खाएला औरी गाय मन के खेते घरे आनला राती बेरा रांधा बड़ा करी करी गोपाल के भोग दही करी पुजारी के बलसी आचे मैं आजी पेट भर ना खाईली तुई बाटा होला पिलार गोट के सुनी करी पुजारी बलसी आचे तुई तो पिला पावक पिसाना रोटी के रोजे खाऊआस कसन पेट ना भरला बोलबियास अबर एकादशी के एक किलो पिसार ने पाँचटा आलू ने असने असने फेर मांस पुरला एकादशी फेर आसला पीला पिसान आलू सबू धरी करी रान भितरे गला गाय मन के चराई करी गच खाले बांधी देला तार पाछे रांधा मंडाला रोटी आलू साग रांधी करी गोपाल के हाथ जोड़ी करी हाक देला आजी पीला तीन ठन मोटा मोटा रोटी बनाई रहे आजी बोले पीला खूबे भूखे हुई रहे बोले काय करता आगे खा ले पुजारी नौकरी ले निकराई देवी बोलला आछे कमता करी खाईबी गोपाल भोग लगाएला बिना कमता खाईबी साँझ होला टाकटाकी चिरे बेर बूढ़ा बूढ़ी गोपाल गोट टोकी के संगे धरी करी आसला पीला लगे अमरी करी टोकी संगे बसला रोटी साग खाएला पानी पीला आवरी जाते गला पीला आजी बोले आधा पेट खाएला गाय मन के रान भीतर ले खेदी करी घरे आनला आवरी पुजारी के बलसी आचे आजी तो गोपाल संगे गोटक टोकी बोले आसी रहे तीनटा रोटी बनाई रहे आज एक ठन मैं खाएली अबर मास के मके दुई किलो पिसान देबास आलू बोले खूबे देबास पुजारी हो बल्ला मास पुरबा के पीला पिसान आलू धरी करी गाय मन संगे रान भीतरे गला बेरा बेरी पाँच ठन रोटी बनाएला भूई के लिपा पहारा करी भगवान गोपाल छापा बीती ताबीज के केरा पत्थर में मंडई करी रोटी साग दई करी गोपाल के हाक देला गोपाल आजी आपन संगे तीनटा टोकी मन के संगे आनला पीला आजी पाँच ठन रोटी बनाई रहे पीला के आजी बल एक ठन रोटी मिलला पीला गाय मन के खेदी करी घरे पहुँचला राति बेरा खाई करी पुजारी बाबा के बलसी आछे बाबा तुम्ही नापी करी पिसान गिनी करी आलू देवास आजी गोपाल संगे तीन ठन टोकी मन आसी रहत अबर मास के एकादशी में छः लोग आसुआत तुम्ही तीन किलो पिसान दस ठन आलू देवास पुजारी बाबा मन मन में वाट लगाला हो न हो पीला के लालच आयला कायनो सबू सामान के नहीं करी बिकी करी खाइसी आचे और भर एकादशी दिन मैं पीला के रान भितरे पठाई करी लुकी करी पिटी पिटी जीबी और दगबी काय सताए आवरी काय झूठ मास पुरला एकादशी आसला पुजारी पीला के तीन किलो पिसा दस ठन आलू दई करी जा रान भितरे गाय मन के चराओ आवरी भगवान गोपाल काजे भोग रांध आवरी बाचला बीती के तुई खा पीला सबू जमक के धरी करी रान भितरे गला पुजारी बोले पिलार पाट पाट रान भितरे गला और गच पिठी लुकी करी दक्षी आचे पीला रान भितरे गाय मन के चराएला मुंडे बरा गाय मन के गच खाले बांधी देला आवरी नहा धुआ हुई करी आगी बारला साठ ठन रोटी बनाएला पीला भूई के लिपा बहारा करला केरा पत्थर के उछाला आशा तो रोटी के केरा पत्थर में आलू साग संगे देला सांझ बेरा बेरी भगवान गोपाल संगे आस लाए पीला तो

0: में रूप के देखे करी पीला मुरझा गला। पुजारी बाबा गच पिड़ली पिठीले निकरला औरी भगवान गोपाल रागे भूई थाने पटा पड़ी करी पाए पड़ला औरी बलसिया छे हे गोपाल हे भगवान हे पील ए पीला खूबे भाग बिताए औरी तुमर परम भगत आए तार तक लागी मके तुमर दर्शन होयला भगवान दर्शन दे करी माया मंजूर होयला। पुजारी बाबा पीला के मंदिर थानर पुजारी बनाई करी मंदिर के पीला के सोपी करी तप करके रान भीतर गलाए पीला के भगवान गोपाल और भोग रांधी करे देवार फल मिरला।
1: तो बहिन मन एक काय सुंदर भत्री कहनी के सुन लुने भगवान बीती रहे भगवान गोपाल चो और सुन उन भाती खूबे अच्छा लागली। बहिन मन ए कहनी ले गोटोक सीख मिले से कि आम के आम चो मन के अच्छा संगा तो राय कहीं बोले खोट कपट नहीं संगा तो राय असन ने सब चीज अच्छा हुआ है ने ए कहानी के तो सुन लो मानता रामी आम चो कार्यक्रम भीतरे गीत मन के बोले धरुण भाती वहाँ तुम चो काजे तो असनी मैं बोले तुम चो काजे ए गीत मन के धरुण भाती ले से ए गीत के गावला सो दिलीप कुमार पांडे और हुन मन चो संगवारी मन पहले गीत के सुनू ता उन चो पाचे फिर आमी गोठियावा।

बहिनमन एबे हामी सुनलु दिलीप कुमार पाण्डे अरुण मञ्च संगवारी मञ्च गाउलो गीतके। असनी फेर गोटक गीत आसे काय सुन्दर, एके गाउला सोत नीला अरुण मञ्च संगवारी मन, आले गीतके सुनु।

0: एबे हमें ये काय सुंदर गीत के सुन लू, एके गावला सोत नीला और उनमनचो संगवारी मन। बहिन मन, आमी आमचो कार्यक्रम भितरे कई ज्ञान ध्यान बीती गोठ मन के तो धरुन एवची आऊँ, संगे संगे गीत मन के बले धरुन भाती एवं कलाय नी भूलकू। कसन बल्ले दखा, ज्ञान ध्यान बीती गोठ बात मन तो खूबे जरूरी आए, मानतर गीत मन के सुन लो ने बले खूबे हरी कर नगत लागे से मन के। तो घड़ी बाटे दख लो ने मचो जातो समया होए से, आले में बिदा धरें दे असनी फेर के भई तुमचो संगे भेंट उकलाय आई दे। घर दुआर कार्यक्रम सुन तो सपाय आया मन, दीदी मन बहिन मन और संगजौरिया संगवारी मन के, जातो पूरे में तुमचो तारा करे से जुहार।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1 बजने को है। अब दिल्ली से समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर

जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका

0: बेवकूम बुरका कड़ेल कोनूर स्थिर है। लेकिन अधीन उर्सी मंज विरसनाद आयो बाली की इले विर्स के पौधला तगा उड़ो के पौधला तगा पुड़क वास मंज नुकसान किया नाद अध पुड़क ना पेधेड़ मनता लाली पुड़क ईद पुड़क पौधला ना आकी किन तेना पुंगार किन और फर किन तिंदनाद ईद पुड़क आकिना मोदल मन मदनाद तेना रोकताम लाए ऐं किलोग्राम कार्बोरिल और ऐं किलोग्राम राखड़ी किन प्रति हेकड़ भूम तगा इतकनाद इलो के 500 ग्राम कार्बोलिक 50% गोला की तनाद पाउडर किन 100 लीटर एरते गोला की समान इतकनाद और वोनपुर का आता परविस्क परविस्क लेता फर तगा गड़वाम यनाद अध गड़वाम तगा टाद पुड़क वास मंज तेना गुदा किन तिंदनाद इले तित के फर नुकसान आयनाद और इदिन 8 बजार तगा वम के गलाय मावा कम दोरकनाद तेना रोकताम लाय 250 किलोग्राम फेनित्रो तियन 50 ईसी इलो के 400 मिलीलीटर मेलाथियन इलो की 500 ग्राम कार्बोलिक धूले मत्ताद पाउडर और 1.2 किलोग्राम गुड़ाम किन 250 लीटर एरते मिला किस मंज 10 दिन ते अंतर ते प्रति एकड़ ते इतकनाद और वोंड आता माऊ पुतका पुड़क ईद पुड़क आकिना रस किन उकनाद ईदिन कारण ते फसल वेंडे कमजोर आयनाद तेना उपज वेंडे कम आता ईदिन रोकताम लाय 250 मिलीलीटर मेलाथियन और 50 ईसी 350 लीटर एरतगा मिला किस्मंज 10 दिन तक अंतरते इतकनाद ईद कौन अत्ता पुड़क और ईद बीमारी वेंडे आयनाद तेना बीमारी ना पेदेड़ आता बबूतिया रोग और दूसरा आता डाउनी मिल्ड्यू और तीसरा आयनाद एंथ्रक नोज व स्केल और भभूतिया रोग ईद फपुंदी आकी तेना तना नगा सफेद चूर्ण जमा आयनाद तेवे तेना आकी वेंडे मड़कनाद तेना रोकताम लाय 500 ग्राम गुले मत्ताद गंधक सल्फेक्स इलो के वेट सल्फ किन 200 लीटर एरते प्रति एकड़ ताद हिसाब ते इतकनाद और दूसरा आता डाउनी मिल्ड्यू आकीना पोरो मदनाद तेना रंग वेंडे पीला मदनाद ईद आकी तगा मोदल पंडरी इलो के बैंगनी रंगताद पाउडर आले उड़ानाद तेना रोकताम लाय इंडोर सल्पान M45 इलो के ब्लाइट टाक्स 50 रेंड ग्राम दवाई किन प्रति लीटर एरतगा इतकनाद और तीसरा आयनाद एंथ्रकुनोज स्केल आकी इलो के तना तगा दवा मंदानाद तेना गुडुम आयनाद और प्राथमिक लक्षण आता तेना रोकताम लाय 100 ग्राम इंडोन सल्पान और 45 दवाई किन 100 लीटर एरते गोला किस मंज प्रति एकड़ ताद इसाबते इतकनाद इदिन मोनो इले कित के नेला आता और माकिन नेकाय दाम वेंडे दोर की था।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामी की बिड़ाकड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण। यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1:10 होने को हैं।
2: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5

0: प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।

पेश है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। आपकी फरमाइशी पत्रों को लेकर हाजिर हूँ कार्यक्रम श्रोता सुमन में। मैं अपर्णा अवस्थी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

कार्यक्रम श्रोता सुमन का पहला गीत अभी आपने फिल्म उजाला से सुना। आवाज़ थी मन्ना डे के साथ लता मंगेशकर की। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। गीत सुनना चाहा था आप सबने। मेघापारा से कृष्ण कुमार साहू, धनंजय मनोज कुमार साहू, उत्तर बस्तर कांकेर से प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, मनोहर निषाद, खंडवा से हैं श्रवण सिंह गिन्नारे, श्रीवास खट से सुभाष, राजेश कुमार, मंदा खांडले, अंजलि, संदीप, पिंटू, शिव मंदिर खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव, राधिका, दीपिका सैनी, नागर कोहरा राजनांदगांव से छग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम साहू, पूजा देवी साहू, लल्ला दुष्यंत साहू, प्रांजल समीक्षा साहू, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत जी एस रामगढ़िया, मनविंदर पांधा, गोलू काकू, कुंदनगर खरगोन से ध्रुवास सोनवड़े, सुनीता आशीष, खुशी प्रियांश सोनवड़े, पूनम कृष्णा, शुभम सोनवड़े, अशोकनगर बसमत से हैं पार्वती, सखाराम, दीपाली, राजू, रोहित, सोनू, मोनू, भाटापारा दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, ताजपुर मोखा से भाई कारी राय, मीनाकारी, पुंजराज, आर्यन, आरती, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, नीतू, पनवाड़ी महोबा से है देवी दीन अहिरवार, सुनीता अहिरवार, दिनेश, कपिल, पूजा अहिरवार, शिवकोटी ओंकारेश्वर से हैं राकेश, पप्पू सेन, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन, पिंकी सेन, हटरी चौक भिलाईगढ़ से खीक राम देवांगन, रेनू देवांगन, बन बघेरा राजनांदगांव से हैं योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि सारवा।

सावन कुआनी दो इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा के जुगल स्वर में संगीत गीत रचना थी जौहर कानपुरी की। संगीतबद्ध किया था राजकमल ने। इस गीत को सुनने की चाहत थी हमारे इन श्रोताओं की। बेलरगांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन, कोरदा लवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार, शिव कुमारी, हेमलता, वेद किरण, पन्ना से कौशल किशोर, मट्टू हर्षित, वैभव मट्टू, खक्कल जालौन से दीपक गुर्जर, सत्यम गुर्जर, अंशराज गुर्जर, उदयनगर से मोहित रत्नपारखी, स्वाति मिश्री, मनस्वी रत्नपारखी, हमीरपुर से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, निवेदिता, प्रांशी, ज्योति मानसी, सुदीपा, सुशीला पाल। और इसी गीत को सुनना चाहा है हमारे श्रोता जय कवासी, सेतुराम चक्रधारी, मगदीन चक्रधारी, आशीष कुमार, अस्तिका चक्रधारी और हमारे ये श्रोता हैं फागुराम यादव।

कार्यक्रम श्रोता सुमन का अगला गीत हमने लिया है फिल्म तेजाब से। गीतकार हैं जावेद अख्तर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर इस गीत में अपनी आवाज़ दी है अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार ने। गीत सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोताओं के नाम इस प्रकार हैं। अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली, उमरखेड़ से अभिजीत गवहाणकर, सरिता विसिद्धांत गवहाणकर, दौलतबाग से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी, मर्दापोटी कांकेर से है नरसिंह थापा, बीर सिंह थापा, दिल्ली मोरीगेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, पनवाड़ी महोबा से है शिवनारायण, अनुज गुड्डी, देवनारायण अंकुश, लक्ष्मी प्रसाद मोहित, प्रीति नीतू, विजय सत्यम, मोहिनी पवन, मलोट से हैं छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह गगन।

दीप कौर, देवास से प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी, नवागढ़ से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, गोहतापारा लोरमी से हैं राजकुमार साहू, लवकुश गौरी साहू, गोकुल झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्नव आनंद, सत्यम आनंद, घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचौलिया, बिलासपुर से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, रज्जन साहू, सुशील देवांगन, शशिकला शायर, सोनाडी से हैं सुब्रत चौधरी, अनीशा, नीलू, मेघ, वंदना कुमार।

हुसैन पेंड्रा से हैं, दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा, लबी श्रीवास्तव। गौरीनगर इंदौर से हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। ग्राम सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, निशा प्रकाश, देवेन जी। अघनपुर धर्मपुरा बस्तर से हैं डी विनीता नायडू, डी कृष्णा राव नायडू, डी ईश्वर राव नायडू, डी रोजा नायडू, अमृता संतोष। प्रेम झील घनौरा बस्तर से हैं वी पूनम नायडू, साजन, के शिवांशु और रिशु। आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म सिंदूर का नगमा। आनंद बख्शी के लिखे गीत की तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत में आवाज़ है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, अडगांव से हैं किशोर धुले, वंदना धुले, शिवानी आनंद, आशीष धुले, बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, दरभा से हैं रामधर कश्यप, मनीष कटरम, उदय नाग, उदय ठाकुर, तोकापाल से हैं विश्वेश्वर भुआर्य और बनियापारा धमतरी से हैं रामचंद मखीजा, शंकरलाल मखीजा, राहुल कुमार मखीजा, शरद डोडवानी, बोरखेड़ा उज्जैन से हैं विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश, दिलीप सिंह, खंडवा से अनिल विंचुरकर, मंगला विंचुरकर, शोभित विंचुरकर, चंडी मोहदी से हैं नारद साहू, हेमलता साहू, पवन साहू, खुशबू साहू, अडार नानघाट से हैं माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल वर्मा, गोपी भूपेश वर्मा, दीपेश वर्मा, महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, रिचा गायत्री वैष्णव, महोबा से हैं उदय भानपाल, दीक्षा पाल, जय हिंद पाल, प्रतीक्षा विमलेश, नागलोई दिल्ली से हैं मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा, कंडला बंदर कच्छ से है जगदीश जौहरी, पूजा जौहरी, जेनीश। आप सबके पत्रों पर पेश है फिल्म लव स्टोरी का गीत, शब्द रचना है आनंद बख्शी की, स्वर लता मंगेशकर के साथ अमित कुमार की, सुरों से सजाया है आर डी बर्मन ने।

आपके फरमाइशी पत्रों में अगली फरमाइश है फिल्म हीरो से। बोल आनंद बख्शी के, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाजें हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की। सुनना चाहा है आप सभी ने। बोड़ा गाछी से है मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रीतु सिंह, ऋषभ सिंह। रायपुर मोवा से हैं गोपेंद्र कुमार साहू, मंजू साहू। भंडार सिवनी से हैं सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान, अनुष्का चक्रधारी। रायपुर से हैं विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर। भाटापारा से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला। हमीरपुर से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, संजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा। इसी गीत के लिए फरमाइश आई है छबीलपुर गन्नौर से। हरवेश कश्यप, अरजीत कश्यप, दिव्यांश कश्यप, गायत्री कश्यप। भाटापारा से है भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित, सुमित्रा साहू। जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजेल भाटिया, नवनीत, पप्पी भाटिया। सावरगांव से रघुनाथ नारे, पुष्पताई नारे, श्रीधर नारे, मीनल नारे। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू मल, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, कुनिका मल्होत्रा, जानकी, चंदन, चंद मल्होत्रा। ग्राम प्रणत से हैं गोपाल पाटिल, मंगला बोचे, विष्णु, संकेत बोचे। नेवदा से सेवक राम यादव, टुपेंद्र कुमार यादव, तुलेंद्र कुमार यादव, देव कुमार। लोहारी खंडवा से हैं राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला, गायत्री, धनजय। देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा। हसदा क्रमांक दो से हैं कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू। इंदौर से पूजा, बबीता, शोभा, रेखा, रघुवंशी, स्वाति, प्रयाग, चौधरी, परी, ललिता, गणेश, कार्तिक, नारायण। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म हीरो का ये गीत।

अनूपपुर मध्य प्रदेश से हैं जयमंत्री केवट, जय अंजलि केवट, रुद्राणी केवल, कृष्णा केवट। मुरादाबाद से हैं मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, सोनी। मुंगेली से हैं कृष्ण कुमार साहू, धनंजय, मनोज कुमार, सत्यम, शिवम, गायत्री। भीमखोड़ा तरपोंगी से हैं संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश गुप्ता, लक्ष्मी, प्रतिभा गुप्ता। जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, स्वीटी गव्या, जयपाल। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरव शर्मा। पिपरिया कबीरधाम से हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता। बनियापारा धमतरी से हैं सविता मखीजा, स्वाति मखीजा, माही छुटकी। शिवाजी चौक राजिम से हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार, कृष श्रीवास्तव। आप सबने अनुरोध

लाल माता सुदामानगर से हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, मनोहर, सत्यनारायण, प्रभु लाल, बागरी, सूर्यगांव, औरंगाबाद से।

नांदूरा महाराष्ट्र से हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। रिग्नी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ। रायगढ़ से रोहित, जयलक्ष्मी, रीसम, अंश लक्ष्मी। इंदौर से हैं प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश, कार्तिक, संजना, परी, ललिता। श्रोता सुमन, कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश है फिल्म नदिया के पार के पार से, और गीत और संगीत रविंद्र जैन का। इस गीत को गाया है जसपाल सिंह ने।

श्रोता सुमन, अभी आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: raising fresh questions over the exclusion of one of the country's largest political parties from the political process. In an interview with a TV channel, Hasina described the cases against her as politically motivated and accused the current authorities of using the judiciary to eliminate the Awami League from Bangladesh's political landscape. Hasina's remarks came as the Awami League observed its 77th founding anniversary amid a nationwide ban on its activities and extensive security measures. China has imposed new export controls on 40 Japanese entities, accusing them of contributing to Japan's remilitarization as tensions between the two countries continue to rise. China's Commerce Ministry placed 20 entities on an export control list. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eustachio of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. Co-hosts Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July the 4th. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. The Met Department also predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe till Wednesday. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water-sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने

0: वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा।

0: में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि

0: उन मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर अवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
1: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन न्यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे राधेश्याम नागनपुरे।

0: वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने लिखते हैं,
1: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
0: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
0: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
1: जी।
0: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
1: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा, भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है।

0: अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी? आई इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल गंध की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं, कोई बहाना बना देंगे। ठीक?
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
0: हाँ। नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़।
2: अब
1: तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।
0: अच्छा।

0: अम्मा अम्मा
1: अरे अरे क्या हुआ?
2: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
2: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
0: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे। अरे क्या देखा तूने?
0: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा।
2: चुप्पा
0: अम्मा, अम्मा जोर जोर से रोया, मगर मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
2: चुप्पा चुप्पा
1: सोचा बेटे सोचा, डर मत, अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
2: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है

0: लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
1: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
1: फिर भी
3: अम्मा तू भी चले वापस?
1: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
3: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
3: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
3: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
3: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, आगे चलकर देखते हैं। चलो
2: देखो ये पेड़,
0: देख लो।
3: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो। इधर से निकल कर आओ।
3: अच्छा
2: ध्यान से बेटा।
3: आई,
0: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
3: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो
3: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे।
3: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना।
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
3: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
3: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा।
2: हाँ बिल्कुल,
0: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
3: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला

0: नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
2: ओ जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। हैं,
1: तू समझ गई है?
2: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी, तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
2: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोल ना।
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल
1: सच्ची।

0: अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम

अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। विविध भारती के कार्यक्रम आपकी सेवा में जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में शाम 5 बजे 5:05 पर, युवाओं का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर, शाम 6:30 पर होगा नाट गीत, कलाकार होंगे मगन राम कश्यप और साथी, बस्तर के स्वर शाम 7 बजे 7:21 पर होगा कार्यक्रम आमचो गांव, 8 बजे कार्यक्रम नानोली में गोंडी गीत सुना जा सकेगा, कलाकार होंगे शुक्ला और साथी, पीला मन का जे गोट, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, प्रस्तुति होगी साहजी नाग की, प्रसारण समय 8:30। रात 9:15 पर कार्यक्रम जीवनाचो सूर, इसमें आप सुनेंगे महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्षा शकुंतला ठाकुर से ली गई भेंट वार्ता, इनसे भेंट करेंगे बलवीर सिंह कच्छ, भेंटघाट कार्यक्रम रात 9:30 पर, इसमें समसामयिक विषय पर गोपाल पोयाम से ली गई भेंट वार्ता सुना जा सकेगा, इनसे बातचीत करेंगे बलवीर सिंह कच्छ, रात 10 बजे कोदोमाली में सुनिएगा गोंडी गीत, कलाकार होंगे सैनी राम और साथी। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुबह 6:05 पर, 6:20 पर होगा चिंतन, श्री राम चरित मानस का गायन 6:25 पर, गायक स्वर महेंद्र कपूर और शोभना राव के, संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया, बेड़ा खाड़ा चौक गोट सुबह 6:35 पर, हुलहुली कार्यक्रम में होगा जलनी माता पाड़, वादक कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। सुबह 7:05 समय होता है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर का, इसमें आप सुनेंगे कहानी पाठ, कहानी सुनाएंगी संध्या बरबरवार और होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। 8:30 पर छत्तीसगढ़ी साहित्य पत्रिका मोर भुइयां और सुबह 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9 बजे होगा रूपक चिंतन क्रांति कबीर की, लेखक श्री लाला जगदलपुरी, प्रस्तुति होगी जी श्याम की एक ही फिल्म से, 9:30 पर फिल्म होगी दिल क्या करे। लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में नीलू राम और साथियों के गाए भतरी गीत सुना जा सकेगा सुबह 10:30 पर। 11 बजे एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक विपिन सचदेवा पर। 11:30 पर लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में आप सुनेंगे समधीन पाड़, वादक कलाकार होंगे ईश्वर कश्यप और साथी, कला और कलाकार, ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12 बजे। घर द्वार ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर। फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम श्रोता सुमन दोपहर 1:10 पर। 2:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी शाम 5 बजे 5:05 पर होगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम।

0: भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। युवाणी कार्यक्रम शाम 5:10 पर, शाम 6:30 से आप सुनेंगे इंग्लैंड द ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जाने वाले सेमीफाइनल आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आंखों देखा हाल। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। मैच प्रसारण न होने की स्थिति में कार्यक्रम बस्तर के स्वर आप सुनेंगे शाम 7:00 7:21 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। शिक्षकों के लिए रात 8:00 इसमें होगी वार्ता, विद्यार्थी क्यों चुने इलेक्ट्रिकल ब्रांच, वार्ताकार होंगे सुभाष मिश्रा। रात 8:30 पर पीलामन का जिगोट, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर, प्रस्तुति होगी माधुरी यादव की। रात 9:15 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से, 9:30 होगा मोचो मंचो गीत, पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम। रात 10:00 लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में आपको सुनवाएंगे मारी रोसना पाड़ और खेल पाड़, वादक कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में।
1: जुहार, समसामयिक विषय मन ने आधारित कार्यक्रम मन संगे मैं हितप्रीता ठाकुर। सुन तो लोग मन, आज जो आम चो ये कार्यक्रम 1 जुलाई ले देश भर ने लागू होतो बीती विकसित भारत रोजगार आरु आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना उपरे केंद्रिता से ग्रामीण विकास आरु रोजगार व्यवस्था के अधिक प्रभावी आरु पारदर्शी बनातो उद्देश्य ले विकसित भारत गारंटी रोजगार आरु आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के देश भर ने 1 जुलाई ले लागू होन जाए दे। ये योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा चो ठान धरे दे। इलागुन गोटो गोटो गांवरिया परिवार मन के हर वित्तीय बरक ने 125 दिन चो काम रोजगार दिया तोर चो वैधानिक गारंटी देतोर होए दे। ये योजना उवाट ने अंगर कोनी माने के समिया ने काम नी दिलो ने तो बेरोजगारी भत्ता देतो नियम बले बनली से। छत्तीसगढ़ जसन कृषि अरु ग्रामीण प्रधान राज्य का जे ये योजना खास महत्व चो आए। ये चोले राज्य चो लाखों गावरिया परिवार मन के रोजगार आजीविका कौशल विकास संगे संग स्थायी परिसंपत्ति मन का जे निर्माण चो लाभ मिरतो संभावना आसे। अदाय तक मनरेगा मुख्य रूप ले अकुशल श्रमिक मन के रोजगार दिया तो काजे केंद्रित रली। पहले VPG रामजी योजना चो उद्देश्य रोजगार संगे संग आजीविका उपजातो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत करतो और नगद टिकाऊ विकास सुनिश्चित करतो राय। योजना लागून ग्रामीण ठान परगन मन ने सड़क तरई जल संरक्षण सिंचाई बूटा मंडातो सार्वजनिक परिसंपत्ति मन उपजातो और दूसर विकास काम मन की प्राथमिकता देतोर होए दे। योजना चो क्रियान्वयन आधुनिक डिजिटली प्रणाली उवाटले करतोर होए दे जे चोले काम मन चो निगरानी और भुगतान के और अधिक सुदृढ़ता संगे पारदर्शी बनातोर हो सको। छत्तीसगढ़ ने ये योजना चो जाहला हाका काजे ग्राम सभामन चौपाल पोस्टर बैनर मुनादी रथ प्रचार अरु डिजिटल उपायमन करतोर होए से। हुताय सरपंच सचिव रोजगार सहायक स्व सहायता समूह चो मेहरार मन जनप्रतिनिधि अरु ठाने रतो सामाजिक संगठन भले लोग मन के ये योजना चो जानकारी देतो काजे जुहुन भाती मिसुन काम करे सर। और फिर ग्राम अरु जनपद पंचायत मन संगे जिला स्तर ने भले प्रशिक्षण बसका और ग्राम सभा मंचो उदिम करतोर होए से। राज्य चो भीने भीने गांव मन ने गेलो 24 जून के होलोबीती ग्राम सभा मन ने गांवरिया मन के योजना चो जानकारी देतोर होली से।

छत्तीसगढ़ चो ग्राम पंचायत मन चो काम ये योजना चो सफल संचालन काम करुन दखातो काजे महत्वपूर्ण रहे दे। ग्राम पंचायत मन चो ठान चो काम हिसाब आवश्यकता मन चो हिसाब ने विकास काम मन के बाछुन काम करे दे। ये योजना ने ग्राम सभा चो सहभागिता संग साथ के खास महत्व देतोर होली से जे चोले स्थानीय बल्ले ठान चो चीपा बाधा सुविधा मांग के दखुन भाती काम चो चीना बाना अरु बाचतो काम होए दे। इन नवा व्यवस्था ली रोजगार चो संगे संग गांवरिया आधारभूत संरचना चो विकास के बले बल मिरतो भरोस आ।

0: राज्य मंत्री परिषद चौबस्का ने विकसित भारत रोजगार आरु आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना छत्तीसगढ़ चो प्रारूप अनुमोदन करतो होली। योजना लागून चालू वित्तीय बरक का जे राज्य बजट ने 4,000 करोड़ रुपया चो प्रावधान करतो होली से। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय बल्ला की 1 जुलाई ले लागू होत बीती VBG रामजी योजना ग्रामीण आजीविका रोजगार और आत्मनिर्भर गांव मंचो बाट ने गोटुक ऐतिहासिक मुरियानी सिद्ध होए दे। हुनमन बल्ला की योजना लागून राजभर चो गांवरिया ठान पर गनमन ने हरी कुदिम चो लेहर दखुक होए से। श्री साय बल्ला की ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो विकसित भारत चो संकल्प के नवा गति बल दिया तो संगे आत्मनिर्भर आरु समृद्ध ग्रामीण भारत बनातो बाट ने नगत चकड़दम मुरमुठा आसन होए दे।
1: अभी आप सुन रहे थे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:11 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युवो वाणी।

0: जसं उदाहरण बोल सांगवा बोलले नी की आम्ही जेव्हा आमचं संघ जोऱ्या संघवारी म्हणजे आमचं युवाणी कार्यक्रम सुनसोत होती ने उंचो संगे संगे और बोले काही कोणी शिलाई करसत जालून शिलाई करेसे होती कोणी
1: और एक फेर आमचो युवाणी कार्यक्रम के चलाऊ दिलास होती पण तो लगे संग आऊ दिलास
0: रेडिओ के चालू करून
1: बसला आपल चो बूता केवल करसत और ये आपल चो कार्यक्रम केवल आमचो के सुनसत
0: ने एकही बोलतो रोसे संघवारी मान मल्टीटास्किंग बोलून माती
1: हो मान तर एके संगे सफाई बुता करलो ने ध्यान बल भटकुक सके कसन और उत्पादन बल कम हो सके आय कसन
0: सत्य बल्ली दिल बती मतलब किंडिक असन काम मन होय से जो मल्टी टास्किंग ने कि गोटोक संग गोटोक काम के करते संगे संगे दुईटान काम के कर लेन किंडिक हम चो दिया ने बाटून बाटो होय से ने उंचो का जे किंडिक उंचो ले पर तू चो बोलतो सन उत्पादकता बल कम होय से ने उंचो का जाम के किंडिक काय तो बना तो होय से कि गोटोक समय टाइम टेबल बनाउन बाती ने उनके गोटोक का एक एक एक सा एक काम की इतरो समय नहीं करें दे और एक काम की इतरो समय नहीं करें दे असन करुन कर लेने के लिए नगत रहे से ने
1: मल्टीटास्किंग और उत्पादन के बढ़ातोर काजे अलग अलग उपाय मन बले आसे ने आप मन जो काम बुता ने जोर दे तोर काजे अलग अलग मन बले आसे एक समय सही समय आने लगातोर होए से ने
0: सबले पहल तो जोन आमचो काम आए प्राथमिक कोनी बल गोटो काम के आए उनके मतलब आप लोग मूल काम के पहले प्राथमिकता देते रहे ने और उनके पहल कर उन करते ने महत्व बल देते रहे ने ये चले का आए कि आमचो काम जोन काम है उन बल होए दे और संगे संगे फिर आम के किंडी ताकि लाग ली ना ले किंडी मने बाटून बाटोली नहीं ये काम के दा डंडिक ते पाए दे और उन काम के करें बोले ने फिर उन काम बल हूं जाए से ने हाँ
1: ए चाहे काजे मशीन बलिलीस ने आसे जोन चो नाव आय आइजन हावर मेट्रिक्स ए चो उपयोग कर लो ने कोनी बलिबूता के आपल चो जरूरत इतरो करू खुआ ने
0: और समय ब्लॉकिंग बोल लो ने कि गोटोक समय ने गोटोक निश्चित समय ने गोटोक निश्चित बूता के कर तोर ने और आप लो ध्यान के बले बटन बाट बटका तोर नहीं और आप लो जोन काम आए उनके बल कर तोर और किंडिक उनी उनी काम ले किंडिक और समय निकरान उन काम के बल करुन दे तोर ने हाँ
1: और आपन चु ध्यान भटका तोर चीज मन लेवल दूरी बना तो रहा
0: है
1: जसन की आमी मोबाइल मोबाइल बल सब ले जान ध्यान भटका आए से कोनी फोन कर रसत हुन में ध्यान बुताक छाड़ू देऊ से फिर मोबाइल में देखू से कोनी मैसेज तो नहीं कर ला से
0: कोनी फोन तो नहीं कर ला से
1: जरूरी मैसेज तो नहीं कर ला से बोलून हुन फिर चालू करून देखू देखू से ए सब में बल आमचो ध्यान भटके से ने ए चाहे काजे अपन जो बूता के पहले करतो है मोबाइल साइड में रखू देतो है जोन ले आम जो काम आसानी
0: बल हो दे आरु जितरो करता है उतरो करुक बल सकवा नहीं ने ना मोबाइल ची नहीं ये संगे संगे हाउर बल का जैसा टीवी ओली का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मन और बले काय बरन बनी ने जो नाम चोले मतलब आम चो करतो बुता के करतो बुता चाणन बाती हाउर बुता करतो असन नी हो ने और दक ने असनी संगे संगे पर ये बुता मन की जसन कोनी पढ़तो बिताय जाले पढ़तो लोग का जे और बुता बोल लेने काय की आम चो समय निगरान बाती ध्यान के कसन नी बटका बोल लेने बटका तो ने किंडी बाछवा बोलतो काजे काय किंडी समय समय ने आप लो स्किल ने बल काय तो करतो रहे ने अगर कोनी खेल कूद बिताए जाले आप लोग पढ़तो समय के काय तो करून मतलब दिन ने सान सान बेरा या बियान पार ने आप लोग स्किल आए तो खेलवा कूदवा नाल बेरस नी को के गीत गोविंद चो शौक आए तो गीत गोविंद नाल को के वाद्य यंत्र बजा तो शौक आए तो वाद्य यंत्र नाल बेरस नी को चो वस्तुकला शिल्पकला सन काय काय चो रहे से ने अलग अलग किंडी उन मन ने वाले काम करवा नहीं तो आमचो पेर उतरन काय आमचो मूल काम के करतो काजे मन अरिक रहे दे मतलब अच्छा रहे दे ने
1: और समय समय ने एक आध घंटा बले मतलब बिसात और बला है ने बिसात बल खूब जरूरी है खंडी काम में बिसालो ने आमचो मन और मस्तिष्क वाले तरोताजा रुहाय ने और काम के करतो चो बले जन मन लगवाए हाय कसन
0: आले दिलबती आमचो संगजोरिया संगवारी मन के मल्टीटास्किंग ने निबुर लावरो ने कार्यक्रम ने और बलकुबे काय काय धरून आणलो से तो आले असनी आजी आमचो कार्यक्रम ने काय काय धरून आणलो सुन मन के बोलतो सांगून दा
1: हो ए नए तराने आय सामुदायिक गीत और वार्ता और आमचो सामान्य ज्ञान चो गोट बात बोला से ने
0: हो तो

0: काश सुंदर गीत रेली दिलवती ने
1: हाँ
0: बारिश छो और ये समयावल उसनी दक बारिश छो ने और द कसन वर्षा समय ने दक किए चलो पहले तू दक तेरे होती गाम ने इतरो गाम की दुआरे निकर तो का जा रहा विचार करू पड़ते रहे ने के में जा तो का जे इंडिका कसन जाए दी तरु गाम ने बोलू को ने और रसनी पेरा दाए
1: पानी लिग ने भिजते भिजते कहाँ बोल जाए बुलुक लाए बोल सीस ने
0: का सुंदर सीतर लागे जानू मन के और हरिक लागे से
1: जान ले तू ये गाना ये तो कितरो हरिक ने झूमते रही तू तो पानी संग में
0: तू जसन बारिश चो गीत सुना ली सुसने दाए मचलक बोला और गोटक बारिश चो गीत आसे हम चो संग जो रिया संगवारी मन काजे फिल्म है भागीले
1: हाँ।
0: स्वर दिलासोत मोनाली ठाकुर और मित ब्रोश गीतकारात कुमार संगीतकारात मित ब्रोश तो शंगवारी मन ए बारिश किंडी तामुन बरस पहले नी बरस की हुन एउप नी सको फिर इतरो बरस की हुन जाउप नी सको

0: हाले सामुदायिक गीत तो होली दिल बती ने अदाय मैं बोलते ने असनी हम चो संगजोर या संगवारी मन के अदाय वार्ता बाटे ने वो बोलून बाती ने तो असनी हम चो लगे वार्ता हाशे बंकिम चंद चट्टोपाध्याय जी चो ये वार्ता के हम चो लगे हमराय सोत श्रेया हैरिस पीटर तो संगवारी मन हाले सुनुन दकु पेर ही वार्ता के
1: हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, भागती हुई ज़िंदगी और ज़िंदगी के पीछे भागते हुए आप और हम युवा पीढ़ी कुछ अलग करने की चाहत अपने मन में लिए, अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए बेताब हैं। लेकिन क्या कभी आपने इतिहास के पन्नों पर नज़र डाली है? जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत देश में ऐसे बहुत से महान विभूतियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने सकारात्मक दृष्टिकोण, सादा जीवन और उच्च विचार को अपने जीवन में आत्मसात किया और अपने नाम को इतिहास के पन्नों पर दर्ज करवाया और हम सभी के लिए आदर्श बन गए। दोस्तों, आज हम बातें करने जा रहे हैं एक ऐसे ही महान शख्सियत की जिन्होंने अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की थी। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये हैं भारत के महान उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। दोस्तों, आधुनिक बंगाली साहित्य के जनक माने जाने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म 27 जून 1838 को बंगाल के कंटलपाड़ा गांव में एक रूढ़ीवादी बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोस्तों, उनके पिता यादव चंद्र चट्टोपाध्याय एक सरकारी अधिकारी थे। परिवार का असर परिवार के बच्चों पर भी पड़ता है। परिवार शिक्षित हो तो समाज भी उन्नति करता है, क्योंकि शिक्षा मनुष्य को न केवल सभ्य बनाती है बल्कि जीवन जीने का सही सलीखा भी सिखाती है। चट्टोपाध्याय जी के शिक्षा दीक्षा की बात करें तो इन्होंने हुगली मोहसिन कॉलेज और बाद में कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। सन 1858 में कला में स्नातक करने के बाद उन्होंने सन 1869 में कानून की डिग्री भी प्राप्त की। सचमुच अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। शिक्षित व्यक्ति ही बेहतर राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान

1991 में अपनी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त उन्होंने सन 1891 में अपनी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति ले ली। ब्रिटिश सरकार ने उनकी प्रशासनिक सेवाओं के सम्मान में उन्हें राय बहादुर की उपाधि से भी सम्मानित किया था। बंकिम चंद्र जी की साहित्यिक सफ़र की बात करें तो उनको आधुनिक बंगाली साहित्य का आधार स्तंभ माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी लेखनी ने जनमानस को काफ़ी प्रभावित किया। उनकी पहली प्रकाशित रचना एक अंग्रेजी उपन्यास राजमोहन्स वाइफ थी। दोस्तों, उनके प्रमुख उपन्यासों में आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, विश्ववृक्ष, चंद्रशेखर, कृष्ण कांतिर पील और राजसिंह शामिल हैं। साथ ही साथ उन्होंने दर्शन और साहित्य जैसे मुद्दों पर लिखने के लिए सन 1872 में बाग दर्शन नामक एक प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका भी शुरू की थी। अपनी बातों को, अपने जज्बातों को बयां करने का सबसे अच्छा माध्यम है समाचार पत्र, पुस्तकें और अन्य प्रसार प्रचार के माध्यम। दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी सबसे बड़े उपलब्धि 1882 में प्रकाशित उनका लिखा उपन्यास आनंद मठ है। दोस्तों, उनके प्रमुख उपन्यासों में आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, विश्ववृक्ष, चंद्रशेखर, कृष्ण कांतिर वील और राजसिंह शामिल है। साथ ही साथ उन्होंने दर्शन और साहित्य जैसे मुद्दों पर लिखने के लिए सन 1872 में बाग दर्शन नामक एक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका भी शुरू की थी। अपनी बातों को, अपने जज्बातों को बयां करने का सबसे अच्छा माध्यम है समाचार पत्र, पुस्तकें और अन्य प्रसार प्रचार के माध्यम। दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी सबसे बड़ी उपलब्धि 1882 में प्रकाशित उनका लिखा उपन्यास आनंद मठ है। इसी उपन्यास में उन्होंने अमर गीत वंदे मातरम की रचना की। दोस्तों, ये गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आकाशवाणी की प्रातःकालीन सभा की शुरुआत वंदे मातरम गीत के साथ होती है? सचमुच बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी न सिर्फ एक मेधावी छात्र थे, बल्कि वे एक कर्मनिष्ठ अधिकारी भी रहे और साहित्य के प्रति उनका गहरा प्रेम था। अपने विशाल साहित्यिक योगदान के कारण उन्हें बंगाली साहित्य में साहित्य सम्राट, एम्परर ऑफ लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, साहित्य और राष्ट्र की सेवा करने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय

0: में शामिल होकर और बाद भी देश का राष्ट्रीय बनकर अमर अजर हो गई। उस वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हमारा शत शत नमन। इन लाइनों के साथ कि हौसलों के दरिए से जो मोती चुराते हैं, हौसलों के दरिए से जो मोती चुराते हैं वही लोग इस दुनिया में महान कहलाते हैं। लहरों के विपरीत तैर कर जो अपनी राह बनाते हैं, लहरों के विपरीत तैर कर जो अपनी राह बनाते हैं वही व्यक्ति इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इसी आशा के साथ कि इस महान व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा लेकर हम युवा पीढ़ी भी अपनी कला को नई दिशा प्रदान कर एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपने पहचान स्थापित करेंगे और समाज और राष्ट्र की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।
1: इश्क की
2: काय सुंदर ये वार्ता रली दिलबत्ती ने बंकिमचंद चट्टोपाध्याय एक आमचो लगे हमरा तेरो श्रेया हैरिस पीटर और कुबे नंगत गोट केवल सांगला कि आमचो कुबे बड़े महान बोलूक सकू ने बंकिमचंद चट्टोपाध्याय जेमन राष्ट्रगीत लिखला मन उनके आम रचिता बोलूँ से ने तो आल अदायस निपर कार्यक्रम ने आगे बढ़ूँ और हम चो लगे अदायस निपर नए तरह ने चो गीत मन बला से ता ने तो मैं बोलते रहे पर नए तरह ने चो गीत मन के मूल करू बोलूँ
3: बाकी ये गीताएं फिल्म टू स्टेटस ले स्वर्दीला सतरजीत सिंह और चिन्मय त्रिपदा और गीतकारात अमिताभ भट्टाचार्य और गीत संगीतकारात शंकर ईशान लॉट रॉय
2: शंकर ईशान लॉय
3: तो यह सुनो गीत के

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: तो मनीराम ए भी हम चलगे ज्ञान ध्यान छ बोले गोट बात आसे ने
3: कसन बोलले ने आमी रोजे दिना ज्ञान ध्यान छ गोट बोलले ने सामान्य ज्ञान छ गोट धरनी रु माम ने हम चो संग जो रे संगवारी मन काजे असनी आजी बोले हम चो लगे आसे असनी सामान्य ज्ञान छ गोट भीतरे। तो संगवारी मन आज जो पहल सामान्य ज्ञान छ गोट आए भारत ने सकल घरेलू उत्पादन बोलले ने जीडीपी छ गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जाऊ है और ये जन सांख्यिकी हारू कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो अंतर्गत ये काम करू है। ये जो अंतर्गत विभिन्न सरकारी और राज्य विभाग जो डाटा के एकत्र करुण बाती वित्तीय वर्ष ने देश जो आर्थिक स्थिति के मापा जाऊ है और

0: ये भाषण बॉम्बे चो ग्वालिया टैंक मैदान पार्क में दिला। एबे उन मैदान चुनाव के बदलून अगस्त क्रांति मैदान नाव संगालार आसे ने।
1: हाँ हाले तो संगवारी मन, ये तो रेली आजी चो सामान्य ज्ञान चो गोड अदा हसनी आम चो लगे आसे।

0: आले काय सुंदर गीत रे दी दिलवती ने
1: हो
0: असन लागत रे तू के तो ये गीत मन के भावली असन ने
1: काय मन के भावली
0: द गीत सुनते रहले ने सुनते चिरुक बाय से मन तर काय करवाने
1: जातो समय
0: गोटोक
1: बल होली से
0: हाँ गोटोक समय ने उन बाती गोटोक समय ने जातोर बल होई से ने
1: हो
0: आले तो दाय मैं बोलते रहे कि आम जो आनलो मोटरा गडरा के सकलो आरो आम
1: हो
0: जो संगजोरिया संगवारी मन संगे ले
1: बिदा
0: बिदा मांगू
1: धरी
0: बोलून ने
1: हो
0: तो आले एचो संगे युवाणी कार्यक्रम

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है हिंदी में समाचार, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤਿ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ, ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ।
1: ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਪੰਕਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤਿ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ, ਸੇਨਾ ਮੈਡਲ।
2: Major General Pankaj Malhotra, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal from the Brigade of the Guards, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
0: Agla Param Vishisht Seva Medal prapt karne ke liye ja rahe hain Major General Pankaj Malhotra. Ati Vishisht Seva Medal, Seva Medal. Brigade of Guards ke aap adhikari rahe hain.
1: Major General Charanjit Singh Mann, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal.
2: Major General Charanjit Singh Mann, earlier recipient of Ati Vishisht Seva Medal and Vishisht Seva Medal, is now receiving the Param Vishisht Seva Medal.
0: Armored Corps ke adhikari Major General Charanjit Singh Mann Param Vishisht Seva Medal prapt kar rahe hain Rashtrapati ji ke kar kamlon se. Medal prapt karne ke baad unhe salute karte hue
1: Major General Rupesh Mehta, Sena Medal, Vishisht Seva Medal.
2: Major General Rupesh Mehta, Sena Medal and Vishisht Sena Medal from the Regiment of Artillery, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
0: Artillery Regiment ke adhikari Major General Rupesh Mehta ki bari hai apna Param Vishisht Seva Medal grahan karne ki. Aap Vishisht Seva Medal se pehle hi alankrit ho chuke hain.
3: Ab Sarvottam Yuddh Seva Medal pradan kiye jayenge. युद्ध अथवा संघर्ष अथवा युद्ध स्थिति के दौरान अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए सर्वोत्तम युद्ध।
4: इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है।

0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: आर बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बच्छर पूरा होए के मौका मा आज ले सहकारिता सप्ताह मनाए जावत हे। आज कबीर जयंती हरय, ये मौका मा प्रदेश भर मा कतकुन कार्यक्रम करे जावत हे। औ बस्तर के ऐतिहासिक औ विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज ले देव स्नान पूर्णिमा के संग शुरू। आप समाचार विस्तार ले। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बच्छर पूरा होए के मौका में आज ले सहकारिता सप्ताह मनाए जावत हे। 6 जुलाई तक चलैया ये सप्ताह में प्रदेश भर में कतकुन कार्यक्रम कराए जावत हे। आज पहली दिन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर में सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम के आयोजन करेगी, जेमा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होइन। उमनहा छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक पंडित वामन राव बलिराम लाखे के प्रतिमा में माला चघा के अपन श्रद्धांजलि दिन। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा और उपाध्यक्ष अभिनेश कश्यप मौजूद रहिन। उन्हें सहकारिता सप्ताह के तहत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के कतकोन प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति मन में ध्वजारोहण कार्यक्रम कराएगी। सहसपुर समिति में राखे गए कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि अधिकारी और बड़े संख्या में किसान मन भाग लीन। कार्यक्रम के दौरान समिति के उपनियम के वाचन करके किसान मनला उनकर अधिकारी और सहकारी प्रक्रिया की जानकारी घलो देगी। सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत रायपुर में अवैया 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तर सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी के आयोजन करे जाही, जेमा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होही। उन्हें 6 जुलाई के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्स में गोदाम बनाए के काम के भूमि पूजन करही। आज कबीर जयंती हरय, ये मौका मा प्रदेश भर मा कतकोन कार्यक्रम करे जावत हे। रायपुर संघरा दूसर जगह मा घलो आज कबीरहा मनहा रैली निकालिन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज संत कबीरदास के जयंती के मौका मा रायपुर के सोनपैरी मा संत असंगदेव के साथ कबीर जयंती महोत्सव मा शामिल होइन। कार्यक्रम मा मुख्यमंत्री हा कहिन कि संत कबीरदास के आदर्श जाति पंथ ले ऊपर उठ के सामाजिक सद्भाव, आत्मचिंतन और लोक कल्याण के प्रेरणा देथे। ये मौका में श्री साय घोषणा करिन कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के अवधिला अवैया 3 महीना बर बढ़ाए जाही, जेखर ले ज्यादा उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधान के लाभ लेके अपन लंबित बिजली बिल के भुगतान कर सकें। कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह मौजूद रहिन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र पर कतकोन डिजिटल पहल के शुरुआत करिन। एमा आरोग्य सेतु के दूसर चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा ला मजबूत करे बर स्वास्थ्य मानक शामिल है। सभा में श्री नड्डा ये पहला सरकार डहर ले हासिल एक ठन बड़े उपलब्धि बताइन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आज त्रिभाषा नीति के बारे में निर्देश जारी करिस। बोर्ड हा कहे है कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैचला नवा भाखा नीति के पालन नहीं करे बर पड़े। बोर्ड हा यहू कहे से कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं मा पढ़त लईका मन ला घलो कक्षा 10वीं पहुंचे के बाद तीसर भाखा मा बोर्ड परीक्षा दे के जरूरत नहीं होही। बोर्ड हा कहे है कि कक्षा के अनुसार संसाधन सामग्री दे के बेरा मा देवाए जाही। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में रूफटॉप सोलर लगैया उपभोक्ता मनला उपराहा बिजली के फायदा मिली। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी हा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डहर ले तय करेगे बायबैक दर ला लागू करे के प्रक्रिया शुरू कर दे है। मंजूरी मिले के बाद ग्रिड में भेजे गए उपराहा सोलर बिजली के राशि उपभोक्ता मन के अवैया बिजली बिल में क्रेडिट के रूप में मिली। नेट मीटरिंग व्यवस्था ले उपराहा बिजली के हिसाब राखे जाही। छत्तीसगढ़ ही समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल मा घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: आओ अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। प्रदेश भर में आगजनी की घटना ले बाचे बर बहुमंजिला भवन कोचिंग सेंटर और संस्थान में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के जांच ला तेज कर देगी है। एक कड़ी में दुर्ग जिला में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा और SDRF की टीम 40 ले ज्यादा कोचिंग संस्थान के निरीक्षण करें। ये दौरान कतकोन कोचिंग संस्थान में अग्निशमन यंत्र अलार्म और आपातकालीन निकास व्यवस्था में कमी पाए गए है। जिला सेनानी नागेंद्र कुमार सिंह बताएं कि संबंधित संस्थान ला कमी ला दूर करे बर हफ्ता भर के समय देगी है। दे गे बेरा मा सुधार नहीं होए मा कोचिंग सेंटर ला सील कर दे जाही। बस्तर के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज ले देव स्नान पूर्णिमा के साथ शुरू हुआ थे। ये दौरान जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और माता सुभद्रा के वैदिक विधि ले महाभिषेक हो ही। एकर बाद अवैया 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ बलभद्र और माता सुभद्रा के मंदिर के कपाट बंद कर दे जाही। सरगुजा जिला के रामगढ़ में आज ले 2 दिन के रामगढ़ महोत्सव शुरू हो गए है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल है ये महोत्सव के शुरुआत करें। उद्घाटन के मौका में स्कूली लड़का और स्थानीय कलाकार मन सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुति दिन। कार्यक्रम में श्री अग्रवाल है कहीं कि रामगढ़ सिर्फ सरगुजा के नहीं फिर पूरा देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के केंद्र हवे। राज्य सरकार है इला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में स्थापित करे बर सरलग प्रयास करा थे। डिजिटल माध्यम के जरिया छत्तीसगढ़ पर्यटन ला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान दिवाए बर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल डहार ले 26 ले 30 जून तक इन्फ्लुएंसर मीट और फैमिलियराइजेशन टूर के आयोजन करे जावत है। जेमा राज्य के आने आने जिला ले चुने प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मन छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल के भ्रमण कराए जावत थे। ए दौरान प्रतिभागी मन मैनपाट और सतरेंगा के भ्रमण करत हैं। रायपुर जिला के धरसीवा विकास खंड के ग्राम सम्मान

0: बेरा ले अवैध कब्जा रहीस। प्रशासन डहर ले सबो कब्जाधारी मन ला नोटिस जारी करे गे रहीस। कार्रवाई के बाद सबो कब्जाधारी मन के व्यवस्थापन जिला प्रशासन डहर ले नवा रायपुर के सेक्टर 30 के आवास मा करे जावत थे। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया दो दिन तक बस्तर संभाग मा एक दो जगह मा मध्यम ले भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। अवैया 24 घंटा के दौरान सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिला मा गरज चमक के संग वर्षा होए के संभावना है। उन्हें कुछ एक जगह में आकाशीय बिजली गिरे के चेतावनी दे गए हवे। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी हां आकाशवाणी समाचार ला बताएं कि अवैया 6 दिन तक प्रदेश में वर्षा के गतिविधि बढ़ी। उन्हें उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बने वर्षा होए के आसार है। यही बीच कबीरधाम जिला के बरकोही बांधतीर आकाशीय बिजली गिरे ले एक जन किसान के मौत हो गई। वर्षा ले माचे बरोहा पेड़ के नीचे खड़े हो गए रहीस। अब थोरकुन समाचार सार मा। बलरामपुर जिला के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटा गहना मा सोवत खानी सांप काटे ले एक झन्नोनी औसियान माई लोगिन के मौत हो गए। कोरबा जिला के कटघोरा वन मंडल के जटगा वन परिक्षेत्र के धवलपुर जंगल मा हाथी के हमला ले एक जन ग्रामीण के मौत हो गई। और मुंगेली जिला में जरहा गांव पुलिस हा ऑपरेशन बाज के तहत गांजा के अवैध खेती करे के मामला में एक जन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। पुलिस हा आरोपी के कब्जा ले लगभग 3.5 किलो वजन के गांजा के 3 टन पौधा घलो जब्त करे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बच्छर पूरा होए के मौका में आज ले सहकारिता सप्ताह मनाया जावत है। आज कबीर जयंती हरा ए मौका मा प्रदेश भर मा कतकुन कार्यक्रम करे जावत थे। और बस्तर के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज ले देव स्नान पूर्णिमा के संग शुरू। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये
2: जगदलपुर आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने शौर्य पुरस्कारान् प्रायच्छत्। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला आदय पुरस्कृता। हरियाणा राजस्थान मध्ये दशकत्रयेभ्य विलंबिताया यमुना जल विभाजन विवाद से अद्य समाधानम जातम। सर्वोच्च न्यायालयेन राम मंदिर दान प्रकरण से कथित वित्तीय अनियमितताया न्यायालय निरीक्षण अन्वेषण से त्वरा याचिका निराकृता। सीबीएसई इत्यनेन सांप्रतिकाय दशम वर्गाय त्रिभाषा नीति नानिवार्येति घोषिता। सर्वकारः व्यापारस्य सुगमतां प्रावर्धयितुं परिष्कार सूचना तंत्रं प्रवर्तयति। एसआईआर इति स्वस्तनात् देहल्यां समारप्स्यते। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकांतः यूएस ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने 26,000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्य बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्र बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षी बलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह बंद्रा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहेंदर पाल सिंह च अतिविशिष्ट सेवा पदकं प्राप्तवन्तः। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वर्यः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणः च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे अष्टदिनाङ्के राष्ट्रपतिभवने रक्षा अलङ्करणसमारोहे प्रथमचरणस्य शौर्यपुरस्कारान् प्रदत्तवती।

0: मासस्य सप्त दिनांके प्रकाशिता भविष्यति।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुबरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन स्वस्तनं यावत् उपहिमालयीय पश्चिम बंग क्षेत्रे सिक्किम प्रदेशे च प्रचण्डतः अतिप्रचण्ड तरायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। बुधवासरं यावत् अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इत्यपि ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं कृतम्। फीफा विश्वचषक क्रीडायाः नॉकआउट इति चरणे संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस नगरे प्रथमायाः नॉकआउट इति स्पर्धायां कनाडा देशः दक्षिण अफ्रीका देशं 1-0 पराजयत्। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबि श्रीकान्तः यूएस ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान् इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम में सुनिए भतरी नाट गीत। कलाकार हैं मगन राम कश्यप और साथी।

Bosana re ma.

Maya me follé.

0: हाँ, अभी आप सुन रहे थे मगनराम कश्यप और साथियों का गाया भतरीनाथ गीत। आकाशवाणी का ये चित्तरपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। विज्ञापनों के बाद प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
8: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
7: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
8: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
7: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
8: क्यों?
7: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
9: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
10: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
11: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
10: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
11: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
10: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
11: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
9: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
12: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
11: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
12: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
11: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
12: आकाशवाणी से।
9: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
13: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। कबीर जयंती के मौके पर सोनपैरी में आयोजित महोत्सव में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। कोयला खदानों से निकलने वाले पानी को कोल इंडिया अब कोल नीर ब्रांड नाम से बाजार में बेचेगा। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर के पास सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधानों का लाभ लेकर अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे।
14: बिजली बिल ज्यादा आया है उनके लिए एक मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना चला रहे हैं। अभी 31 जून तक उसका समय था, उसको आगे 3 महीना के लिए बढ़ा रहे हैं।

0: तो जिनका भी बिजली बिल ज्यादा आया होगा पुराना कोरोना के समय से, तो आप लोग पंजीयन कराइए, तो आप लोगों का पूरा सरचार्ज माफ करेंगे और एक टाइम में आप मूलधन भी पटाते हैं तो उसमें भी 10% का रियायत है। तो हम लोग 757 करोड़ रुपया बिजली बिल माफ कर रहे हैं। तो किसी का भी अगर इस तरह से ज्यादा बिजली बिल होगा तो उस योजना का लाभ ले सकेंगे। 31 जून को फिर 3 महीना के लिए बढ़ा रहे हैं।
1: आज कबीर जयंती है। इस मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर सहित अन्य जगहों पर भी आज कबीर पंथ के लोगों ने रैलियां निकाली। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज संत कबीरदास की जयंती के अवसर पर रायपुर के सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नाटक के राज्यपाल श्री गहलोत ने कहा कि संत कबीर ने सत्य, समरसता, मानव सेवा और सद्भाव का जो संदेश दिया वो आज भी पूरे समाज और राष्ट्र के लिए पथ प्रदर्शक है। वहीं मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संत कबीरदास के आदर्श जाति पंथ से ऊपर उठकर सामाजिक सद्भाव, आत्मचिंतन और लोक कल्याण की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी संबोधित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर आज से सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है। 6 जुलाई तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज पहले दिन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर में सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक पंडित वामनराव बलिराम लाखे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा और उपाध्यक्ष अभिनेश कश्यप मौजूद थे। वहीं सहकारिता सप्ताह के तहत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के विद्यार्थियों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। कोरबा जिले में कोयला खदानों से निकलने वाले पानी का उपयोग अब पेयजल के लिए किया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड ने कोल नीर परियोजना के तहत खदानों के माइंड वाटर को शुद्ध कर बोतलबंद पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। अधिकारियों ने बताया कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 46 खदानों में लगभग 1280 लाख घन मीटर माइंड वाटर उपलब्ध है। अब इस जल को अत्याधुनिक RO और जल शोधन तकनीक से शुद्ध कर कोल नीर ब्रांड नाम से बाजार में उतारा जाएगा। योजना के तहत 20 लीटर की बोतल मात्र 5 रुपए में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कोल इंडिया की 4 प्रमुख कंपनियों BCCL, CCL, SCCL और MCL में माइन वाटर बॉटलिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तय बायबैक दर को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंजूरी मिलने के बाद ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त

0: से परंपरा अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महाभिषेक किया गया। इसके साथ ही भगवान का अंसर काल शुरू हो गया जो 14 जुलाई तक चलेगा। इस अवधि में श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। 25 जुलाई को एकादशी के साथ बस्तर गोंचा पर्व सम्पन्न होगा। सरगुजा जिले के रामगढ़ में आज से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव शुरू हो गया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि रामगढ़ केवल सरगुजा ही नहीं बल्कि पूरे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने बताया कि महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रदेश भर में आगजनी की घटना से बचाव के लिए बहुमंजिला भवनों, कोचिंग सेंटरों और संस्थानों में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की जांच तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा एसडीआरएफ की टीम ने 40 से अधिक कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन यंत्र, अलार्म और आपातकालीन निकास व्यवस्था को लेकर अनियमितता और कमियां पाई गई हैं। जिला सेनानी नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित संस्थानों को कमियां दूर करने के लिए हफ्ते भर का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में सुधार नहीं होने पर कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया जाएगा। रायपुर जिले के धरसीवा विकास खंड के ग्राम सम्मानपुर नकटी में आज राजस्व, पुलिस और नगर निगम के अमले ने कार्रवाई करते हुए लगभग 9 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर बने 77 अवैध मकानों को हटाया। अधिकारियों ने बताया कि इस शासकीय भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा था। प्रशासन द्वारा सभी कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए गए थे। कार्रवाई के बाद सभी कब्जाधारियों का व्यवस्थापन जिला प्रशासन द्वारा नवा रायपुर के सेक्टर 30 स्थित आवासों में किया जा रहा है। डिजिटल माध्यमों के जरिए छत्तीसगढ़ पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा 26 से 30 जून तक इन्फ्लुएंसर मीट और फेमिलराइजेशन टूर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जा रहा है। इस दौरान प्रतिभागी मैनपाट और सतरेंगा का भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही रामगढ़ महोत्सव के माध्यम से प्रतिभागी छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, लोक कलाओं और ऐतिहासिक विरासत से भी रूबरू हो रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अगले 24 घंटों के दौरान सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 6 दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। वहीं उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के आसार हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटा गहना में सर्पदंश से एक बालिका और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल के जटगा वन परिक्षेत्र के धवलपुर जंगल में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई। और मुंगेली जिले में जरहा गांव पुलिस ने ऑपरेशन बाज के तहत गांजे की अवैध खेती करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। कबीर जयंती के मौके पर सोनपैरी में आयोजित महोत्सव में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। कोयला खदानों से निकलने वाले पानी को कोल इंडिया अब कोल नीर ब्रांड नाम से बाजार में बेचेगा। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: एख्यार हुनके बोरा ने भोर और खातो का जाए बोले घरे सोंगा और आम के बिकतो का जाए बोले भोरुन बातर एख्यार तु लेम्स ने ने हुसन बोले अबे कल मशीन में न मरली
1: सत्य बल
0: सा हो तो मैं देखे से दखुंच लागुन बात ने दादी दी मन एबे खिंडी खेती नहीं नगत हिसाब ने हुआ एटले कल मशीन मन छ लागुन बात नुआ नुआ हुआ एटले खेती कमानी खूब मन
1: कर सो सत्य आबिया
0: तो पनकु
1: हाँ दादा
0: तो आमी दादी मन के नगत नगत कल मशीन मंचो जोन फायदा मन आई गोट मन के सांगलू ने
1: हाँ हाँ।
0: मात्र मोनरा ने और बल दादी मन का नगत नगत असन जहला मना से ये हाँ। मन बल सुनो
1: आले आले सुनो
2: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वेंट सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सी तोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का ना गाड़ी 1% जीएसटी मौला तेने दोर किता अदेन के और सुबेर कम टैक्स त गाड़ी बने मास मंता
0: जीएसटी तो पन को
1: हाँ दादा
0: ए दख नगत नगत जहला मन के आमी दा दिन में लगे अमरो दिलु
1: हाँ
0: ने मातर दख मन के कमानी धमानी चे गोड बात संगे संगे नहीं आमी समय हिसाब ने कविता कहनी गीत गोविंद के बले दा दिन में लगे
1: अमरो से
0: आई की नहीं
1: हाँ
0: तो असनी ची दका जी मोनरा ने आसे गोटो कविता दा दिन मन का जी बल्ले माए चो माया ने
1: हाँ
0: तो एक कविता के सांग सो श्रीमती नीता पांडे तो मैं बोलते ले ए कविता के आमी दादी मल गमर हूं दिया और संगे संगे आमी बोले सुनो
1: आले आले सुनो काय
6: मोचो बस्तर चो दादा दीदी मन सियान सज्जन मन तुम सबके मोचो बाटले जुहार। मैं नीता पांडे सबचो पूरे भल भी कविता धरुन इले से तो मोचो कविता आए मोचो बस्तर चो लाड री आया। मोचो बस्तर चो लाड री आया काय सांगें दे तुचो माया वरदान देऊन बस्तर के दिलीस तुचो अचराचो छाया एमोचो दंतेश्वरी आया गोटुक राजा अन्नम देव तुचो परम भगत ए आया तुचो परम भगत राजा को भक्ति के राजा चो भक्ति के आज जानला सबू जगत ए आया जानला सबू जगत मोचो बस्तर चो लाडरी आया काय सांगिंदे तुचो माया वरदान देऊन बस्तर के दिलीस तुचो अचराचो छाया ए मोचो दंतेश्वरी आया ए मोचो दंतेश्वरी आया अन्नम देवचो ऊपरे होली तुचो किरिपा अन्नम देवचो ऊपरे होली तुचो किरिपा ए आया होली तुचो कृपा राज दे तुका जे रेंगते अमरलिस नदी टटे ए आया अमरलिस नदी टटे धुरला फसली पायचो पैड़ी ने राजा थेबुन उल्टुन दिलो नदी रेटे ये मोचो लाडली आया काय सांगेंदे तुचो माया वरदान देऊन बस्तर के दिलीस तुचो अचराचो छाया चिन्हा देऊन पायचो चिन्हा देऊन पाय

चो दखालिस ममता चो माया, आया आया बलुन गागुन भाती, हाथ जोड़ुन राजा होऊन दिलो थाळा, हरी खोऊन आया मोचो दंतेश्वरी, जगाचो नाम दिलिस दंतेवाड़ा, हाँ जगाचो नाम दिलिस दंतेवाड़ा, ए मोचो लाडली आया काय सांगेंदे तुचो माया, वरदान देऊन बस्तर के दिलिस तुचो अचराचो छाया, दिलिस तुचो अचराचो छाया, ए मोचो दंतेश्वरी आया, ए मोचो दंतेश्वरी आया। चो तो मुचो दूसरा कविता आए, धन धन मोचो आया दंतेश्वरी, धन धन मोचो आया दंतेश्वरी, धन धन मोचो आया दंतेश्वरी, धन धन आया तुचो बस्तर चो माटी, धन धन आया तुचो बस्तर चो माटी, संकनी डंकनी ने आया, शंकनी डंकनी ने आया, बोही से बस्तर चो गंगा, जोन थाने नहाऊन मन होन जाए से चंगा, मन होन जाए से चंगा, धन धन मोचो आया दंतेश्वरी, धन धन आया तुचो बस्तर चो माटी, धन धन आया तुचो बस्तर चो माटी, तुचो बस्तर चो माटी। कुटुम सर तीरथगढ़ कितरो सुंदर, ए आया कितरो सुंदर, कुटुम सरचो गुफा लागे से कितरो नगद, कुटुम सरचो गुफा लागे से कितरो नगद, दखुन भाती मन होन जाए से गदगद, संगमरमर चो पखना और अंधरी मछरी, संगमरमर चो पखना और अंधरी मछरी, दीने बले छाउन रहे से अंधारकारी, धन धन मोचो आया दंतेश्वरी, धन धन आया तुचो बस्तर चो माटी, धन धन आया तुचो बस्तर चो माटी। तीरथगढ़ ने खल खल खल बोए से पानी चो धारा, तीरथगढ़ ने खल खल खल बोए से पानी चो धारा, खाले उतरुन दखुन दिले लागे से असन जसन, महादेव चो पाए धोन हरिक होए से बसुन धरा, धन धन मोचो आया दंतेश्वरी, धन धन आया तुचो बस्तर चो माटी। शरण शरण शरण आया, शरण शरण शरण आया, शरण तुचो बस्तर चो माटी, तुचो माटी ने उपजे से आया सोना असंधान, तुचो माटी ने उपजे से आया सोना असंधान, खुबे हरिक लागे से आया दखुन तुचो बस्तर चो शान, दखुन तुचो बस्तर चो शान, धन धन मचो आया दंतेश्वरी, धन धन मचो आया दंतेश्वरी, धन धन आया तुचो बस्तर चो माटी, धन धन आया तुचो बस्तर चो माटी। तो मचो तीसर कविता आए, मिलुन मिसुन बंचो रक्षा करवा, आजी बंचो रक्षा कर तो काजे आमी सभी मिलुन मिसुन करवा, हुंचके मैं लिख तोर कोशिश कर ले से, तो मचो थीम आए मिलुन मिसुन बंचो रक्षा करवा, मिलुन मिसुन बंचो रक्षा करवा, मिलुन मिसुन बंचो रक्षा करवा, गच खुट के नी काटतो राय बलून गाँव गाँव ने सांगवा, मिलुन मिसुन बंचो रक्षा करवा, गच खुट के नी काटतो राय बलून गाँव गाँव ने सांगवा, रंग रंग चो झाड़ झड़ूका लगाऊन पर्यावरण चो सुरक्षा करवा, यह दादा दीदी मन बंचो रक्षा करवा, हाँ बंचो रक्षा करवा, हाँ बंचो रक्षा करवा। पीला छीला सियान सजन, पीला छीला सियान सजन, सब चलासुत मोटर गाड़ी, फैले से धुआं होए से प्रदूषण, फैले से धुआं होए से प्रदूषण, नी लगाओत कोनी जंगल झाड़ी, बरसा नहीं होए से घाटा धान पान के भारी, बरसा नहीं होए से घाटा धान पान के भारी, भूई ने गरम बढ़ ली जानू छद विसोत होसत नर नारी, भूई ने गरम बढ़ ली जानू छद विसत विछत होसत नर नारी, मिलुन मिलुन मिसुन बंचो रक्षा करवा, मिलुन मिसुन बंचो रक्षा करवा, गच खुट के नी काटतो राय बलून गाँव गाँव ने सांगवा, इहा मोचो बस्तर चो दादा दीदी मन, इहा मोचो बस्तर चो दादा दीदी मन, कसम खाऊन गच खुट लगाऊन बंचो रक्षा करवा, घरे घरे जाऊन नारा लिखून जन जन के जागरूक बनावा, घर बाड़ी ने गच खुट लगाऊन मधुवन नसन सजावा, घर बाड़ी ने गच खुट लगाऊन मधुबन नसन सजावा।

0: मिलुन मिसुन बंचो रक्षा करवा, गज खुटके नी काट तो राय बलून, गाँव गाँव ने सांगवा। जंग रंग रंग चो झाड़ झड़ूका लगाऊन, पर्यावरण चो सुरक्षा करवा। रंग रंग चो झाड़ झड़ूका लगाऊन, पर्यावरण चो सुरक्षा करवा।
1: सुंदर
2: पण को
3: होय दादा
2: धके काय म्हणजा कविता रली ने बोललो ने आमके रान मन के कसन बचातो राय कसन बूटा मडात राय मतलब कविता मन कहनी मन ने वाल नहीं कितरो ज्ञान चो गोठ मन रहे से
3: सत्य
2: और कविता ने सत्य सांगला कि आमके गज खुट के मडातोर छे
3: हां
2: ने मात्र धके

0: हाँ तो चेतमन दादा,
1: हय ना
0: ये काय नंगत गीत के तुए भाई सुन लू गीत कुरी हमने चितालीस।
1: हाँ मैं तो चिताले मात्र तो दादी मन बोल चिताला होती बोल एक नाव के संग दे
0: ये गीत कुरी हमने आत जलधर और उनचो संगवारी मन
1: तो द कितरो नंगत गीत के मन सुनाला मात्र द गीत संग संगे हमचो जातो समय बले होली।
0: हाँ
1: तो मैं मोटरा गड़रा के लगे मोटरा बांधे दे अले तु विदा मांग।
0: तो बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो जमाए दादा दीदी सियान सजन और संग जोहरिया संगवारी मन के मैं पनकू
1: और मैं चेतमन
0: आमी दोनों करूं से
1: राम
0: राम, राम। राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं, लीजिए सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव।

0: बोलो ने बे कहा है काम आए बोले फूल लगाऊं दिले ने काम होए से
1: हाँ
0: जाऊ
1: सत्य
0: बोल नहीं लागे
1: नहीं लागे नहीं लागे आगे दख असनीची दुख बिया बर पंच न्यूता है बोलो ने नाम के साइकिल ने कितरो लापी दूर जाऊ गले लागते रे
0: हाँ
1: ने नल खबर पठाऊं
0: हाँ
1: मात्र एबे दख लापी दूर आसे खूबे दूर बोले हुनके डंडी कामी मोबाइल ने असन फोन लगाऊं मात्र सांगुन देऊ से ने
0: हाँ
1: तो असनी ची जसन की आगे दखा मी चुआ नाराज पानी पीते रहूं ने नदी
0: हाँ,
1: नाराज
0: हाँ,
1: पानी पीते रहू मात्र
0: हाँ,
1: दख एबे समय बदलती ही ली
0: हाँ,
1: एबे दख नल मन नल टेंडा मन होली
0: हाँ,
1: और नल टेंडा मन पाच तो एबे दख घरे घरे बोले नल बीती मोटर मन को लगा ला सर
0: लगा ला
1: ने
0: सत्य है हाँ,
1: बोलो ने ये का समय बदल तो हिसाब ने सपाई सीखते जा सर
0: हाँ अरे वे हुन पानी निकर तो बीती बोल साफ कर तो बीती आस
1: हाँ
0: अच्छा बनाऊन पीयू तो
1: पीऊ तो काजे दख हुनी पानी के दख आगे असनी पानी पीऊन मातिर आमी पजात बोल रू मातर समय हिसाब ने पानी मन बल्या पर खिंडी का नगत नहीं आए नंदी नारा चुआ छो ने
0: हाँ
1: हुन
0: हाँ
1: चलाउन मातिर दख आजी नगत पानी पीऊ तो काजे बले आजकल हुन फिल्टर काय काय बोलू से नहीं सुसन बीती मन जिनिस मन बला से बोलो
0: हाँ
1: ने ये आमी दखुन दखुन सीखू से
0: सीखो सत्य है
1: दख आमी जहाँ रेडियो भीतर ले नवा नवा वाट मन सांगूस नहीं जे के सुनून भात दादी मन असनी लेख पारी कर सोत
0: हाँ हाँ
1: तो असनी आजकल दख टीवी टीवा बल जसन दखुन भातिर नहीं हुमन आजकल सीखू लाय होय से
0: होय से सत्य है
1: ने
0: और देख ये समय संगे संग नहीं ये मन के काम बुता नहीं आन ले बल नहीं पड़े
1: नहीं पड़े नहीं पड़े
0: फोन होली से अबे फोन को बल हमी काम ने नहीं करूं
1: हाँ
0: अबे फोन ने पैसा बल पटाऊ को ऐसे
1: होय से सब बेबानी
0: हाँ
1: देख आगे आमी बैंक ने कई पैसा जमा करता है बोले बैंक जाओ
0: बैंक
1: लागे
0: जाओ
1: ने
0: हाँ
1: कई व्यवस्था नहीं है बोले देख साइकिल ने जाऊं नोएल फिर हिंडते बल जाऊ लाई लागे
0: हाँ
1: तर एबे डंट की ना दखुनी लगे गांव चो नहीं कोनी बल लेखक बोल देना मचो ये खान पैसा डाल दी वासन हुन लग पैसा रले हुन धाने डालन दे
0: हाँ
1: ने
0: सत्य है
1: तो
0: हाँ
1: बल दखते दखते नहीं ये भी हम छो कितरो जो नाम छो जीवना छो जोन जीवन शैली हम जेके बोलूं से नहीं हम जो जीव तो जो तरीका है कसन जीव तो रहा है हम के कसन रह तो रहा है
0: हाँ
1: नहीं कसन उठ तो रहा है बस तो रहा है ये
0: हाँ
1: सब बानी नहीं दिन हिसाब ने बे खिंडी का बदलते ही ली बल्लो ने ये बे जोन बाढ़ती चो जुगा है नहीं
0: हाँ हाँ
1: ये जुग चो हिसाब ने बे चलतो रोली
0: सत्य बल सिद्धांत
1: ने
0: ये हाँ नुआ नुआ वो आठ मन के सीखू खोए से
1: हाँ
0: अन्य सीख ले नहीं हुए
1: नहीं हुए नहीं हुए
0: नुआ जुग आए
1: हाँ
0: तो उसन हिसाब ने आम केवल रोक लागे से
1: लागे से दको कि आमी दखुस नहीं ना आहे नुन जो कुर्ता नगत लागे से ना ने फिर अच्छा दखे से बोले नहीं हुनके उसने भी ती मिरे ते बोलते घेंतर हुए से
0: हाँ
1: ये बोले आम के काहे कि जीवन शैली जे बोलुस नहीं आमी दखुन दखुन ये सीख तो वाट मन है
0: वाट है सत्य बल सिंह दादा
1: तो ये तो होली ना पन को
0: हाँ
1: दादी मन के आमी गोट के सुना लू मात्र आमी लगे और बोल मोटा नगत नगत गोटा से अले मन बोले सुनो
0: आले आले सुनो
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
5: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की तकी सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम मायना दुमिद मिंदे ई लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटिन ब्लॉक इतके ओंडले कटा बंडाकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट

0: सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: पनको
2: हाँ
1: ये नगत नगत गोट मन के आमी दादी मन लगे अमराऊं दिलू
2: हाँ
1: मातर दख समिया हिसाब ने हम दादी मन के और बल नगत गोट मन के सुनाते रहो
2: हाँ तो आम चलक गोटक भेट वार्ता से कुष्ठ चीना बना
1: हाँ
2: ये मन आत श्री शिवनारायण पांडे
1: हाँ
2: और ये मन संग भेट कर सोत सी आर कश्यप
1: आले तो ये जो न ये गोट के हम दादी मन लग जो भेट वार्ता है
2: हाँ
1: ये की आमी अमराऊं दिलू ने
2: आले आले अमराऊं
3: रेडियो सुन तो सपाय लोग के जुहार तो दादा दीदी मन असन आए कि आमी तो कैक लोग संगे भेटघाट करोन कैक असन ज्ञान ध्यान जो गुड बात के आमी ताले सुनाते बोल रहा हूँ से और जानाते बोल रहा हूँ से असनीची आमचो स्टूडियो ने आजी अमरला सोत ये दादा मन एमन के मनचो राग के सुनन तुम्बल चीता से क्योंकि एमन बोले जाना चीना दादा तो दादा तुमके सब लागे जुहार ना
4: मचो बाटले बोले तुमके आरो रेडियो सुन तो जमाए लोग के खूबे खूबे जुहार
3: तो तुमचो तो सबली पहिल तुमचो नाव सांगून दियास
4: मचो नाव शिवनारायण पांडे आहे मांतर यही रेडियो स्टेशन लागून मचो नाव कोल्यावल पडली
3: तो दख कोल्या दादा असं नाही की दख आम्ही तो काम धाम करू से जिने काम धाम संगे संगे कै कसन खानपान बोल होय से आमचो और आमचो खानपान अच्छा होले देह पाए बोल अच्छा रहे से तो असन काय होय से की कै कसन बीमारी मन बोल झोंटे से मांतर दख असन ए भी पढ़ा लिखा होते जास होत लोग मांतर कै कसन बीमारी के गाँव पारा ने लोग उतलो नहीं बोल जानोत और जान ले बोले उनचो सलाह बोलने कसन उन चलो बाचुक कुआई के बोल उतलो नहीं जानो तो ये सब गुड बात के करतो का जाए अमर लो से ने तो मैं बोले जाने से कि तू ही कुष्ठ रोग लेखिनिक जाना चीना आसन बोलो इनके जानकार आहास तुम्ही
4: हाँ।
3: तो कुष्ठ रोग का है ये कसन होए से खिनिका जी सांगुन दिया खिनिक
4: दख कुष्ठ रोग के जान तो का जे ये चो पुरखती बेरा लेखिंडी के चो गोट के मूर्ख रुक लागे से
3: हाँ हाँ
4: जसन की ये मंजपुर ने लोग जन्म धरलु हुसने चे कितरो बीमारी वाले सांगे सांगे जाओते गेली
3: आईची
4: मानतर कितरो बीमारी मंचो खोजाकारी मन दवाई वसो खोजला और हुन के नानी सुनी बीमारी चो नाव दिला मानतर मूर ने कुष्ठ रोग चो कहीं दवाई खोजुक नी सकलो लागुन कोनी एके पाप चो फल कोनी शराब चो फल कोनी देवभूत चो फल असन एके बोलुन भाती समाज ने गाँव पारा ने ये चो बीमारी चो खूबे डर बनाऊं दिला
3: अच्छा
4: तो ये काया है कि ये कि आमे सुन लो ने जान लो ने पढ़ लो ने काया है कि पुराण ने बाइबिल

0: जुना बीमा खुबे नगद सवाल है। कुष्ठ रोग कके बले हो सके, तुमके बले हो सके, मौके बले हो सके, कके बले हो सके, जे चो देह ने बुलुआत रोग प्रतिरोध क्षमता बल्लो ने बीमारी ले लड़तो ताकत नी है, हुंचो देह ने कुष्ठ चो जोन बैक्टेरिया कीड़ी जे के बुलुआत माइको बैक्टेरियम लेपरा हुंचो देह ने गेलो ने और हुंचो शरीर ने देह ने रोग प्रतिरोध क्षमता कम आसे तो हुनके हो सके। और जेचो देह ने रोग प्रतिरोध क्षमता बीमारी ले लड़तो ताकत आगर आसे हुनके हुन बीमारी नी होए, हुनी काजे कुष्ठचो चीना बाना के जमाए लोग के जानतो रहे।
1: अच्छा, तो ये कुष्ठ के गुचा तो काजे समाज ने और गांव पारा ने काय काय चिपा एबे एबे बला से जाले दादा?
0: दख ये बले गोटो खूबे बड़े सवाल है। आजी बले काया है कि कुष्ठ चो असन काई जसन की कितरो बीमारी मना से जेचो टीका सूझी नहीं सकली।
1: हाँ,
0: और हुन बीमारी हो चे नहीं बोलते टीका लगाऊं दिले जीवता जीव भर हुन बीमारी नहीं हुए।
1: अच्छा,
0: मानतर कुष्ठ बीमारी चो आजी तक खोजाकारी मन कोनी टीका बनाऊक नहीं सकला से टीका चालू है चो नी होली से पहल गोट ये गोटक चीपा है। दूसर चीपा ये आए कि कुष्ठ बीमारी होले आजी बले मुर ने पता लगले तो कम से कम 6 महीना दवाई खाऊक पड़ू है।
1: अच्छा,
0: और कुष्ठ जीतलो पाछे बरक्कार दवाई खाऊक पड़ू है। और लोग मंजी गते छांडून देवात नहाले बोलुआत कि मुर ने तो मोके कहीं दुखा सुखा नहीं है। ये कुष्ठ बीमारी इनका है मुर ने कहीं दुखा सुखा नहीं हुआ है, पाचे नस नाड़ी झोंकलो ने पूरा सुनपन पूरा देह ने पाए ने हाथे ईलो ने हुदल नाए हाथ पाए पाचे उन सुद नहालो लागून कहीं घाव दाव होलो ने हुन दला इलाज का जे हुआ। तो ये गोटक समाज ने लोक चुमंजी आजी बोले कुष्ठ की गुचा तो काजी खूबे चीपा गोट आसे।
1: अच्छा, तो दादा ये सांगा जसन कुष्ठ रोग चो चीना बना काय काय हो जाना?
0: कुष्ठ रोग चो चीना बना दक सबले

0: दुखानी होलो लागुन, मुर ने परेशानी नहीं होलो लागुन, लोग दूसर क्रीम मन के लगौत, काय काय के लगौत, पाचे नस नाड़ी के झोंकलो ने हाथ पाए के नशा तो बेरा हुआ तो हुन तो काय है। बीमारी तो दवाई खाद ले गारंटी ने छांडे दे, मांतर जन सुध बू जऊ रहे से पता नहीं चल तो बीती, हुन नहीं बोहड़लो ने जीवता जीव भर ध्यान नहीं दिलो ने घाव हो तो डर रुआ है। तो ये चीना बाना बेरा चे दवाई करतो रहा है, मुर ने चीना बाना बेरा और केबे केबे काय हो से देह एकदम लाल असन बिल्कुल तेल लगा लो असन चिकन बोले दखा दे हुआ है। ये और लोग झटके चीता उग सकून हुआ दुखे से बोलते रुआ तो ये केवल ध्यान दे तो रहा है तेबे कुष्टचो इलाज होए दे और हुन अच्छा होए दे। तो ये चीना बाना मन के गाँव करी मन सुनोत और एक धरोत और कुष्ट ने मूर ने चे इलाज कराओत।
1: हाँ तो कोलिया दादा, कुष्ठ रोग चो कितरो प्रकार हुआ है और ये चो इलाज काय है?
0: हाँ तो ये बोले जानतोर जरूरी है, कुष्ठ रोग के खोजाकारी डॉक्टर मन इलाज चो हिसाब ने दुई प्रकार ने बाटला से, जेके बोलुआ गोटक असंक्रामक कुष्ठ रोग और गोटक संक्रामक कुष्ठ रोग, एके बोलुआत पासी बेसिलरी नहाले पीबी और मल्टी बेसिलरी नहाले एमबी, दुई प्रकार चो कुष्ठ रोग हो से इलाज चो सुविधा हिसाब ने एके बाटला से। और ये चो इलाज जेके बलतर हो से एमडीटी नहाले बहु औषधि उपचार, ये थाने तीन किस्म चो गोली रहे से उन मूर कर तो बेरा महीना दिन चो पाकिट के उन तीन किस्म चो खाऊक पड़ुआ है, हुन चोले फिर रोजे दुई किस्म चो, फिर महीना पूरले तीन किस्म चो असन करुन भाती, ये चो इलाज एमडीटी दवाई ने हुआ है। अरे जमाए सरकारी अस्पताल ने फोकाहा ने मिलू है।
1: अच्छा हाँ हाँ, तो दादा तुम्हें इधाए ये सांगा कि कुष्ठ रोग होले यहाँ पाए काय काय नुकसान हुआ है और ये चोले वास्तु काचे काय काय करुक पड़ुआ है?
0: कुष्ठ रोग होलो ने मूर ने दख कहीं नुकसान नहीं हुए, मूर ने पता लगली मूर ने दवाई गोली खाद लो तो उनके कहीं चीपा नहीं हुए, कहीं परेशानी नहीं हुए। मांतर कुष्ठ रोग पाचे जीतलो ने नस नाड़ी के झोंकलो ने, जेके आमे तंत्रिका तंत्र बोलुआ बोलो ने जोन पता चल तो बीती नस नाड़ी, हाथ ने तीन प्रकार चो नस नाड़ी के झोंकुआ है, पाए ने दुई प्रकार चो नस नाड़ी के झोंकुआ है और आँख चो नस नाड़ी के झोंकुआ है। तो ये काय होए दे उन तंत्रिका नस के झोंकलो ने अंडकी मन टेढ़ा होन जाऊआ है, नहाले आम चो कले ही खाले झुकुन जाऊआ है और पाए ने बोले हुसने होलो ने पाए ने घन घन घाव हुआ है, नहाले जुगे जीतली बोलो ने पाए बोले झुलुआ है, आँक ने चो नस के झोंकलो ने काय होए से कि आँख चो जोन ऊपर चो भौ है उन पलक बंद नहीं होए खुला रहुआ है, जे चोले काय है कि कीड़ा माकड़ा आँख ने जाऊन आँख खराब हो तो डर रहुआ है। तो ये चीपा मन हुआ है तो हुनी काजे का है कि ये चोले वास्तो काजे पाए हाथ के आईगले बचौक पड़े से सुध नहीं रहे, आईगले गरम चीज ले आम के कहीं तपलो बीती के खातो रहे, चाह बले पीऊ से तो उन गिलास ने रुमाल के धरुन भाती पियो।
1: अच्छा
0: पाए ने कहाँ काटा झीटा ने नी जाओ, काटा झीटा ने जाए से तो अच्छा चप्पल पिंदुन भाती जाओ, आँख चो मिंदी बंद नहीं हो खुला आसे तो कहाँ पटपटी चला तो बेरा आए कि लहरा ने कहाँ जातो बेरा आए तो चश्मा पिंदुन जाओ। नहाले ये काया है ये चो काजे सरकारी अस्पताल मन ने गोटोक पाए काजे MCR बोलुआत माइकर सेलुलर रबर।
1: अच्छा।
0: ये चो चप्पल बोल मिरुआ है हुन गुलगुला रहुआ है तो ये चप्पल के बोले पिंदो तेबे घाव दाओ ले बाजू खोए दे। और दूसर बड़े गोठा है कि कुष्ठ दवाई संगे संगे जे चो हाथ पाए ने असन होली से और हुन हाथ पाए के काया सीधा कर लो ने सीधा होए से अंड की मन और छांडून दिले उसने जाए से तो असन बीती के जल तेल उपचार ने बोले ठीक हो गए।
1: हाँ।
0: तो ये जल तेल उपचार जोन ब्लॉक लेवल चो जिला लेवल चो अस्पताल मन ने ये जल तेल उपचार होता चो जोन बोले काम करया डॉक्टर आए हुन सांगे दे तो हुन जल तेल उपचार के घरे सरलगा करुक पड़ू है। तो असन करुन भातिया में ये जो हाथ पाए नस्तो बीती के बचाव को लाए सकूँ।
1: अच्छा तो द कितलो अच्छा ये कुष्ठ रोग जो जानकार अस्तु।

0: अच्छा सर सर आले सांगलेस मांतर दादा मैं ये बले जाने की तुम्ही गीत गोविंद बाट गेलो नहीं होन गीत गोविंद बल तैयार करू आस लिखू बले आस और गाऊ बले आस असन तो सुनलो बोला सर दखलो बोला से तो दख तुम चो नाव जसन है तो तुम्हें उसनी तुम चलक बोले कोलिया असन कला बोला से तो असन कहीं गीत तुम चलक सुरता आसे जालखिन रेडियो सुन तो दादा दीर मुल्किन सुना दिलो ना अच्छा
1: दख ये खूबे मचो तारीफ कर लीस मानतर खिंडिक खिंडिक काया है कि गाँव चो लोग के चेता तो काजे कुष्ठ रोग के जना तो काजे कुष्ठ रोग ले बचा तो काजे मैं बेरा पस्ता असने गीत गोविंद वाले तैयार करते रहूँ है और ये गोटोक मचो पहल लिखलो बीती आया और आम मिसुन एक गाऊ रहूँ तो यही गीत के आले आम चो सुनिया भाई बहन मन सुनत
0: आले।

0: पण को
1: हा दादा
0: दाखे काय मजा गीत रली
1: हा
0: दादी म्हणतो चिताला मात्र मैं बोलत रही गीत कुरियाचो नाव के बोले तो यारक सांग
1: हा ए गीत कुरिया मन रला राजेंद्र कश्यप और उनचो संगवारी मन
0: तो द गीत सुना कितरो हरिक लागे से ने
1: हा
0: तो उसने गीत सुनते रत रहा है समय आ रलो ने मन बोले हरिक लागू है
1: लागे सत्य है
0: हाँ तो उसने ची बलतर ले गोटो गीत और से मोड़ रहा ने एक केवल दादी मल हमरा दे मन बोले गीत कुरिया के चीता और नाव के हम बोले पाछे सांगो
1: सांगो आले

0: तो पनकु
1: हाँ चेत मंदा
0: दख ई काय मंजे गीत रली ने
1: हाँ
0: और ई गीत के गौरव योगेश्वर पुजारी मंचो संगवारी मन
1: संगवारी मन
0: तो दख ई गीत संगे आमचो जातो समिया होली मैं मोटरा गटरा के सकले से अले
1: हाँ।
0: तो बिदा मा
1: तो जातो पे आमचो गांव कार्यक्रम सुन तो जम्मा गांव कारी दादा दीदी सियान सजन और संग जोहरिया संगवारी मन के मैं पनकु
0: और मैं चेत मन
1: आमी दोनों करूं से
0: जुहार
1: जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमचो गांव, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 8 बजे हैं, लोकगीतों के कार्यक्रम नानोली में सुनिए गोंडी गीत, कलाकार हैं शुक्ला और साथी।
1: लेकिन थोड़े दूर ठना।

लोकगीतों के कार्यक्रम नानोली में आप सुन रहे हैं शुक्ला और साथियों के गाए गोंडी गीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम नानोली में अभी आप सुन रहे थे गोंडी गीत। कलाकार थे शुक्ला और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीला मन का जे गोट। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। प्रस्तुति है शाहजी नाग की।

गोट कार्यक्रम सुनतो जम्मा आए पिलामन के मोचो बटले खुबे खुबे माया और लाड़ बले। पिलामन तुमन मन जानास कि पिला दायाचो जीवना ने खुबे हरी कुदिंचो रहे से और असन समयाचो सीख लो और सुन लो नंगत काम हो नाहले नंगत गोट हो एके झपके भूलकुक नी होए। असने हमचो देश ने कई जन महापुरुष मन जन्म धरला जोन मन देश के स्वतंत्र करतों ने और देश के आगे बढ़ातों ने आप लो जीवन के लगाला। पिलामन आजी मैं तुमके असने गोटोक महापुरुष चो गोट के सुनाएं दे जोन मन भारत देश के स्वतंत्र करतों ने और देश के स्वतंत्रता मिरलो पाचे देश चो एकता और अखंडता काजे खूबे काम करला। ये महापुरुष चो नाम आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश चो जमाए लोग एमन के लोह पुरुष चो नाव ले बले जान सोत। सरदार वल्लभ भाई पटेल चो जन्म 31 अक्टूबर 1875 के नाडियाद नाव चो ठान ने होली जोन गुजरात प्रदेश ने आसे। ए मन चो बाप चो नाव झवेर भाई पटेल और माए चो नाव लाड़वा देवी रहे। ए मन चो बालपन करमसाद गांव ने बीतली। यही ठान ले ए मन मिडिल स्कूल पास होन नाडियाद गांव चो हाई स्कूल ने भर्ती होन सन 1897 ने मैट्रिक चो परीक्षा पास करला। आगे चो पढ़ाई ए मन विदेश बल्ले लंदन जाऊन बैरिस्टर बल्ले वकालत चो पढ़ाई के पूरा करला। विदेश ले ये उन ए मन गुजरात प्रदेश चो अहमदाबाद शहर ले वकालत चो मूर करला।

कलच्चो काम ने एमन के खूबे बाढ़ती और सफलता भले मिरली। महात्मा गांधी चो अगुवाई ने भारत देश के स्वतंत्र करतूर आंदोलन ये समयाने चलते रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी चो काम और विचार ले खूबे प्रभावित रहो। एचो कारण हुनमन भले आज़ादी चो आंदोलन ने शामिल होला। देश ने 1917 ने फ्लेग नाव चो बीमारी और 1918 ने देश ने अकाल बल्ले भूखमरी जसन विपदा ने एमन पूरे येऊन ए समस्या के हल करतो ने आपलो देशभक्ति और कर्तव्य के पूरा करला। राष्ट्रीय आंदोलन चो दिशा ने सन 1918 ने खेड़ा सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन ने भाग धरून आपलो राजनीतिक जीवन के मूर करला। संगे संगे आपलो वकालत चो काम ने जुगे ध्यान देऊ नी सकला। 8 अगस्त 1942 के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चो बम्बई बैठक ने अंग्रेजों भारत छोड़ो चो प्रस्ताव पारित होली। आंदोलन कार्य समिति चो सदस्य हो तो कारण दूसर नेता मन संगे एमन के बले 9 अगस्त 1942 के गिरफ्तार करतोर होली। संगे संगे 3 साल चो सजा बले होली। जेल ले निकरलो पाचे ए मन चो नाव बड़े कांग्रेस चो नेता चो रूप ने होली। सरदार पटेल के 15 अगस्त 1947 ने देश स्वतंत्र होलो पाचे देश चो पहल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चो दायित्व तो मिरली। संगे संगे राज चो सूचना और प्रसार मंत्रालय चो काम के बले ये मन संभालला। आज़ादी मिरलो पाचे सरदार पटेल के गृह मंत्री चो रूप ने देश ने 562 देसी रियासत बल्लों ने राजा मंचो राज के मिसातोर चुनौती रहे। मांतर सरदार पटेल आपलो विवेक और बुद्धि ले ए राज मन के भारत देश ने मिसाउन देश चो एकता और अखंडता का जे खूबे नंगत काम करला। सन 1947 ने देश चो आज़ादी और भारत पाकिस्तान देश चो बंटवारा हो तो कारण कानून व्यवस्था और शरणार्थी समस्या के खूबे नंगत ढंग ले एमन हल करला। संगे संगे देश के कसन चलातो राय ये समस्या बले एमन लगे रहे। एचो काजे एमन गोटोक नुआ भारतीय प्रशासनिक सेवा चो गठन बले करला। हम चो भारत देश चो गुरु मंत्र आय वसुदेव कुटुम्बकम बल्ले सारा संसार गोटोक परिवार आय ये सिद्धांत के धरून देश चो एकता और अखंडता काजे खूबे नंगत काम करला। यही काजे ए मन चो जन्मदिन 31 अक्टूबर के राष्ट्रीय एकता दिवस चो रूप ने मनातोर होय से। अखंड भारत चो निर्माता और देश चो पहल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्पित गोटोक स्मारक बनली से। ये स्मारक चो नाम आए स्टेचू ऑफ यूनिटी। ये स्मारक गुजरात राज्य चो नर्मदा जिला चो केवड़िया ने सरदार सरोवर बांध लगे आसे। ये स्मारक चो ऊंचाई 182 मीटर नहाले 597 फीट आसे। ये स्टेचू चो वजन 1700 टन, पाँच चो ऊंचाई 80 फीट, हाथ चो 70 फीट और खान चो 140 फीट आसे। ये स्टेचू भितरे गोटोक लाइब्रेरी बल्ले पुस्तकालय बल्ले आसे। ये पुस्तकालय ने सरदार पटेल चो इतिहास चो जानकारी मिरे से। ये स्टेचू चो आधारशिला बरक 2014 ने ए मंचो 138वीं जयंती ने संगातोर होली और ये चो उद्घाट पुस्तकालय बले आसे। ये पुस्तकालय ने सरदार पटेल चो इतिहास चो जानकारी मिरे से। ये स्टेचू चो आधारशिला बरक 2014 ने ए मंचो 138वीं जयंती ने संगातोर होली और ये चो उद्घाट

और महान नेता मंचो जन्म हो तोर होली से। हमचो कितरोई धन संपत्ति चो नुकसान हो, नाहले जीव बले जाओ, हमके दुखी नहीं हो तो राय। संगे संगे भगवान उपरे विश्वास संगा तो राय। हमन मन के जाति पाति और नानी बड़े चो भावना ले उपरे उठून गोटकी संगे मिलून मिसून रतो राय। देश और समाज चो बाढ़ती ने जित्रो बले छेका ऐसे असन छेक तो विचार ले हमके लड़ूक सिकतोर आए। पीला मन तुमन मन तो जानास कि लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आपलो जीवन ने इत्रो महान और बड़े काम करला कि हुनमंचो ऊपरे कई ठन किताब बले लिखतोर होली से। जसन द मैन हु यूनिफाइड इंडिया एके लिखला सोत बी कृष्णा, पटेल ए लाइफ एके लिखला सोत राजमोहन गांधी, भारतीय राज्यों का एकीकरण ए किताब के लिखला सोत बी पी मेनन, भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल एके लिखला सोत बलराज कृष्ण, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन और कार्य एके लिखला सोत पुरुषोत्तम दास सगी। पिला मन तुमन मन सुनलास इत्रो महान नेता चो बारे ने। मानतर ये महान नेता 15 दिसंबर 1950 के 75 साल चो उम्र ने हमके छाड़ून ये संसार ले विदा धरला। तो पिला मन आज ये सरदार पटेल चो गोट रहे। मानतर इतलो नंगत गोट के सुन लो पाचे दखा मन बले हरी खोए से, और मन हरी खोलो ने सुनुक भाई से गोटोक गीत। तो मैं बोलते रहें आले गोटोक गीत के सुनूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीला मन का जे गोठ। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। प्रस्तुति थी साहजी नाग की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 8:45 होने को है समाचार संध्या। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति

0: पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8000 करोड़ रुपए की लागत से 30000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड

0: और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
1: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
0: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड

0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Force.

0: अच्छा
1: मतलब स्व सहायता समूह चाहिए
0: उनचो नाम आसे कहीं ना काय नाम
1: उनचो
0: है
1: नाम आए सत्य साई।
0: अच्छा सत्य साई।
1: हाँ,
0: तो ये समूह बना लो कितलो बरख होली जाले
1: होली छ 7 साल होली
0: 7 साल।
1: हाँ,
0: अच्छा
1: जुड़लू से।
0: तो मोर ने जसन की बना बना तो बेरा जसन की बना लास तो बोले ने आगे पैसा वगैरह जमा करो पड़ ली का
1: नहीं आम के मतलब बाहर च दीदी मनीला और सिखाला कि तुम्हें घर भीतरे चुहास तो बाहर निकलू दखा से सिखा से समूह जुड़ा बल्ला 10-10 जन से बना लू समूह। तो होता हम पैसा कोड़ इतनी लागे मानतर हर हफ्ता 20 रुपया पैसा जमा करू हाँ।
0: अच्छा
1: तो हम थान ले 20 रुपया जमा तुम के काय हो दे बोलून हूं बाट ले आम के काम मन बल मिर ली प्रशिक्षण मन मन मिरे से। तो आमी हूं थान ले जैविक खाद चो बारे में बोले बनाऊ हाँ।
0: अच्छा
1: दवाई जैविक दवाई।
0: अच्छा तो जैसन की जो 7 साल होली बलसीज तो मोर ले बोले उन्नीस काम है कि कहीं दूसर काम करते रहला जाले
1: नहीं मतलब जैसन समूह में जुड़ लू तो हम पहले 20-20 रुपया जमा करूँ समूह उठाने तो
0: अच्छा।
1: हुन चला हम कहीं फायदा नहीं मिलते रहे हुन जमा हो तो भी होते रहे तो हुन हिसाब ने आम के फेरे भी हुन बाट ले मतलब समूह बाट ले हमको प्रशिक्षण बल मिल ली ए हमी कोनी कोनी तो और काम करूँ तो मैं करूँ आए जैसन दवाई बना तोर ए साग सब्जी किसान भाई मन का है तो साग सब्जी लगवात नहीं।
0: हाँ।
1: तो हुन थाने में दवाई बनवाए।
0: अच्छा
1: ए जैविक बीती
0: जैविक दवाई।
1: हाँ, दवाई बनवाए।
0: अच्छा तो ये जैसन की देविक जो जैविक है दवाई है बोलो बना तो काजे भले कहीं तू आगे असन सीख ली
1: नहीं ट्रेनिंग? आगे नहीं सीखे मतलब यही समूह बाट ले हमको प्रशिक्षण मिल ली 5 दिन जो बस्तर कोल्यापारम दीवार। तो हुता सर मन होनी कृषि विभाग ले दिला हमके ये जो ट्रेनिंग तो हुता ऐसी खुनी ले से।
0: अच्छा जैसन की फसल मन ने तो अलग अलग किस्म चो जो बीमारी मन होए से तो चुका बोल कहीं अलग अलग दवाई असन बने से
1: अलग अलग दवाई बनवाए बन तो में खूब सारा दवाई बनवाए लेकिन एबे आमी बोले 2-3 ठन असनी दवाई मन बनौन भाती किसान मन लगे छिड़काव बल कर जानो किसान मन बल कर सोत जसन की ब्रह्मास्त्र दवाई बनौ हाँ आमी।
0: अच्छा
1: तो हुन चो दवाई नहीं आमी 5 प्रकार चो पत्ता धरू हाँ।
0: अच्छा
1: जोन के गाय बैला निखावत एक ठन आए नीम पत्ता 2 किलो और एक एक पत्ता करंजी पत्ता फुंडेर पत्ता और चीता पत्ता और जाम पत्ता। तो उनके अच्छा कुटू हाँ और कुटुन भाती जैसन की गौमूत्र आए गौमूत्र के एक ठन हंडी में मंडव हाँ आई बारून और हुन थान फिर चूड़ हाँ गौमूत्र ले फिर उन पत्ता मन कुटलो बीतिक डाल तो रहा है।
0: अच्छा
1: तो डालू आले हुन फिर उबाले दे 3-4 बार डंडा में हिलोन हिलोन दख तो रहा है 3-4 बार उबाली ली बल्ले हुनके आमी मतलब छाड़ून दी वहाँ ए ढाकुन भाती छाड़ून दी वहाँ तो हुन ठंडा होए दे।
0: अच्छा।
1: दिन भर रात भर हुनके छाड़त रहा है और दूसरा दिन हुनके छान वहाँ एक ठन सूती कपड़ा धरून भाती छान लुआल हुन थान ले फिर निकलू आए दवाई।
0: अच्छा
1: तो हुन दवाई के आए जी नहीं हम किसान भाई मन के संग वहाँ कि ये दवाई के लगहा ए का रासायनिक दवाई के उतरो यूज नहीं करा तो एक लगहा हम सीख लू जैसे देवी जैविक बीती आए बलते। तो कौन कौन किसान भाई मन ही बात ये भी बरसात तो सीजन आए तो उनके 50 ml दवाई के 1 लीटर पानी में थोड़े बहुत सर्प में छिड़काव कर सोत।
0: अच्छा
1: हम जो सामने छिड़काव करो वहाँ
0: अच्छा।
1: तो छिड़काव करा लो नाम बल दुश की हुन अच्छा हुआ से कीड़ा काजे आम बल खुद जाऊं दो खुश तो हुन च प्रणय आम बल अच्छा मिरे तो आम के बल हरिक लागे से कि आम च बना लो दई आमी घरे रोलू।
0: हाँ।
1: तो आम के काई चो काय तो नी रहे जानकारी नी रहे सब हम जुड़ तो काम की इतरो जानकारी मिरे से।
0: हाँ।
1: तो आम के बल हरिक लागे से कि आम अच्छा। आम च बना लो दई काम दे से किसान भाई के बलते।
0: हां हां तो शकुंतला दक ये तो अच्छा गोट के सांगली समांतर जसन की तुई पाना जोन पते जोन कर्तव्य थी बोले जोन गाय बैला निखावत असनी ची पाना के बनाता।
1: हाँ, उसनी काय तो पिता भी थी पाना बन के बनाता रहा गाय बैला निखातो भी थी मन के।
0: अच्छा हाँ हाँ तो उनके बनान बाती बोले तुम कहीं असन सीसी वगैरह कहीं।
1: हाँ बाटल मन में भरू हाँ।
0: अच्छा
1: बाटल मन में भरू हाँ उनके बनाउन भाती।
0: अच्छा तो बोले ने कितला असन जसन की आधा किलो 1 किलो 100 ग्राम असन कहीं बना
1: सा। हाँ, उसनी बनाओ से मतलब 10 डिसमिल तक असनी आधा एकड़ तक तो बना लू से उतरो खुबे तो नहीं बना लू से नया नया ने।
0: अच्छा।
1: मन बले उतरो मांग नहीं कर ला से 5-5 आम चबल प्रचार होले धर दे जानू ने भी आधा असनी छोटे मोटे किसान भाई मन के देऊ से तो हुन मन बल हरी खोसो तो आराम चलग

0: करू की बात के आम के दवाई बनव दिया अच्छा होली बलते
1: अच्छा
0: आम के बल हरिक लागू आय आम घर भीतर रलु एबे सब हम जुड़न भाती नी करलु उतरी बल सीखलु
1: सीखला
0: आ कोनी कोनी बार जाऊस बले आम के बल प्रशिक्षण का झाक दी बात जाते चिरु वहां मीटिंग हाक दी बात उन सब चीज सिखात रुआत आम के बल अच्छा लागे से
1: तो जसन की तुम ए बार ठुन बार जसन मीटिंग एबे बोलली से बोले कहाँ कहाँ अब तक असन असन प्रशिक्षण मीटिंग वगैरह गेल सा
0: हाँ प्रशिक्षण तो होता बस्तर दी बात और मतलब आम जो हर महीना जो जो नाम काम करू से तो आम जो एक ठन क्लस्टर आसे हर महीना हम कितरो किसान के दवाई दिलू कितरो छिड़काव करालू कितरो साग सब्जी लगालू जैविक बीती तो हुन पूछू आता हम खुता
1: अच्छा।
0: तो आम जो हर महीना बड़े से कि कम होए से हुन होता हुन मन जानू आता अम्बल संगू हाँ
1: अच्छा
0: तो देखुन देखुन दादा दीदी मन सीख सोची है बे
1: अच्छा
0: तो एक जन घर गेलू दूसरा दखले हुन बल बोलू एक नहीं मस्तान बल दिया आज बलते
1: अच्छा
0: ओसनी है बे बनाऊ से
1: बोले ने दखा दखिन तुम चो जोन प्रचार प्रसार
0: हो से बोले प्रचार ने दखा दखी में बे
1: अच्छा ये खाली मतलब जैविक दवाई ची बनाऊ आस कि कहीं खाद बल
0: बना नहीं खाद बल बनाऊ हां
1: अच्छा
0: खाद बल बनाऊ हां जैसे कि गोबर आए खाद बल खूब सारा आसे लेकिन उतरत नहीं बना लू से ये गोबर खाद के 100 किलो गोबर में 200 किलो बेसन डालू हां 2 किलो बेसन
1: बेसन अच्छा
0: हां 2 किलो गुड़ और 1 पाव सन दीमक मिट्टी
1: अच्छा
0: तो उनके मतलब सबके मिला वहाँ और 10 लीटर गौ में उतर उन सबके मिला उन भाती आए नहीं असन दीवाल में हो चाहे बोरी में हो उनके गोल गोल बने उन सुखात रहा है
1: अच्छा
0: और उनके मस्त भूर भूरा बने वहाँ सुख लिया ले और उनके बाद फिर उन बूटा मन ने खा ले दे तो रहा है भूर भूरा बना
1: भूर भूरा बना
0: हाँ तो अच्छा। ये नहीं का पौधा के बड़ा तो काजे काम करुआ है विकसित करुआ है और जनू का है तो फफूंद नाशक फफूंद निधरे
1: निधरे
0: और फिर का है तो बोले दीमक नहीं लगे वर्मा नहीं लगे
1: अच्छा
0: हाँ ये भी तिबल बना लो से 4-5 किसान मन के दिलू से उन दखा दखे और बल मांग कर सो बना दिया बोलुआ
1: अच्छा ये तो जसन की जैविक खाद बनाते भी तुम से गुटुक नया विधि आए बोलो भे
0: हाँ।
1: उनके बोले सुखान भाती फिर उनकी बिरा है सार
0: हाँ
1: कि नहीं
0: हाँ, सुखान भाती बिरा हाँ।
1: नहीं तो एक ठन असन बोल रहे से कि केचुआ खाद टाका बनन भाती
0: हाँ। केचुआ खाद च बोले आए उनके बोले बना तो रुपया टाका बनन भाती उता केचुआ खाद मतलब केचुआ छाड़ तो रहा
1: तो एचो कहीं ट्रेनिंग अगर तुम धर ला सा
0: तो नहीं धर ले से ट्रेनिंग लेकिन एचो बोले आए ची
1: अच्छा हाँ बोले ने एबे बोले ने खाली दवाई बना तो
0: हां दवाई खाद
1: अच्छा
0: बन वहां ई खाद मन
1: हां
0: एक ठन फेरा और बन वहां दवाई बोले हु निमास्त्र विद दवाई
1: निमास्त्र
0: जसन की मतलब एबे ब्रह्मास्त्र के एक हफ्ता छिड़काव कर लू का तो दूसरा हफ्ता में निमास्त्र छिड़काव
1: अच्छा ये भी जोन बना सांगली सुन का है ब्रह्मास्त्र
0: हां
1: अच्छा
0: तो निमास्त्र दवाई छिड़काव करत रहे हुन थाने आए नहीं नीम पत्ता लगवाए 2 किलो
1: अच्छा
0: और का है तो गौमूत्र लगवाए 5 लीटर और का है तो लसुन 250 ग्राम और का है तो का है नाम लसुन और हरी मिर्च 250 ग्राम तो एक बल उसने कूट तो रहा है और गौमूत्र में डाल तो रहा है
1: अच्छा।
0: एक बल उसने बनाते रहा है जसन ब्रह्मास्त्र बना लो तो अगला हफ्ता ब्रह्मास्त्र दवाई छिड़काव करू हाँ तो दूसरा हफ्ता एक करता रहा हर हफ्ता दवाई छिड़काव कराता
1: अच्छा तो ये जो सन की ये दवाई मन बना तो काज बोले ने कित दिन लागे से कित दिन ने बन जाए
0: कित दिन ने बनवाए हम पाना पत्ता इकट्ठा कर तरह से
1: अच्छा
0: तो आज ही बना लूं तो उनके आज ठंडा होक देऊं दे और कालिक जानो उनके छान तो रहा
1: अच्छा
0: अरे दवाई मन 6 महीना तक काम करो हम बन उन संग रुक सको
1: अच्छा 6 महीना तक काम
0: है 6 महीना तक काम करो है तो आम के खूब अच्छा लागे ससन थोड़े बहुत बल गांव से लोग बल मान सोत कर सोत खुद बल लगाऊ से अब रासायनिक खाद में तो बीमार सुमार बल ज्यादा होए से और महंगाई बल ज्यादा होए से निकाल जाए मैं जानू के देसी बीती के जैविक बीती खाद दवाई के यूज करू से
1: अच्छा बोले तुम्हें बिकुन बाती पर खुद चो बेड़ा खड़ान बोले ऐसो काम मान सा सोत
0: हाँ हाँ खुद चो बेड़ा खड़ान बल लगाऊ
1: हाँ तो ये चु संग संग और बल कहीं काम नाल समूह ने नाल व्यक्तिगत ने बल कर सा
0: हां व्यक्तिगत तो कृषि करू हां मैं
1: अच्छा
0: खेती करू हां खेती करू हां
1: हां
0: तो खेती करू हां समूह बले आमी लड्डू बनात रहू समूह जसन 10 छन दीदी मन रहू एबे हुनके बंद करू दिला साम च लग मशीन वगैरह सब आसे ए मूंगफली च लड्डू
1: मूंगफली
0: हां मूंगफली और गुड़ लड्डू बनन भाती

0: दस दीदी मन मतलब आंगनबाड़ी मन ने पहुंचाते रहो।
1: अच्छा
0: हाँ उनसे बलाम के प्रशिक्षण मीरू रहे था जिला पंचायत में उन प्रशिक्षण धरू रहूँ।
1: अच्छा
0: उनसे तहत बलाम के पैसा मिलते रहे जानो काम जो आजीविका आगे बढ़ते रहे लेकिन अभी थोड़े बंद होली से।
1: अच्छा बोले ने स्कूल मन ने दे तो भी
0: देखने बंद आंगनबाड़ी मन
1: आंगनबाड़ी। अच्छा तो शकुंतला दे जैसे खेती बाड़ी बोले खेती बाड़ी ने एक बल तो कहीं आसे होती
0: हाँ
1: काय लगा
0: टमाटर लगा लो से
1: टमाटर।
0: हाँ
1: अच्छा ऐसे नहीं कहे ड्रिप सिस्टम ने आसे की
0: ड्रिप सिस्टम में आसे
1: ड्रिप सिस्टम।
0: हाँ
1: कितलो संठान ने आसे
0: आसे 2 एकड़ में आसे।

0: कार्यक्रम जीवना चो सुर में अभी आप सुन रहे थे महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्षा शकुंतला ठाकुर से ली गई भेंटवार्ता। इनसे भेंट कर रहे थे बलवीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:32 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भेंटघाट। इसमें समसामयिक विषय पर श्री गोपाल पोयाम से ली गई भेंटवार्ता सुनिए। भेंट करता है बलवीर सिंह कच्छ।
1: तो भाई बहन मन सपाय के खूबे खूबे सेवा जोहार। जसन की आमी आमचो ये कार्यक्रम ने कई कसन बल्ले ने उपलब्धि बल्ले ने मिरलो भाई मन संग।

0: गोड बात करूं से अर्धका कई कसन मेहनत मसागत उन जीवना ने जुन करसत हुन मन के कई न कई असन बल्ले ने कहा कि ईमानदारी ने करतरे ने कभी न कभी कई न कई हुन मन के बल्ले ने समाज जो जुन प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हिसाब ने बल्ले ने सम्मानित हो सोत तो असनी आज मैं गोड बात करें से श्री गोपाल पोयाम संगे हेमन के बलू भी कहा कि लोक संगीत ने बल्ले ने पीएचडी जो बल्ले ने उपाधि मिली से तो गोपाल सबले पहले कहा कि मैं तुम जो जन्म बाढ़ जो कहने के जानुक चाहे से
1: तो सबले पहल मैं आकाशवाणी सुन तो सब पाए जो श्रोता मनात सबके मैं जुहार करें से मुझ नाम है गोपाल पोयाम और मुझ जो गांव है ग्राम पंडरी पानी तहसील जगदलपुर और मुझे बाबा का नाम है स्वर्गीय गुंडू राम पोयाम और आयाच नाम है श्रीमती बीताए भाई।
0: तो गोपाल लक तुचो जो मोर ने बल्ले ने पढ़ाई लिखाई बल्ले कसन होली कहाँ हाँ। होली काय काय पढ़ लीस आरु ये बे काय करसिस।
1: हाँ मुझे जो प्राथमिक शिक्षा होली से गांव नीचे होली से पंडरी पानी ने तीसरी तक उनचल पाछे का है कि मुझे बाबा विद्युत मंडल जो कर्मचारी रहे तो उनचो ट्रांसफर होली रायगढ़ बिलासपुर जो फैले।
0: हाँ अच्छा
1: हाँ तो तीसरी कक्षा में उतार पढ़ ले और फिर एक साल पाछे फिर उनचो ट्रांसफर होली पखंजूर तो अच्छा। पखंजूर ने वाले मैं एक साल उतार पढ़ाई कर ले और पखंजूर ले पाछे बाबा जो ट्रांसफर फिर होली जगदलपुर तो
0: अच्छा।
1: चौथी ले पाछे जगदलपुर ने ची पूरा कॉलेज तक पढ़ाई कर ले।
0: अच्छा।
1: और मैं बायोलॉजी ने स्नातक कर ले से
0: अच्छा।
1: और समाजशास्त्र ने एमए कर ले से।
0: अच्छा हाँ हाँ बोले ने एबे जैसन कि बोले ने सेवा हिसाब ने कहा खेती बाड़ी की कहीं सब ने नौकरी पैसा।
1: हाँ मैं अभी पशुपालन विभाग ने सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के रूप में भी काम करें से।
0: अच्छा हाँ तो गोपाल ये संग जैसन कि बोले ने तू के जो लोक संगीत का जी ये जो डॉक्टर चु उपाधि मेर ली बोले ने दक तू चो जो फील्ड किनिक दूसरा रेली
1: हाँ।
0: मंत्र ये बाटे कसन ये खोली यार कसन रुचि होली एक ही बोले किनिक जानो।
1: हाँ ये मके संगीत जो क्षेत्र ने आंथक जिन सबले जो माइमुर जो है उन आकाशवाणी है।
0: अच्छा
1: हाँ हाँ कहे कह पिला दाएं ले मैं आकाशवाणी सुनते रहे घरे गोटे रेडियो रहे तो हर दिन रेडियो लगावत और रेडियो ने हल्वी हिंदी खूब गीत मन ये रहे तो मुझे सुनते सुनते खूब अच्छा लगते रहे। और जो के करूँ मैं मेघनाथ पटनायक त्रिना सिंह छत्री बुधराम कश्यप मधुराम
0: अच्छा।
1: और रामू बिसाई लक्ष्मी खुदराम और गेलमणि देवी तो ये मन जो गीत खूब मन करते रहे और मैं नानी बिराले पोस्ट कार्ड ने पठन पठन परमाइस कार्यक्रम ने पटाते रहे।
0: अच्छा सुनते रहे
1: सुनते रहे पांच छठी बिराले तो
0: अच्छा।
1: ये बाट के दखत का जगह स्वाणी मके सबले मई मोर गुरु आए बल्ले।
0: अच्छा
1: हाँ अरुणचल दूसरा आए नाट जैसे गाँव गाँव ने मेला मंडई बिया कहीं उच्च है तो नाट बन गए तो नाट देखू जाऊँ और उतर गुरु मंच गात भी तीन इतलो मैं प्रभावित होते रहे इतलो अच्छा गाय सोच बोलते तो मैं बोले सोच ले कि मैं बोले किनी किनी गाय दे बोलते।
0: अच्छा
1: और तीसरा जो मके ये बार जो बार देखा लाऊ ना स्कूल जो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम मना बदल देखा होते रहे कि छठी सातवीं बेरा मिडिल स्कूल ने हर शनिवार दिने बाल बाड़ी असन होते रहे।
0: अच्छा
1: तो बाल बाड़ी ने मुख्य एक किने गाँव गाय बोलते सर मैडम मन पूरे खड़े करते रहो
0: खाली
1: गाँव बोलते।
0: अच्छा
1: तो डरू डरू मैं शुरू शुरू गाँव तीच रहे पाँच पाँच धीरे धीरे हमेशा गाँव तो कारण ही मैं तीली मजे बाड़े गोट गोट ये है कि स्कूल मन ने बोले हर सप्ताह पीला मन के असनी कहीं कार्यक्रम मन करान भाती मौका दिलो ने आगे जाऊन भाती हुन मन बोले ये लाइन आले कहीं बोले समाज च अच्छा काम कर सकते।
0: बोले ने पीला बेरा ले जैसे कि तू बल्ली सांगली से कहने के गीत बोले ने सुन तो कही तुझे मन होली भी
1: और संग संग का है कि जैसन गांव ने माता सेवा और बोले जैसन कहीं कार्यक्रम मन होते रहे तो हुन मन ने बोले मैं खुबे मन करुन वारी उता भाग धरते रहे।
0: अच्छा तो फिर जैसन कि जैसन सुनते सुनते मन हिली तेरे चुन फिर किने गाँव तो बाट बल गेली सोती।
1: हाँ पाछी का होली कि जैसन दसवीं ग्यारहवीं पढ़ते बेरा पाछी राष्ट्रीय सेवा योजना चो शिविर मन लगते रहे तो उन शिविर मन ने मैं रायपुर और कहाँ कहाँ मकबल नेत्र तो मैं आम चो बस्तर बाटले इतना चो

0: लोकगीत मन के गाते रहें, तो असनी असनी मन के हिम्मत मिली और संग संग का कि पाछे मैं सोच ले कि मैं गावतम तो कोई अच्छा लागे से किणी के कोनी गुरु डगराल अच्छा होती बोलते रहे मैं, तो असन मक नहीं मिलते रहो मंत्र अचानक कहाँ आए पता चली हम जो जगदलपुर ने आसत श्री दिलीप पांडे सर, तो उन मन संग भेंट कर एक दिन मैं गेले और जा तक पाछे फिर उन मन के बोले कि मैं गीत सीखवाएं बोलते, तो उन मन मके एक महीना मैंने उन मन तने गेले मैं सीख तो खाजे, तो हारमोनियम और दो तीन राग मन के उन मन मके सीखाला मंत्र यही समय ने कहा बोली कि मके सरस्वती शिशु मंदिर उतना पड़ा तो कहे नारायणपुर जाऊ पहली।
1: अच्छा,
0: तो नारायणपुर गेले तो उनका ज्यादा मैं संगीत सीख नहीं सकले, मंत्र का है कि हारमोनियम कैसी बजाते बीती प्रारंभिक जो शिक्षा है उन दिलीप पांडे सर में सीख ले।
1: अच्छा, तो दक गोपाल पोयाम बल्ले ने तू के जो पीएचडी चो डिग्री मिली लोक संगीत चो कहानी तो खूबे आसे गोड बात करूँ हाँ। मंत्र ए मंजी बल्ले ने गोटोक कहीं बोले गीत सुना दिले ठीक रहती
0: हाँ। तो आम चो जोन पारंपरिक जोन गीत मनात खूबे अच्छा अच्छा आसत हर रसम चो गीत मनासे
1: हाँ।
0: तो उन्हीं भीतर में गोटोक गीत के सुना दे।

0: और उन कविता लिख लो ने पहला दूसरा तीसरा जो छो अच्छा कविता रह दे उन कविता मन छपते रहे तो मैं देख ले खूब फिला मन लिखते रहो तो मैं बोल विचार कर ले मैं बोल कविता पर लिखे नहीं बोलते तो 5-6 पटाले मानतर नंबर ने नहीं आते रहे मानतर 7वां 8वां नंबर ने फिर मच कविता बोल छप ली तीसरा नंबर ने
1: अच्छा
0: तो पाँच खूब बरीक लगली मैं पारा छो खूब लोग परान परान देखा ले पेपर के तो पाँच कभी हरिक लागली सब लोग तारीफ करला तो उसने उसने मके कविता लिख तो प्रेरणा मिल ली और मैं कम खूब कविता मन लिख ले पाछे और उसने पेपर मन में पटाते रहे मानतर का है कि पाछे गोटक कविता असन लिख ले कि गीत असन जीती और उन गीत के मैं गाँव च सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सुना ले तो सफाई लोग थाली बजाल में खूब हरिक लागली
1: अच्छा
0: तो पाछे मैं सोच ले कविता लिख ले तो कहीं काम नहीं दे जाए असन करें दे अबर गीते ची लिखे
1: बर अच्छा
0: तो उन चल पाछे मैं गीत मन के लिखो कुमरी आले
1: तो बोले ने असन गीत चु तुचु कविता ले पर गीत बाटे याव हिल बोलो
0: हाँ कविता गीत बाटी ले रहे बल गीते च मन लिखे से
1: अच्छा तो ये पारंपरिक गीत आए कि असने कहीं जोड़न जोड़न बोले असन गीत मन
0: हाँ पारंपरिक गीत बोले बलन का है कि मैं जोन बल कविता नाल गीत लिखते रहे उन तो जोन बल जो धुन है उन तो पारंपरिक ले जोन मच मन ने बस ली से उन हिसाब ने ची लिखते रहे हाँ मानतर विषय अलग अलग रहे समाज चो विषय बल रहे और पीला मंच प्रेरणा गीत असन बल रहे और देशभक्ति भी थी ये सब बोल रहे
1: अच्छा हाँ हाँ तो वाले तो जैसन बल्ली से भी पीला मंचो गीत देशभक्ति गीत ये कोनी सुरता से जाले किने
0: ये गीत के मैं लिख रहे हैं ये खेती बाड़ी चो ऊपरे ये गीत आधारित आसे
1: हाँ
0: वाले गीत को मैं सुना दें इसे अल का दादा छंड सना धर हाथ ने रपटुक ना बड़े बिया ने कुकड़ा वासे को करे कोए नांगर धरुक जो लगड़ा मारुक जो बतर पड़ली से दादा बेड़ा बाटे जो नांगर धरुक जो लगड़ा मारुक जो बतर पड़ली से दादा बेड़ा बाटे जो हलका दादा छंड सना धर हाथ ने रपटुक ना बड़े बिया ने कुकड़ा वासे को करे कोए नांगर धरुक जो लगड़ा मारुक जो बतर पड़ली से दादा बेड़ा बाटे जो बतर पड़ली से दादा बेड़ा बाटे जो नांगर जुवाणी धर बे दादा बब के बॉय लखे दावा नांगर जुवाणी धर बे दादा बब के बॉय लखे दावा नवा बुआरी के चापड़ा चटनी मंडिया पेच के बोआवा नवा बुआरी के चापड़ा चटनी मंडिया पेच के बोआवा खत के बिखरू जो रोंडा बेचुक जो खत के बिखरू जो रोंडा बेचुक जो बतर पड़ली से दादा बेड़ा बाटे जो बतर पड़ली से दादा बेड़ा बाटे जो अलका दादा छंड सना धर हाथ ने रपटुक ना बड़े बिया ने कुकड़ा बासे को कोरे कोई नांगर धरुक जो लगड़ा मारुक जो बतर पड़ली से दादा बेड़ा बाटे जो बतर पड़ली से दादा बेड़ा बाटे जो टिकरा थाने बुनवा दादा बेड़ा ने लगाऊं पलाहा टिकरा थाने बुनवा दादा बेड़ा ने लगाऊं पलाहा घरबाड़ी ने कोचई कांदा हरदी आधा मंडावा घरबाड़ी ने कोचई कांदा हरदी आधा मंडावा खोड़की धरु न जो गैती धरु न जो खोड़की धरु न जो गैती धरु न जो बतर पड़ली से दादा बेड़ा बाटे जो बतर पड़ली से दादा बेड़ा बाटे जो अलका दादा छंड सना धर हाथ ने रपटुक ना बड़े बिया ने कुकड़ा बासे को कोरे कोई नांगर धरुक जो लगड़ा मारुक जो बतर पड़ली से दादा बेड़ा बाटे जो बतर पड़ली से दादा बेड़ा बाटे जो बतर पड़ली से दादा बेड़ा बाटे जो
1: तो बोले ने गुटक आमचो खेती किसानी करतो भाई बहन मन का जे प्रेरणा आसन गीत रली तो गोपाल लसन की तुछो जन पीएचडी लोक संगीत हिसाब ने जन मिरली बोलली तो बोले ने ये ता बोले ने कसन लोक के मेरे से काय कर उकला पड़े से कहाँ मेरे से कौन दे से एक बोल के नहीं जाना
0: हाँ मैंने जसन कहीं बोले का कि और सम्मान मेरे से उन सम्मान का जी उनके हकदार हो पड़े से असन योग्यता हासिल करूक पड़े से तेबे कहीं बोले सम्मान का कि हो मेरे से
1: मेरे साथ
0: हाँ तो ये जो शुरुआत

0: खूब दिन आगे ले हो रे बलन क्या जसन कहीं बोले स्कूल ने मैं कॉलेज ने आप लोग जो संगीत कार्यक्रम देते रहे तो कई पुरस्कार मन मिल ली जिला स्तर ले बल पुरस्कार मिल रहे प्रदेश स्तर ने बोले पुरस्कार मिलन रहे तो ये पुरस्कार मन मिल बीती दखुन भाती मतलब डॉक्टरेट बीती चयन कर तो कहे किंडी ज़्यादा मैंने मुझे दावा मजबूत होली।
1: अच्छा
0: तो तुम बोलन मैं सांगून दे काय काय पुरस्कार मन मिलली
1: हां
0: मके सबले आगे 2022 ने धमतरी ले समता साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ राज्य बाटले सांस्कृतिक दूत अवार्ड मिलली।
1: अच्छा
0: और 19 साल भारतीय दलित साहित्य अकादमी ये दिल्ली संस्था है ये बाटले दिल्ली ने छी जवरे में महात्मा ज्योतिबा फुले फेलोशिप नेशनल अवार्ड ये भी ती मिलली।
1: अच्छा
0: और अरुणचल पाचे 2023 ने अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान नई दिल्ली बाटले उनचो कार्यक्रम जांजगीर छापा ने हो रहे उधर राष्ट्रीय प्रतिभा अलंकरण समारोह एक कार्यक्रम होते रहे उधर अखिल भारतीय समाज दूत सम्मान ये मिल रहे।
1: अच्छा
0: और उनचे पाचे अनमोल ट्रस्ट और स्वरकुल ट्रस्ट संस्था ये गुड़ संस्था है ये बाटले गुरु नानक खालसा कॉलेज माटुंगा मुंबई ने 2023 ने भारत भूषण नेशनल अवार्ड मिल रहे और अंचल 2024 ने जून 2024 ने गोपाल किरण समाज सेवी संस्था ग्वालियर बाटले ग्लोबल सोशल आइकन सावित्री बाई फुले रत्न अवार्ड ये शिमला हिमाचल प्रदेश ने मिल रहे।
1: अच्छा
0: तो ये अवार्ड मंच पाछे जो एबे जो मके जो अवार्ड मिल ली उन्हें अगस्त 2024 ने साउथ वेस्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी बाटले।
1: अच्छा
0: डॉक्टरेट इन म्यूजिक और ये भी जो कार्यक्रम हो रहे चेन्नई तमिलनाडु।
1: अच्छा
0: और जसन तुम्हें बल्लास की कसन मिरुवाय बोलते तो असन ये भी जो डॉक्टरेट जो मानद उपाधि है ये समाज सेवा साहित्य संगीत कला चो क्षेत्र में जो अच्छा काम करे सत और उनमें जो काम ने उनमें के तारीफ मिली सम्मान मिली और अच्छा काम आगे बल करे सत तो असन चीज के उनमन अच्छा जांच पर करे सत और आप लोग बाटले जन मानद उपाधि डॉक्टरेट ए बीती दे सत
1: दे सत। हां हां बलन दक तू सांगली सितलो बलन कई जगह जौन बाती जोन तू चो काम चो अनुसार बलन पुरस्कृत बोलला सुन सब चो जोन एक गुटक फल आए बोलू बे जोन डॉक्टर चो जोन उपाधि मेरली तू गोपाल जसन की एबे तू काय की तू लोक संगीत संगे जुड़ लिसी से गाउन बल्ले सुना लिसे काय असन आजकल तो कई प्रचार प्रसार चो माध्यम होली से कैसेट एल्बम आरो काय काय निकरा सो तो असन बल काई काम तू चो होली से
0: हाँ तो आजकल तो सब जितना बल संगीतकार मना सब चो जो मई मोर मंच बल यूट्यूब ची वाली से आरो तो सफा लोग अपलान अपलान यूट्यूब चैनल खोलन भाती अपलान जो बल गीत आए गोविंद आए उनके उता अपलोड करे सो
1: कर सा
0: हाँ तो उसनी ची मैं बोले चैनल चलाए से और उता बोले मचो जो गीत मनाए उन मन के अपलोड करें से।
1: अच्छा
0: हाँ और सबले जोन मके मन कर लो जोन मचो गीत आए उनके मैं जोन अपलोड कर ले से पांच छह टन गीत आसे होता।
1: अच्छा
0: हाँ दादी दी मन सुन सको तो उता जो मचो मन कर लो गीत के गोटक दंतेश्वरी बीती है उनके मैं सुना दे।

0: के सेट हो गया बोलकर नहीं कर ले से तो जो एल्बम वगैरह आसन ने बोले
1: हाँ ये बोल गुड अच्छा लंबा कहानी है।
0: हाँ
1: हाँ कॉलेज पढ़ते बेरा मैं जैसन सांग रहे कि गीत कविता ले गीत बाटे मोर कर ले तो राष्ट्रीय सेवा योजना ने मैं असनी कार्यक्रम मन देते रहे।
0: अच्छा
1: तो मुझे गुड़ दोस्त मेरे लोग लोहड़ी गुड़ा पवन सेठी ना है उन मके जगदलपुर चो प्रसाद फिल्म चलवात आशुतोष और अविनाश प्रसाद तो उन मन लगनी लो उन मन उदल दा कैसेट बनते रहे तो उदल दा उन लगनी लो तो मन चार पांच ठन गीत सुना ले तो दुई ठन गीत के उन मन सेलेक्ट कर ला और आप लोग एल्बम ने उता स्थान दिला।
0: अच्छा
1: तो एल्बम मन मस्त शुरुआत उठा ले होली।
0: अच्छा
1: हाँ तो उठा वाल मुझे सोन पखना वाली फूल झलमल मल काय रसना मुझे सोन पखना ये गीत उन रे।
0: अच्छा
1: हाँ तो उन चल पाछे फिर गुड़ तुच क्रिया नाव सिलीमान निकुरु रे हाँ महेंद्र ठाकुर हीरो रहे उता तो उन फिल्म ने मैं उनसे कुछ गीत गावले उन चल पाछे लेकी तुचो फुल गजरा नाच गुड़ो एल्बम निकलू रहे तो उता वाले मैं गीत गावले।
0: अच्छा
1: मुझे खुद चो गीत रहे और उन चल पाछे और वाले तीन चार ठन एल्बम मन है जहाँ मैं खुद ही गीत संगीत खुद तैयार कर रहे खुद बोल गाओ रहे।
0: अच्छा
1: हे

0: तो ये बोले तुच्छ क्रिया फिल्म
1: हाँ
0: जो होता ये भीतर
1: ले हाँ ये होता गीत रहे
0: गीत रहे हाँ। अच्छा गीत के तू ची गौरीस के दूसर के गौर वाजल
1: हाँ ये गीत के पूरा मंजिक मंजिक का वास्ते रहे गीत
0: अच्छा धुन
1: रूप ने
0: हाँ
1: हाँ के मज गाव रहे
0: हाँ
1: हाँ और पूरा आखिरी अंतर आता किनी के निरली मैं पहली बार ऐसा सुनाऊं दे इस
0: अच्छा
1: हाँ हाँ
0: अच्छा गोपाल पोया में सांग जैसन की तो ये भी निकरा लो इसकी जो एल्बम ने जातो पहले जैसन की एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना बोले जुड़ रहे बोल से
1: हाँ हाँ हाँ
0: हाँ तो ये तो अच्छा है मानतर दक ये गोटोक समाज सेवा जो क्षेत्र ने बल काम कर ली सोती
1: हाँ
0: है कि नहीं
1: बोलन का कि समाज सेवा जो क्षेत्र ने पूरा जुड़न मारे बोलन आप लोग दिल और दिमाग ने जुड़ते तो जन प्रेरणा है मके ये राष्ट्रीय सेवा योजना लिखो ज्यादा मेरे लिए
0: अच्छा
1: हाँ हाँ
0: तो बोले ने समाज सेवा क्षेत्र ने बोले ने काय काय असन काम ने रिलीज जाले कर रिलीज जाले
1: हाँ तो सबले पहल तो आम चो जन समाज बीती हम जो कोया समाज है उन समाज ने मैं जुड़न भाती उठा चो जन बले काम है समाज के आगे बढ़ाता भी थी ये काम क्या मैं कर ले और संग संगे समता साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ राज्य चोटक बस्तर जिला ने शाखा बोले आसे
0: अच्छा
1: तो ये शाखा ने सदस्य के रूप ने नशा मुक्ति कार्यक्रम और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम और लोग मन के आर्थिक रूप ले जागरूकता भी थी कार्यक्रम ये सब कार्यक्रम मन आमी शिविर लगन लगन गांव गांव ने करुण से और लोग मन के जागरूक कर तो कजे मैंने आप लोग जो अनुभव के होता सांगन से
0: अच्छा
1: हाँ और एक कार्यक्रम ने भी
0: चले से बोले
1: हाँ
0: हाँ बोले ने लगातार बोले ने तुम चो गायन आए एल्बम भी दिया है आरु फिर जैसन की समाज सेवा चो क्षेत्र ने आरु तुम चो खुद चो सरकारी सेवा तो आए थी है कि नहीं तो ये चो संग संग का है कि और बोले जागरूक कर तो जो काम मन कर साथ
1: हाँ।
0: तो दक गोपाल पोयाम तुम की इतना अच्छा बोले तुम चो जो काम कर लास ईमानदारी ने काम कर लास गोटो कर्तव्य जो जो फल आए बोलो
1: हाँ।
0: ये लोक संगीत ने बोले तुमके गोटोक पीएचडी चो उपाधि मिल ली जरूर असने जो आम चो रेडियो सुन तो भाई बहन मन नौजवान पढ़े लेखा लेखी मन सुनसो जाले उन मन के कहीं ना कहीं असन सीख मिले दे प्रेरणा मिले दे और कहीं ना कहीं जो आप लोग रुचि क्षेत्र है
1: हाँ।
0: उन क्षेत्र में जाऊन बातें आम चो समाज चो उन्नति वार्ती का काम कर दे और तुम खूब खूब सेवा जुहार
1: हाँ सेवा जुहार।

भेंटघाट कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गोपाल पोयाम से ली गई भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रहे थे बलवीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र।

इनसे बातचीत कर रहे थे बलवीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लोकगीतों के कार्यक्रम

0: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक ले।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द क्रीट चॉइस।
3: लोकगीतों के कार्यक्रम कोदो माली में आप सुन रहे हैं सैनी राम और साथियों के गाए कुंडी गीत।

Se mane de baye kevere.

0: लोकगीतों के कार्यक्रम कोदोमाली में अभी आप सुन रहे थे सैनी राम और साथियों के गाए गोंडी गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे हिंदी और अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: तबले पर संगतकार थे नयन घोष, तानपुरे पर थे मधुकर दातार, स्वरमंडल पर थे राजन मशलीकर। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली का केंद्र है। 11 बजने को हैं। समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
3: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और

0: शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Someshwaran, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
3: Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He also paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. In a social media post, Prime Minister Modi expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermine, the government and people of Seychelles for their affection. During the visit, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to address